सारे तू जड़ा में

राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन मचिया बताइया रावण परिवार परिया शब्द का बनाइया शब्दों का गाओ हरि तेरा मन चिनी बसाया है नानक नानक हो सतगुरु।

ఆకాశవాణి సింధీ సర్వీస్ అండ్ 1870 కిలోహెర్ట్జ్ టైం హసనే తమ ఆకాశవాణి సింధీ సర్వీస్ న్యూస్ ఆన్ ఇయర్ మొబైల్ ఐడి ఫ్రెడిష్ తే బుస్తక నా प्रोग्राम शुरू थी चुका है, डिटेल्स कुछ नित रहा फॉलोअर में तो हमेशा भगत कराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम बुधना तेखा पोए तफसर अब हुए जमा लोक संगीत जी प्रोग्राम में भगत बुधना भगत पेश कर नारायण किशन द्वार में साथी खास खास खबर प्रोग्राम जे आखिर में निशर के वेंद यह तो असंजे प्रोग्राम जी तफसील तो आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा रचो भगत कराम साहब के बुधूं

ॿुधण था करूं साहिबजन जी मिठे आवाज़ में कला हूंदी रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हींअर पेश आहे तबसरो हुनर रिसर्च ऐं तवानाई ते यूरोपियन पार्लियामेंट्री कमेटी मेड जंहिंजी सरबराई एंजेलिका मेंजिस कई ऑस्ट्रेलिया जे रफेली स्टिंग सेनली भारत जे साइंस ऐं टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट सूबाई वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सां 22 सेप्टेम्बर ते मुलाकात कई ऐं घणनि ई मुद्दनि ते बहस वहसो कयो तंहिं में अची थो वञे भारत यूरोपियन यूनियन आज़ाद वापार करार तंहिंखे अमल में आणण इन खां सवाइ साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च ऐं क्रिटिकल ऐं अभिनव टेक्नोलॉजीज़ में यूरोपियन यूनियन सां तावन खे वधीक ऊनो बणाइण मंत्री चयो त भारत यूरोपियन यूनियन हिकमत अमली भाई वारी म्यूचुअल प्रायोरिटी यानी अवलियत वारे खेत्रनि तंहिं में साइंस ऐं रिसर्च ते वेझे सहकार लाइ घणेई वजह मुयसरु थी कराए मेड जी तरफ़ां ॻाल्हाईंदे एंजेलिका विंसिक एमवीपी ऑस्ट्रेलिया जी इन खां अलावा आईटीआर जी फुल टाइम मेंबर गॾिजण लाइ वज़ीर जा शुक्राना मञाए चयो त भारत यूरोपियन यूनियन जो हिकु मुख्य हिकमत अमली भाईवारी आहे हुन चयो त मेड जी यात्रा जो मक़सदु भारत जे हुनरी ऐं तकनीकी पॉलिसियुनि सां वधीक सूझबूझ करण इन खां अलावा वेझे सहकार जे लाइ खेत्रनि खे ॻोल्हण हुन चयो त हुनरी चटाभेटी खेत्र खे वधीक मज़बूत करण लाइ भाइमी फ़ाइदा आहिनि इन खां अलावा हिकु सलामत ऐं रिसेलेंट क्रिटिकल सप्लाई चेन लाइ पिण ग्रीन ऐं डिजिटल ट्रांज़ेक्शन में पिण हुन भारत ऐं यूरोपियन पार्लियामेंट मंझि इन्हनि मुद्दनि ते वधीक ॻाल्हि जी आज्ञा कई बहस वहस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो त भारत यूरोपियन यूनियन आज़ाद वापार करार खे जल्द जल्द अमल में आणण असांजी अवलियत आहे ऐं भारत जी रज़ामंदी खे ज़ाहिरु कयो त यूरोपियन पार्लियामेंट खे बुरुसी में जल्द जल्द सही करण लाइ हिमायत ॾिनी वेंदी हुन चयो त आज़ाद वापार करार यानी एफटीए खे अमल में आणण सां वापारियुनि ग्राहकनि ऐं स्किल प्रोफेशनल्स लाइ नवां अवज़ खुलंदा इन खां अलावा ॿिनि तर्फ़ी भारत यूरोपियन यूनियन हिकमत अमली भाईवारी खे वधीक हथी मिलंदी भारत जे रिसर्च ऐं इनोवेशन अवलियतनि ते वज़ीर चयो त खोजन ऐं इनोवेशन मर्कज़ी सरकार जे विकसित भारत 2077 दूरंदेशी जो हिसो आहिनि तंहिं में ख़ासि ध्यानु ऊचे असराइते रिसर्च रिसर्च जे ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज़ प्रोडक्ट्स इन खां अलावा हुनर जे शामिल राई ते हिसेदारी ते अवलियत ॾिनी पई वञे इन रस्म में हुन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हवालो ॾिनो इन खां अलावा

ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੋ ਡਿਨੋ ਜਿਹਨੋ ਮਕਸਦ ਆਏ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਵਧੀਕ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਸਟਾਟਸ ਖੇ ਹਿਮਥਾਇਣ साफ ए ग्रीन टेक्नोलॉजीज में वजीर जोर डींदे तो माहौल में इंदड़ तब्दीली इन अवलत डींदे इन क्षेत्र में रिसर्च से सहकार थे घुर्ज भारत यूरोपियन यूनियन व्यापार ए तकनीकी काउंसिल साफ ए ग्रीन टेक्नोलॉजी एक रिपोर्ट पेश कई है ते वाधार में अची तो वे 60 मिलियन यूरोज के गडियल सीड़प जैन साल में कई वेंदी त जीअं वेस्ट हाइड्रोजन समुंड में पॉल्यूशन रिसाइकलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जे बैटरीज खे रिसाइकल करण ते ध्यानु ॾिनो वेंदो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आई टी आर मेड़ खे सॾियो त हू अहिड़ा खेत्र ॻोल्हनि जिते भारत ऐं यूरोप खोजना ऐं इनोवेशन गॾिजी करे कमु कनि जंहिं सां गॾियल रिसर्च टेक्नोलॉजी तरक़ी इन खां अलावा स्किल अप खे वधायो वेंदो हुन चयो त भारत यूरोप खे हिकु अहम खोजना पार्टनर भाईवार तौर ॾिसी रहियो आहे जो संदसि रिसर्च इदारनि में जदीद रिसर्च बुनियादी ढांचे में इनोवेशन इको सिस्टम में मज़बूत बुनियाद आहे।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: भगत जसम भगत पेश करने लाइन किशन द्वार में साथी।

0: सॼी दुनिया पई भॻत साहिबनि जी गिला करे
1: चरियो थी पियो आहे।
0: अहिड़ो त चरियो लैला जे कॾहिं
1: पर भॻत साहिब लैला जी सूरत वरी अहिड़ी
0: जो
1: लखनि में हिकिड़ी अॼु तॾहिं नाचनि सूरत किथे
0: उहो
1: मजनू किथे
0: तॾहिं आशिक़।

0: साईं जी शादी थी
1: है है
0: जदी आशा गजा
1: पाण में मिलिया
0: नवरी साईं उनन जो विछोड़ो
1: है
0: उनले जा बाहर रात टिकी पंजे भाव के बधी करे खणी
1: खणी जदी हल्या

0: अदल हा हे हीर रांझी
1: बाबा
0: भाई कन्या वजाए छो
1: न दादी
0: आए की सच नाशकन जा नाला ना
1: उन आजकन जा नावा भगत साहब छो न गायब आ
0: रांझन
1: हा
0: हीर जे खातिर
1: छाती
0: काठो हले
1: किथा हले किथे री पहुंचे
0: भगत साहब सब को पंध करे
1: हा
0: उठ दे चढ़े
1: हा
0: अच्छे पंध करे।

जो समुद्रा कशन दौरों में साथ इनका ये आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेशन खास खास खबरों घर पे में फायदन के बियर दोरावा है अमेरिका के चवाए था रशिया खां तेल ए गैस वठण वारन मुल्कन ते टैरिफ से पेंजू गणती पधरों कई वन ओमान वेझो तजारती बेड़े एम वी कैप दाओ मथा

हमले जी भारत सख्त निंदा कही है, जैमें भारतीय सीफेरर मारजी व्यू आए। नई दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर हवाले के थोड़े चढ़वाए था भारत के अंदरूनी मामलों में संदस को मतलब कौन है। ईरान बगदाद ना ईरान के उड़ामन के सस्पेंड किया है जो अमेरिकन के बंदिशन के ललकार के दिसंदे। एशियन गेम्स में भारत के मर्दन की बैडमिंटन टीम कांसे जो बिलो हासिल किया है। इन तरह भारत के बिलन जो टोटल 12 बीठो है, तैमें एक सोने जो बिलो पण शुमार है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता

0: प्रवणता बनी रहती है। डॉ जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants travelling across multiple states, districts and villages. Delhi government has approved the Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the capital. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Of these, 1,170 will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Chief Minister said the scheme will give women and transgender persons an opportunity to become owners and drivers of electric autos. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched Bharat Taxi and the Mukhyamantri Krishak Samridh Yojana aimed at supporting taxi drivers and farmers. Under Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers can register without paying any commission. They will also get social security cover of 5 lakh rupees. Under the Mukhyamantri Krishak Samridh Yojana, the interest rate on loans provided to farmers through the Uttar Pradesh Cooperative Gram Vikas Bank has been reduced from 11% to 6%. The Enforcement Directorate, ED, has initiated search operations at 26 places across Delhi, Mohali, Chandigarh, Panchkula and Ludhiana in a case related to Tirupati Infra Projects Private Limited. The operations are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act. agency said that the action has been taken against the promoters, directors and other associates of likewise private firms under bank fraud cases. According to ED, Tirupati Infra Projects Private Limited has been involved in a bank fraud worth 290 crore rupees in relation to a project. The Ministry of Finance has informed that all public sector banks and regional rural banks will remain open on Sunday, 27 September. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions, UFPU, from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. It said that the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. India has condemned the attack on the commercial vessel MV Cape Deo off the east coast of Oman yesterday. Ministry of External Affairs said of the 20 Indian seafarers on board, 19 have been rescued, while one Indian national tragically lost his life. It offered deepest condolences to the family of the deceased. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities for early repatriation of the Indian seafarers. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC reform along with his St. Lucia counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing. Reigning world champion D. Kukesh and R. Pragananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे प्रतीक श्रॉफ के गाए भजन। आपके साथ सितार पर साथ दे रहे हैं खालिद मुस्तफा। हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं दामोदर लाल घोष और तबले पर साथ दे रहे हैं शिवम भारद्वाज।

श्रोता, आप भी आप सुन रहे थे संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुने प्रतीक श्रॉफ के गाए भजन। आपके साथ सितार पर संगति कर रहे थे खालिद मुस्तफा, दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर साथ दे रहे थे और तबले पर संगति कर रहे थे शिवम भारद्वाज। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब श्रोताओं, कैसे हैं आप जी? आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा हाजिर है आपके लिए लेकर प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आप काम जो है आपके उन्हें तो आप निपटा ही रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें जरूर सुन रहे होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी उठे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी अभी टिफिन पैक कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज चुके होंगे, या फिर बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, वहां के लिए तैयारियां चल रही हैं, और बहुत सारा काम है, और भी काम दूसरे करने हैं, तो इतने सारे काम करने हैं, थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है सुबह सुबह क्यों इतने सारे काम करने पड़ते हैं। और वहीं कुछ साथी होंगे जो बड़े सुकून के साथ अपनी सुबह की चाय का मजा ले रहे होंगे। तो सभी साथियों का जो कि भाग दौड़ कर रहे हैं, जो कि हबड़ तबड़ में हैं, जिन्हें जल्दी से ऑफिस पहुंच रहे हैं, बॉस की डांट नहीं खानी है, और जो बच्चे स्कूल जाने के लिए जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के यूनिट टेस्ट भी लगे हुए हैं, इतने सारे काम है, क्योंकि बच्चे हैं तो मम्मी पापा भी उनके साथ बिजी हैं, उन्हें उनकी प्रिपरेशन भी करानी है, ये सारे काम सब करने हैं हमें, क्योंकि हमें ही ये सारी चीजें करनी है, तभी तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों को अगर शांति से हम करेंगे, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाकर हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे, तो इससे बड़ी कोई नए दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो नए दिन की शुरुआत में बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाएं, चाहे दफ्तर हो, घर हो, बाहर हो, आप सड़क में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, सीरियस क्यों भाई, थोड़ी सी मुस्कान लाइए चेहरे पर। देखिए कितना जादू करती है मुस्कान की, अगर आप एक मुस्कान देंगे तो वहां सामने से भी आपको रिटर्न में मुस्कान ही मिलेगी। और इतना खूबसूरत मौसम है, दिल्ली भी अब हल्के हल्के रुमानी मौसम में बदल रही है, क्योंकि जो गर्मी उमस थी वो थोड़ी कम हो चुकी है, सुबह सुबह घूमने में भी मजा आता है। तो अपनी दिनचर्या के कामों में तो आप लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, जिन्होंने थोड़ा लेट ट्यून इन किया है हमारे इस स्टेशन को। तो साथियों, सबसे पहला गीत आप सबके लिए, हम चाहेंगे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं या प्रकृति के आसपास कहीं भी बैठे हैं, भाग दौड़ है जिंदगी में, लेकिन फिर भी प्रकृति की छोटी छोटी जो धुनें होती हैं, जैसे पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों का सरसराहकर लहराना, या आसपास कहीं आराम से पेड़ों के बीच में बैठ जाना, आप उसे महसूस करें और स्माइल के साथ, जी हाँ, मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

जी हाँ, आसपास छूने के सपने और बड़े बड़ी उम्मीदें ये हम सब पाल के रखते हैं, लेकिन जब दिन की शुरुआत करते हैं तो इन उम्मीदों को सोच सोच कर जब हमारी ये ख्वाहिशें ख्वाब होते हैं और सुबह की भाग दौड़ होती है तो लगता है क्या ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। कहते ना कि हमेशा जो सोचते हैं हमारे आस पास वैसी ही चीजें होने लग जाती है। तो जो प्रकृति है वो हमें वही देना शुरू कर देती है जो हम उसे देते हैं और जो हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचें, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और जो जीवन मिला है वो अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी को एक साथ ले जाने के लिए है। प्रकृति भी उसमें शामिल है, पशु पक्षी भी उसमें शामिल है और हमारे आसपास जो लोग हमारे रहते हैं, हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के लोग, हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है और एक साथ मिलकर ही आगे चलना है। तो हंसते खिलखिलाते हुए सबको एक साथ लें, प्रकृति के लिए भी अपना थोड़ा सा समय निकालें, पौधों में पानी दें, साफ सफाई का ध्यान दें और छोटी छोटी आदतें जैसे कि इधर उधर थूक देना, गंदगी फैला देना, कूड़ा यूं ही बाहर फेंक देना, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति तो खुश रहेगी, गंदगी नहीं फैलेगी और रिश्ते भी संवरते रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अच्छा सोचेंगे। और हंसते खिलखिलाने की बात होती है तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मुझे बेहद पसंद है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जी हाँ, चाहे कितने भी मुश्किलों, कितने भी परेशानियां हो, हंसते हंसते हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। खून भरी मांग से ये गीत जो है वो मुझे बहुत पसंद है, नितिन मुकेश और साधना सरगम और साथियों की आवाज में। और इससे पहले आपने सुना था कोई मिल गया फिल्म का शान की आवाज में गीत। इसीलिए तो हम कहते हैं आपसे कि हंसते हंसते हर एक काम की शुरुआत करें, हंसते हंसते मिलें, हंसते हंसते एक दूसरे का साथ दें।

जिंदगी बहुत छोटी है और इसलिए हर सुबह की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान और अटूट विश्वास के साथ हम सबको करनी चाहिए। अगर कहते हैं ना कि इरादे मजबूत होते हैं तो कोई भी रुकावट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, वो किसी को नहीं रोक सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि उदास मत होएं, जब मुस्कुराहट रहती है, हंसते हंसते आप किसी भी काम को करेंगे तो जिंदगी आपको आसान ही लगेगी और आपका काम भी झट से हो जाएगा। इसी मंत्र को अगर आप पूरी जिंदगी अपने साथ गांठ बांध के रख लेंगे तो कभी भी कोई भी काम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं

दोस्तों, सुबह सुबह हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे पास एक मैसेज मिला है, हमें जो संदेश हम देख रहे हैं ये है कल्पना मलौदे का। इन्होंने सुरेश और वर्षा श्रद्धा मानसी मलौदे के साथ कोपर गांव से ये संदेश हम तक पहुंचाया है। आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। वैसे हम जानते हैं कि सुबह की भागदौड़ बहुत ज्यादा होती है और इसमें थोड़ा समय निकालना क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे और भी साथी हमारे साथ जरूर जुड़े होंगे और सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज है आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा जी। आज वीकेंड पे नहीं बल्कि कहते ना सप्ताह के मध्य में बात हो रही है, आज मुलाकात सप्ताह के बीचों बीच यानी वीरवार को। तो चाय की चुस्कियों के साथ अपनी सारी चिंताओं को भाप में उड़ा दीजिए और अगर ऐसे भी आप चाय नहीं पीते, आप बोलिए अरे भी चाय तो नहीं पीता तो क्या करें, तो हम ये करेंगे चिंता जब आए तो थोड़ा सोचें लेकिन उसके बाद उसके सोल्यूशन पर काम करें, ना कि ज्यादा चिंताओं में डूब जाएं।

अपने आप से वादा करिए कि ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना चिंता का नाम ही दूसरा चिता है। तो हम तो चाहते हैं आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मोटिवेटेड रहें, और जब भी आपको मौका मिले तो आप जब भी आपके आसपास उत्सव के कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन या भी कोई भी किसी भी तरह का कार्यक्रम, आप उनमें जरूर शामिल हों, क्योंकि कई बार अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है, उसे खाता रहता है अंदर अंदर। तो उससे उभरिए, बाहर निकलिए, अपनी हॉबीज को, अपनी जो आपकी काम करने की इच्छा है, अलग अलग शौक है, उन्हें जिंदा रखिए, और अपने आप को पूरा दिन व्यस्त रखते हुए हमारे साथ बने रहें 24 घंटे 7 दिन। और यही कहेंगे कि हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, और चिंताओं को दूर करें, चिंताओं से बढ़कर सॉल्यूशन यानी समाधान पर काम करें। इसी के साथ अपने दोस्त सुषमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत साथियों आपको सुना रही हूँ खिलाड़ी फिल्म से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में, विदा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से

0: पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गांव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गांव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
1: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी, जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
0: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
2: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
0: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258.07 करोड़ रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
4: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रूपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
5: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे।

0: मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया उई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में बी सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गयी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया।

0: उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks including regional rural banks to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
3: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries and residents, as well as activities at schools, hospitals, nursing homes and other community locations. The journey is scheduled to continue until October 7. Harshita Ojha, Akashwani News, Delhi.
2: The Delhi Cabinet has approved the Durga e-auto scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under this scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. More details in this report.
4: This scheme was approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under this scheme, 1,300 pink electric

0: Plebeian. Bermuda, now part of Oxford Dictionary, says the Times of India. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshabina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। यह सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और अवामी राबतों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। यह सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राबतों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राबतों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता के जेर सदारत मुनक्किद काबिनी मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 1170 ऑटो खवातीन के लिए जबकि 130 ऑटो मुखन्नस अफराद के लिए मखसूस होंगे। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट खवातीन के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 और मुखन्नस अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रिक ऑटो मुख्तस किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदाम करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए

0: टू व्हीलर, टैक्सी और थ्री व्हीलर ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रूपये की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में इसकी खिदमत शुरू हो चुकी है। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गई ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने कहा है कि इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस महीने की 27 तारीख को यानी इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम की जानिब से इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में 3 दिन की मुजवजा बैंक हड़ताल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, क्योंकि इससे कबल 26 और 27 सितंबर को खत्म हफ्ता की तातीलात भी हैं। वजारत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों की शाखों, दफातर, एटीएम से वाबस्ता शाखों और करेंसी चेस्ट को इतवार के रोज पूरी तरह काम करने की मंजूरी दे दी है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमत बिला रूकावट जारी रहें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। कालेधन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलव्वस है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के संत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: मरकजी हुकूमत के जरिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के दूर दराज और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को नल से पानी फराहम करना था, जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को फायदा हो रहा है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाके के बावजूद हिमाचल प्रदेश ऐसी पहाड़ी रियासतों में से एक बनकर उभरी है, जहां तकरीबन हर घर में नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तक रियासत के तकरीबन 17,09,000 देही घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और जल जीवन मिशन के प्रोविजन के मुताबिक यौमिया फीकस 55 लीटर साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शिमला जिले के बदेई गांव की रहने वाली ममता ने कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के हर घर को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं, जिससे खास तौर से खवातीन को काफी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: इसी तरह से उमंगों वाले जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज इलाकों में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।
3: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: फौलियत के जायजे और पीने के पानी के मेयार में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश की मुसलसल हौसला अफजाई की जा रही है। जल शक्ति की वजारत ने माली साल 2026-27 के लिए

0: जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत रियासत के लिए 258,07,00,000 रूपये की आर्जी रकम मुख्तस की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कालिंगापट्टनम के नजदीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके जेर असर ओडिशा के कई हिस्सों खासतौर पर जनूबी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ओडिशा में लगातार बारिश होने से कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भर जाने, चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क राबते मुनकता हो जाने की इत्तला मिली है। कल रात देर गए हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगापट्टनम के नजदीक साहिल को पार कर गया। उस वक्त 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। ओडिशा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 प्रगना, हावड़ा, बांकपुरा, परोलिया और बीरभूम शामिल हैं। शिमाली बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। साहिली जिलों जनूबी 24 प्रगना और मशरकी और मगरबी मिदनापुर में हवा के तेज झक्कड़ चलने की भी पेशगोई की गई है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान, निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इधर गोवा, महाराष्ट्र और रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी और वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन के झांग शियाऊ यू से 3-0 से हार गईं। रोशबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमुदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को लूक मैक्शेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता विट्यूगोव को हराया, जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डेनियल हार्वर्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया कोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि तरक्की पजीर ममालिक को फैसला साज इदारों में जगह दी जानी चाहिए। अखबार इनकलाब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से लिखता है, भारत अचानक रूस से खाम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और न ही फौरन दूसरे सप्लायर्स पर शिफ्ट हो सकता है। अखबार की एक अहम सुर्खी है, सरकारी बैंकों में 27 सितंबर बरोज एतवार भी होगा काम, हुकूमत ने हिदायत जारी की। जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा 5 लाख रुपए का समाजी तहफुज।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیراعظم نریندر مودی سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت

0: नगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को डेढ़ के मुकाबले ढाई प्वाइंट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आरब अली खान का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं असीम अली खान।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वरगंगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आरब अली खान का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे असीम अली खान। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उद्योग पत्रिका। आज भेंट वार्ता रहेगी यूपीआई आसान लेनदेन की नई पहचान। श्री मनीष मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कमल किशोर जी की बातचीत होगी।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: अपने सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। खरीदारी से लेकर बिल भुगतान और पैसे भेजने तक डिजिटल भुगतान ने वित्तीय लेन देन को काफी आसान बना दिया है। हमारी जिंदगी आसान भी हो गई है। इनमें यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने विशेष रूप से अपनी पहचान बनाई है। अब नगद रखने की कोई परेशानी नहीं होती है। यूपीआई क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कई सवाल हैं। आज यूपीआई से जुड़े आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मिश्रा जी को। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
4: धन्यवाद कमल जी।
3: बिल्कुल आसान शब्दों में ये समझाइए कि ये यूपीआई क्या है और ये किस तरह काम करता है।
4: इसको मैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में आपको मैं पूरा बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा जो डिजिटल पेमेंटें जो होती हैं, या तो NEFT हो रही है या RTS हो रहा है, मतलब जो बैंकिंग रूट से जा रही है, जिसको क्लियरिंग में या उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट जाने में एक बैच में जाती है। जैसे जो RTS होती है वो रियल टाइम सेटलमेंट होती है, यानी कि जब हम करते हैं तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, या IMPS होता है इमीडिएट। वो भी NEFT की 6 साइकिलें हैं, जो दिन में हर घंटे में साइकिल है उसकी, उस साइकिल पे वो प्रोसेस होती है, यानी कि बैच में प्रोसेस होती है। तो उसी श्रृंखला में जिसको फिनटेक इंडस्ट्री की बोलेंगे, तो फिनटेक इंडस्ट्री जब इवॉल्व हुई तो उसमें जो पेमेंट सोल्यूशन है, मतलब उसमें इनोवेशन हुआ, तो उसमें सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड आया था। आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड, उसमें एक चिप होती थी, वहां से स्वैप होता था, उससे सारा ट्रांजेक्शन चलता था।
3: साथ साथ डेबिट कार्ड भी था।
4: डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड, मतलब कार्ड का एक समझ लीजिए प्रीपेड कार्ड या क्रेडिट कार्ड में उसमें क्रेडिट लिमिट होती थी, डेबिट कार्ड में लिमिट नहीं होती थी। तो वो ऐसा, अब जब स्मार्टफोन का जब चलन हिंदुस्तान में बढ़ा तो उसमें मोबाइल ऐप, ये पहले अगर आपने देखा होगा आपने, तो पहले केवल जो वॉलेट सिस्टम चलता था, यानी कि उसमें कंपनियां प्रीपेड पैसे उसमें डाल के, या आप उसमें पैसे डालते थे, 1000 रुपए डाला आपने, 500 डाला, केवल वही आप यूज कर पाते थे, वो भी केवल पीयर टू पीयर, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी, कोई उसमें मर्चेंट या दुकानदार इन्वॉल्व नहीं होता था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी। यानी कि पैसे आप नहीं भेज सकते थे, जितने पैसे आपने वॉलेट में रखे हैं, आपने पॉइंट आपको जो मिले हैं उससे आपका होता था। आप 10 साल पहले की बात करेंगे, जब जिस श्रृंखला में कंपनियां जब हिंदुस्तान में आई थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई, अब इस पेमेंट सिस्टम में फिर RBI ने एक लाइसेंस इशू किया जिसको पेमेंट गेटवे का लाइसेंस बोलते हैं, या पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे, जिसमें बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होने शुरू हुई, यानी कि ऐसी कंपनी को राइट दिया गया कि वो पैसे इधर उधर भेज सके, तो उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे का लाइसेंस या पेमेंट का लाइसेंस। जो लाइसेंस पहले रेजर पे या बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आप देखते होगे, जो आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते होगे, तो उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं या बैंक अकाउंट का UID पासवर्ड डालते हैं, OTP आता है, आप पेमेंट करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये UPI आया है, जिसके लिए जो NPCI है, जो नेशनल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का, वही मॉनिटर करता है ये RTS NEFT या जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। स्पेशली चेक भी वही मॉनिटर करता था, यानी पहले जो चेक भी क्लियर होता है वो NPCI ही क्लियर करता था। RBI के अंडर वो एक बॉडी है जो कि जिसके लिए वो चार्जेस देता है। तो RBI ने NPCI ने एक लाइसेंस निकाला जिसको बोलते हैं TPAP, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर का एक लाइसेंस हुआ, सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें ये वाला सिस्टम लगाएगा जिसमें एक स्पॉन्सर बैंक होता है, यानी कि एक मोबाइल ऐप वाली कंपनियां या टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर होती है, वो कंपनियां उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो सॉफ्टवेयर स्पॉन्सर बैंक के थ्रू दो बैंकों के बीच में बात करता है। यानी कि जब हम यहां से UPI करते हैं और वो दूसरे बैंक में जाता है।

0: ये जो यूपीआई लाया गया या वॉलेट सिस्टम का सिस्टम लाया गया, शुरू में आपने देखा होगा पहले यूपीआई 2000 रुपए चलता था, फिर उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई, उसको 1 लाख रुपए, 10,000 करा, फिर 1 लाख करा, आप 5 लाख तक आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सिस्टम जब इवॉल्व हुआ, जब गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने या एनपीसीआई ने सिस्टम को और स्ट्रांग किया, टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे डेवलप हुई, तो वो लिमिट बढ़ती चली गई।
1: तो क्या यूपीआई का उपयोग क्या सिर्फ खरीदारी और पैसे के लेन देन यानी कि भेजने तक ही सीमित है या कुछ और भी?
0: यूपीआई का मेजर यूज तो पेमेंट में ही है ऑब्वियसली।
1: तो एक सीए के दृष्टिकोण से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से डिजिटल रिकॉर्ड का भी इसमें महत्व रखता है, जैसे कि आपने एनपीसीआई की बात की है।
0: अगर आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी कह सकते हैं उसको, तो गवर्नमेंट चाहती ही है या कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉर्मल के रास्ते पे चले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो सरकार को पता हो कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। उसके दो फायदे हैं। उसका एक तो फायदा यह है कि सरकार को ये पता लगता है कि हमारा एक मार्केट साइज कितना है या जीडीपी में वो अकाउंटिंग में आता है। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर के लिए और बाकी स्कीमें निकालने के लिए कहां पे क्या कंट्रोल करना, उसके लिए भी फायदा होता है। तो डिजिटल डिमोनेटाइजेशन से फायदा यही हुआ कि जो सारी पेमेंट है, उस समय यूपीआई आ चुका था इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर उस टाइम हुआ। तो जैसे अब सरकार को पता है कि एक किराने वाला कितना पैसा ले दे रहा है या पेट्रोल से कितना भरा जा रहा है, आप सारा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रिकॉर्डिंग से ऑलवेज डिसीजन मेकिंग में उसका फायदा होता है,
1: यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है और मतलब उसको काफी फायदा हो सकता है।
0: हम जैसे सीए हैं, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे काम ये, हमें तो अगर आप अकाउंटिंग का रूल देखोगे, सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको क्लासीफाई किया जाएगा, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एमआईएस या उससे कुछ क्रक्स निकाल पाएंगे उस डेटा से। पहले डेटा होगा तभी इन्फॉर्मेशन होगी।
1: तो मनीष जी, अक्सर देखा जाता है कि हम यूपीआई ऑटो पे है या फिर यूपीआई लाइट है, यूपीआई 1-2-3 पे है, ये क्या है और इनके क्या फायदे हैं?
0: देखिए, यूपीआई जो लाइट है वो यानी कि 2000 तक की जो छोटी ट्रांजेक्शन उसको लाइट में डाला गया। आपने दूसरा ऑटो पे बताया, ऑटो पे ई नैच सिस्टम है, नैच इसको बोलते हैं, नेशनल क्लियरिंग सिस्टम में आपने फिक्स कर दिया कि यूपीआई से इस डेट पे इतना रुपया कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑटो पे या यूपीआई नैच।
1: तो ये जो यूपीआई 1-2-3 पे ये क्या है?
0: ये मोबाइल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू दो चीजें, एक इंटरनेट से जब ट्रांजेक्शन होती है यानी मोबाइल ऐप से जब ट्रांजेक्शन होती है तो वो ये यूपीआई के थ्रू जाएगा, यूपीआई हैंडल या बारकोड के थ्रू जाएगा या ऑटो पे के थ्रू जाएगा। और जब आप एसएमएस से करते हैं, जब एसएमएस करके तो एसएमएस में एक कोड वर्ड डिसाइड कर दिया गया कि यूपीआई 1-2-3 आ गया, आप ट्रांजेक्शन डालेंगे तो वो एसएमएस से जो ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: यानी कि आप विदाउट स्मार्टफोन के,
0: विदाउट स्मार्टफोन, गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको भी लाया था कि जो बहुत बड़ी जनता है, रूरल जो जनता है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो यूपीआई कैसे, उसका फायदा कैसे उठाए।
1: तो यूपीआई पर ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड, ये इसका क्या रोल होता है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है?
0: पहले क्या था कि हिंदुस्तान में कार्ड की बात करेंगे, जो कार्ड का जो सिस्टम था वो उस पर विदेशियों का ही कब्जा था, यानी कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये दो स्पेशली मेजर जो स्टेक होल्डर थे इस कार्ड के इकोनॉमी में, तो ये टेक्नोलॉजी केवल इन लोगों के पास थी। अब जब हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम है, हमारे पास अपना क्लियरिंग सिस्टम है, एनपीसीआई है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये यूपीआई सिस्टम जो ले आई, तो यूपीआई वो रूपे जो है वो यूपीआई यानी कि उसको एनपीसीआई जो है वो कंट्रोल करता है। एनपीसीआई ने ये रूपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में।
1: वैसे हमने देखा है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे तो बहुत होते हैं लेकिन उसके नुकसान भी कई बार झेलने पड़ते हैं और यूपीआई में कई बार ऐसे परेशानी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड या परेशानी किस प्रकार की संभावना बनी रहती है?
0: लेकिन यूपीआई में जो ज्यादातर जो होता है उसमें अगर आपने गलत यूपीआई कोड डाल दिया तो पैसा उसके पास चला गया, तो वो रिकॉल बैक नहीं होती है, वो एक बड़ी समस्या है जो नए लोगों के साथ होती है। आप बार कोड पे कर रहे हैं तो डिफरेंट है, या बार कोड में भी किसी ने दूसरा बार कोड लगा दिया तो वहां पे पैसे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे बीच में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रही है, इसलिए आपको वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, चूंकि जनता उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं है या टैक्स भी नहीं है, तो वो कभी कभी गलती से हो जाती है।
1: कोई व्यक्ति अगर गलती से ट्रांजेक्शन कर लेता है, किसी के पास पैसा चला जाता है, भेज देता है, तो उसे वापस लेने का क्या कोई उपाय हो सकता है?
0: बिल्कुल उपाय है, आप अपने बैंक को इंटीमेट करते हैं, तो वो जहाँ पे पैसा गया रहता है वहाँ पे उस पर लियन लग जाता है
1: जी,
0: तो उतना पैसा वो आदमी यूज नहीं कर सकता है, तो वो फिर दोनों बैंक के आपस में बात करके उसको कॉल बैक कर लेते हैं।
1: तो वित्त प्रबंधन यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या फिर बड़े व्यापारी हैं उनके लिए किस प्रकार से ये यूपीआई एक बेनिफिशियल हो सकता है?
0: जैसा कि मैंने यही बताया कि जो भी अगर कैश में ट्रांजेक्शन होती हैं तो उसका ना सरकार के पास कोई हिसाब किताब होता है और ना ही जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है वहां पे कोई उसका फायदा मिलता है। अब यूपीआई ट्रांजेक्शन करेगा तो सरकार को पता लगता है ये महीने की 4 लाख की सेल कर रहा है, 5 लाख की सेल कर रहा है और ये इतने रुपए का माल खरीद रहा है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है,
0: 100% जरूरी है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां आप सारा देखेंगे, वहां पे ज्यादातर जो है डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम या वहां पे कैशलेस इकोनॉमी है, तो कैशलेस इकोनॉमी से फायदा यही है कि आप डेटा आपका रिकॉर्ड होता है।

0: वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और उससे जो यूजर है उसको फायदा होता है। ये आपने आजकल देखा होगा जो डिजिटल लेंडिंग चल रही है, यानी कि ऑनलाइन लोन देना या एक मिनट में लोन मिल जाता है, पांच मिनट में आपका ऑनलाइन, आप नंबर डालते हैं, चार ओटीपी आता है आपके अकाउंट में, पैसा रात के 12 बजे भी आ जाता है। क्यों हो पा रहा है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग यूपीआई के थ्रू ज्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही है या ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: बैंक जाने की आवश्यकता नहीं
0: पड़ती, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। या जो छोटी एनबीएफसी हैं या बड़ी एनबीएफसी हैं उनको पता है कि आदमी इतना रुपया सेल कर रहा है या इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये पैसा उसकी क्रेडिट वर्थिनेस वहां से असेसमेंट हो जा रही है। उस एल्गो के बेस पे, उस डेटा के बेस पे वो डिसाइड कर लेता है कि इसको इतना रुपया देना है।
1: मनीष जी, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हर वित्तीय लेनदेन का ख्याल रखते हैं, तो क्या यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन होता है उसका भी क्या कोई लेखा जोखा होता है?
0: यूपीआई तो एक माध्यम है, केवल यूपीआई पेमेंट करने का एक टेक्नोलॉजिकल माध्यम है। जो हिसाब किताब तो बैंक में ही रहेगा, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी सारे पैसे आते हैं, जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो दोनों बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तब भी वो बैंक अकाउंट में आएगा और जाएगा तब भी बैंक अकाउंट से जाएगा।
1: इसमें आईटीआर का यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का इसमें क्या रोल हो सकता है?
0: इनकम टैक्स रिटर्न का यही रोल है, जब आप पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं और जा रहे हैं उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर जो है वो पैसे आपकी इनकम है और खर्चे है उसका हिसाब आपने रखा हुआ है, तो वो दोनों घटा के जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना,
1: यानी कि ऑडिट करना भी जरूरी है।
0: अगर एक लिमिट है कि अगर आप इतने रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप खाली सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए।
1: तो आजकल देखा जा रहा है कि, और अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने यूपीआई की जो पॉलिसी है वो नई पॉलिसी घोषित की है, इसमें एमडीआर और पीटूपी और पीटूएम ये क्या चीज है, इसमें ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसमें क्या फायदा है?
0: इसका मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ थोड़ा। जब कोई भी नया सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें हर चीज के खर्चे हैं, हर चीज का एक्सपेंडिचर है। अब जैसे बैंक ही खुलती थी, बैंक ब्रांच खुलती थी, ब्रांच के लोग बैठते थे, उसका ट्रांजेक्शन करते थे, ऐसे ही जब ऑनलाइन सिस्टम आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा है, सर्वर है, आने जाना जो कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरनेट का खर्चा है या बाकी सारे खर्चे होते हैं। तो आप यूपीआई सिस्टम को सेटअप करने के लिए सरकार को सारा खर्चा वो एनपीसीआई कायदे से बियर कर रही थी, एनपीसीआई बैंकों को सब्सिडी देती थी या एनपीसीआई सबवेंशन कह सकते हैं उसको। अब बैंकें कोई चैरिटी तो है नहीं, बैंक भी अपना काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, या कोई फाइनेंस कंपनी काम कर रही है या पेमेंट कंपनी जो काम कर रही है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है, कोई फ्री में काम नहीं करेगा। तो उस सबवेंशन जो था वो पहले एनपीसीआई देता था,
1: यानी कि मेंटेनेंस की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से चलाना है सिस्टम को।
0: आप अपना घर चलाते हैं, जब आप घर चलाएंगे तो आपको अगर राशन लाना है, आपको गाड़ी चलानी है, तेल लगेगा, बिजली चलाओगे बिजली का लगेगा, तो इसको कोई फ्री से कोई चीज आती नहीं है, हवा पानी के अलावा कोई चीज आज फ्री नहीं, इवन पानी भी आपको अगर पेवर लेना है तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा।
1: जी जी।
0: तो उसी तरह से जब यूपीआई सिस्टम जो चला तो उसमें पैसे लगते थे, तो सरकार ने शुरू में, कोई सरकार का काम है सपोर्ट करना नई चीजों को, तो शुरू में सरकार ने इसको फ्री चलाया, सबवेंशन दिया, सब्सिडी दिया, स्कीम दिया। जैसे आपने देखा होगा शुरू में सिलेंडर पे सब्सिडी थी, पेट्रोल पे सब्सिडी थी, फिर धीरे धीरे वो फेज आउट मैनर में हटाई गई क्योंकि सरकार को भी तो उसको अपना घाटे को मजबूत करना है। अब तो उसी श्रृंखला में सरकार ने ये वाला कदम उठाया, उसमें भी सरकार ने, अगर आप देखोगे जो ये रूल आया है इसमें 95% लोग कुछ भी नहीं देना है। इसके दो पार्ट है, आप समराइज कर देता हूँ। एक है पीयर टू पीयर, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, कुछ भी करते हो आप, आपको कुछ नहीं देना है, एक रुपया नहीं देना, यानी कि हम आप कोई भी किसी एक दूसरे पैसा देते हैं कोई रुपया नहीं देना है। अब दूसरा आता है बिजनेस, कस्टमर बिजनेस में कस्टमर को कुछ भी नहीं देना है, कस्टमर कोई बियर नहीं करना है, कोई डायरेक्ट पैसा कस्टमर से बेचे नहीं करने वाला है। हाँ, जो बिजनेस है उसमें भी 2000 तक अगर कोई आपको पैसा बिजनेसमैन के पास आ रहा है यूपीआई के थ्रू तब कुछ नहीं देना है, 2000 के ऊपर जाना है तब एक सर्टन है, वो भी 300 रुपया है मैक्सिमम, मतलब आप 75,000 तक का ट्रांजेक्शन जब करने जाएंगे तब आपको 300 रुपया देना है।
1: मनीष जी, अब ये बताइए कि यूपीआई का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो आप जो क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं या जो हैंडल यूज कर रहे हैं वो राइटली यूज करें, जिसको पैसा देना है उसी को दें, और ज्यादातर कोशिश करें कि अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा के चले, प्रोटेक्ट करके चले, यही दो मेन चीज है।
1: अगर ओटीपी और यूपीआई और जो पिन आते हैं इन सबकी जो जानकारी होती है साझा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं करनी।
1: और कई बार ये भी देखा जाता है कुछ लिंक्स आते हैं उनको भी क्लिक नहीं करनी चाहिए।
0: इसको आप ऐसा समझिए कि पहले आप अनजान आदमी से बात नहीं करते थे, तो आप मोबाइल पे कोई एसएमएस आए क्यों आप करोगे, या कोई चिट्ठी आ जाए आप फालतू थोड़ी खोल लोगे, अगर आप जानते हो उसको तो खोलिए, नहीं जानते मत खोलिए, जिसको आपसे बात करनी होगी करेगा, आपको जो भेजना होगा बताएगा आपको।
1: तो साथियों, यूपीआई के जरिए जो लेनदेन ने जो जीवन को आसान तो कर दिया है लेकिन बेहद सावधानी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। किसी भी अनजान व्यक्ति से ओटीपी पिन वगैरह शेयर ना करें, ना तो किसी अनजान लिंक को क्लिक करें, सतर्कता और सावधानी में ही हम तो ये कह सकते हैं कि समझदारी है। मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और यूपीआई के विषय में इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, लोगों को जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

आजम शरण की आवाज में आप सुन रहे थे भजन। सामने इसके साथ ही आज का सुबगाही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे

0: समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 24 सितंबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1726 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई, कलकत्ता और मद्रास में नगर निगम और महापौर अदालतों को बनाने के लिए अधिकृत किया गया।
1: I will go a little back, Manoj. I will begin with the year 1493. On this day, Christopher Columbus began his second expedition to the New World, setting sail with a fleet of 17 ships.
0: 1932 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ। 1932 में आज ही के दिन बंगाल की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रीतिलता वाडेदार देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली पहली महिला बनी। 2003 में आज ही के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। 2008 में आज ही के दिन कपिल देव भारतीय क्रिकेटर को थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पदवी प्रदान की।
1: And I think now it is time for us to move to our last segment, wherein we are going to remember the famous personalities who either died on this day or have their birthdays or birth anniversaries on the 24th of September. So, whom are we beginning with first, Manoj?
0: सबसे पहले आज हम याद करते हैं अभिनेत्री पद्मिनी को।
1: जी,
0: आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 12 जून 1932 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम नर्तकी थी, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया। उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है, परदेसी और मेरा नाम जोकर जैसी कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1990 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: शी इज एक्टेड इन तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु एंड रशियन लैंग्वेज फिल्म्स एंड शी इज आल्सो नोन एज वन ऑफ द चार्मिंग ब्यूटी क्वींस ऑफ द 50s एंड 60s एंड वेरी ट्रू हर ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस इन जिस देश में गंगा बहती है वॉज आउटस्टैंडिंग एंड मेड हर अ नेशनल स्टार। बट हियर वी गोइंग टू लिसन टू अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम हर मूवी काजल एंड रिमेम्बर हर।
0: And then

आज जयंती है महुआ राय चौधरी की। उनका जन्म 24 सितंबर 1958 को दमदम पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका मूल नाम शिप्रा राय चौधरी है। वे बांग्ला भाषा सिनेमा की एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में बांग्ला फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने वर्ष 1972 में तरुण मजुमदार की प्रसिद्ध फिल्म श्रीमान पृथ्वीराज से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में श्रीमान पृथ्वीराज, पाक्का देखा, रेंजर साहेब और प्रेम ओ पाप शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

आज जयंती है असित सेन की। उनका जन्म 24 सितंबर 1922 को विक्रमपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म निर्देशक, छायाकार, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने बांग्ला और हिंदी दोनों सिनेमा में काम किया। उन्होंने हिंदी और बांग्ला में 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। वे बांग्ला में दीप ज्वली जाए और उत्तर फाल्गुनी तथा हिंदी में ममता, खामोशी, अनोखी रात और सफर जैसी फिल्मों के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से सुबह 9:50 हुए हैं। अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्तीरानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। यह सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और अवामी राब्तों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। यह सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यह इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत राब्तों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राब्तों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांवों से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज, साफ सुथरे और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदाम करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए टू व्हीलर्स टैक्सी और थ्री व्हीलर्स ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रूपये की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में इसकी खिदमात शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों के झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने कहा है कि इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस महीने की 27 तारीख

को यानी इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम की जानिब से इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में 3 दिन की मुजवजा बैंक हड़ताल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, क्योंकि इससे कबल 26 और 27 सितंबर को खत्म हफ्ता की तातीलात भी हैं। वजारत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों की शाखों, दफातर, एटीएम से वाबस्ता शाखों और करेंसी चेस्ट को इतवार के रोज पूरी तरह काम करने की मंजूरी दे दी है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमात बिला रूकावट जारी रहें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतल्लिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलविज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सम्त लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगपट्टनम के नजदीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके जेरे असर ओडिशा के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने के इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 परगना, हावड़ा, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माय और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन की जांग शियाओयू से 2-0 से हार गईं। रोशिबीना ने 2023 के हांगशु एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गोकेश और आर प्रज्ञानंदन ने जीत हासिल की है, जबकि आजमुदा कार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई दही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस एतवार को खुले रहेंगे।

0: जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। अकवाले जरिए पर अपने प्रोग्राम समाप्त फरमाइए। शमे फरोजा।
2: हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों का मुशाहिदा करते हैं उनमें माली एतबार से मुआशरे में इंसानों की तबकाबंदी भी है। मोहल्ले में, सड़कों पर, इबादतगाहों के बाहर, हर जगह इंसानों के रवैये देखकर हम उनकी माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि हमारी दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है, लिहाजा जो उस कीमत को अदा करने की ताकत रखते हैं उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल होती है, और जो नहीं रखते वो जिंदगी के हर मोड़ पर परेशानियों और मुश्किलात का सामना करते हैं। एक शख्स के पास माल होने और दूसरे के पास ना होने के बहुत से असबाब हो सकते हैं, और ये सारे दुनियावी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक चीज सब में अहम और बुनियादी है वो उनमें मौजूद इंसानियत है। इसका मतलब ये है कि अगरचे दुनियावी असबाब की वजह से किसी के पास दौलत के अंबार जमा हो गए हों और कोई भूखा नंगा और गरीब हो, बहैसियत इंसान वो दोनों बराबर होंगे। गरीब होने के बावजूद उसे भी इज्जत से रहने और अपने तमाम बुनियादी हुकूक हासिल करने की इजाजत होगी। मसाकीन और गरीबों के हवाले से बात करते वक्त हमें जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए उनमें एक तो इंसानियत और दूसरा इंसानी हुकूक हैं। इंसानियत का तस्वुर यह है कि एक इंसान जज्बात और एहसासात के हवाले से दूसरे इंसान के मसावी है। यानी अगर किसी शख्स को जलील किया जाए या फिर वो भूखा हो तो उसकी तकलीफ और एहसास का अंदाजा दूसरा बा आसानी लगा सकता है। अगर गौर किया जाए तो यही वो डोर है जो हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है और इस बात की तरगीब भी करती है कि हम एक दूसरे से अच्छा सुलूक करें। जो दूसरी चीज है वो इंसानी हुकूक हैं। यानी बहैसियत इंसान सबको जिंदगी, इज्जत और आजादी के बुनियादी हुकूक हासिल हैं। जो लोग मालदार होते हैं वो अपने हुकूक के हुसूल के लिए दूसरों पर मुनहसर नहीं होते, हालांकि कमजोर लोगों को खुद कफील हजरात पर इन्हिसार करना पड़ता है। लिहाजा इंसानियत का तकाजा ये है कि खुद कफील हजरात मुआशरे के इन कमजोर और गरीब लोगों से हमदर्दी का ताल्लुक कायम करें और उनके बुनियादी हुकूक की फराहमी में उनकी मदद करें। मुआशरे में मौजूद गरीब और मिस्कीन अफराद की मिसाल एक खुशहाल खानदान में मौजूद गरीब भाइयों की सी है, जिनकी मदद उनके मालदार भाई करते हैं। जिस खानदान में अमीर भाई गरीब भाई की मदद नहीं करते वो खानदान बिखर जाते हैं। इस मिसाल पर मुआशरे को भी कयास कर सकते हैं। मुख्तलिफ मजाहिब जो एक सालेह माशरे के मेमार हैं उनकी तालीमात का बहुत ज्यादा जोर गुरबा और मसाकीन से हमदर्दी पर होता है। इस्लाम ने भी मसाकीन से हमदर्दी के लिए लोगों को तरगीब दी है। कुरान की सूरह निसा आयत नंबर 37 में है कि वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो और करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, हमसायों और मुसाफिरों के साथ भी हुस्ने सुलूक करो। यकीनन अल्लाह मुतकब्बिर और शेखी भगारने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत के आखिरी अल्फाज चंद अहम निकात की तरफ इशारा करते हैं। बाज लोग गरीबों को झड़कते हैं तो वो मुतकब्बिर और घमंडी हैं, और बाज लोग गरीबों की मदद तो करते हैं लेकिन दुनिया जहां में उसका चर्चा करते फिरते हैं, तो ऐसे लोग भी नापसंदीदा हैं। इसकी वजह यह है कि जब कोई किसी गरीब की मदद करे और फिर अपनी सखावत का बखान करता फिरे तो इससे उस गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह होगी और मुआशरे में

0: उसे वो दर्जा नहीं दिया जाएगा जिसका बहैसियत इंसान वो हकदार है। लिहाजा इस बात की ताकीद की गई है कि अगर कोई किसी गरीब की मदद करे तो ऐसे कि किसी को इसकी खबर न हो, और रही दूसरों को तरगीब दिलाने की बात तो वो गरीबों की मदद के फवायद बयान करके दिलाई जा सकती है। एक अहम बात यह भी है कि हमें गुराबा मसाकीन की तकलीफों का एहसास करने की भी कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हमारे अंदर उनके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो सकें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जितना गम इंद हो मुझे है उतना इस दुनिया में किसी को न होगा, क्योंकि इतने लोग आते हैं और अपना दुख दर्द कहते हैं, वो सब मेरे दिलोजान में बैठ जाता है। सूफिया के पास लोग अपनी तकलीफें बयान करने के लिए आते थे ताकि वो उनके लिए दुआ करें या किसी साहिब माल से उनकी सिफारिश कर दें। आज भी ऐसा होता है कि गरीब लोग अपनी परेशानियों को साहिब माल या साहिब इख्तदार लोगों के पास ले जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो उनके साथ नरमी और अखलाक से पेश आए। नीज हर इंसान को अपनी ताकत के हिसाब से मुआशरे में मौजूद जरूरतमंदों और गरीबों की मदद की कोशिश करते रहना चाहिए।
1: सामिन, आप सुन रहे थे अकवाल-ए-ज़री पर मबनी प्रोग्राम शम-ए-फ़िरोज़ां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है गाज़ी में गज़लों का प्रोग्राम हुस्ने गज़ल। हुस्ने गज़ल प्रोग्राम में आज समाअत फरमाइए महिमा कसीबा और मज़हर अली खान की गायी गज़लें। लीजिए पहले समाअत फरमाइए महिमा कसीबा से कैफी आज़मी का ये कलाम।

सभी श्रोता आप सुन रहे हैं रेलफी में गजलों का प्रोग्राम हुस्न गजल। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मदर अली खान की आवाज में समाप्त होगी मिर्जा गालिब की ये गजल।

0: डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आयुष्मान भारत को शुरू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के विस्तार के साथ अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि 8 साल में आयुष्मान भारत ने आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज के खर्च को किस हद तक बदला है और आगे इसकी दिशा क्या रहेगी, इन मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत को 8 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों की बात कर रही है, इनमें से आप क्या मानते हैं कि असल में फायदा कितने लोगों को, कितने परिवारों को हुआ है, कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है?
2: अभी तक के जो आंकड़े हैं जो 8 साल पूरे होने पर उपलब्ध हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा अधिकतर लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार देश की आबादी के बॉटम 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए की प्रति परिवार प्रति वर्ष हेल्थ कवर उपलब्ध कराती है और आज तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो 13 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न अस्पतालों में, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं हमारे 38,000 से ज्यादा अस्पताल हैं, जहां इनका इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इसके इलाज हुए हैं। तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है और अगर इसे मनी के टर्म्स में देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत इन 13 लाख लोगों के परिवारों को हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: आम आदमी के लिए सर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आयुष्मान कार्ड होने पर 5 लाख रुपए तक का एक कवर मिलता है उसे, तो ये कवर वास्तव में काम कैसे करता है और किन किन बीमारियों के इलाज में फायदा होता है? क्या कुछ ऐसा भी है जहां ये कार्ड काम नहीं आता है?
2: देखिए, सबसे पहले तो ये कार्ड काम ही करता है जहां जो सूचीबद्ध अस्पताल है। तो जो 38,000 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 18,000 प्राइवेट अस्पताल हैं और 20,000 करीब सरकारी अस्पताल हैं। दूसरा, ये जो कार्ड है ये केवल इंडोर पेशेंट के लिए कार्य करता है, ये सर्दी खांसी के इलाज की तरह आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए एडमिट होना होता है। भले ही वो एडमिशन केवल एक दिन भर के लिए ही हो, जैसे एनिमल बाइट है या फिर डायलिसिस है, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 24 घंटा एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिशन लेना होता है, आईपीडी पेशेंट के रूप में ही इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तीसरा, ये कार्ड जिनको मिला है, जो लाभार्थी की सूची में है, इन्हें एडमिशन के समय, रादर रजिस्ट्रेशन के समय, अपने आप को आइडेंटिफाई करना होता है बायोमेट्रिक के माध्यम से, वो चाहे फिंगरप्रिंट के माध्यम से हो, फेस ऑथ के माध्यम से हो, और जहां कहीं नेटवर्क नहीं उपलब्ध हो पाता है, इवन ओटीपी के माध्यम से हो, परंतु उसे ऑथेंटिकेट होना पड़ता है कि ये जेन्युइन पेशेंट है जिसकी पहले से लाभार्थी की सूची में नाम है और इन्हें उस इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये जैसे ही इलाज की जरूरत है, अगर वो सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, तो उससे संबंधित कागजातों को अपलोड करना होता है एनएचए के आईटी सिस्टम पे, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इन्हें उस इलाज की जरूरत है, और तभी जब प्लेटफॉर्म से हम उसे ऑथराइज करते हैं, जिसे प्री ऑथराइजेशन कहा जाता है, जब ऑथराइज करते हैं तब वो ट्रीटमेंट शुरू होता है। इमरजेंसी के मामलों में जहां पे ट्रीटमेंट शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप एडमिशन ले लें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसके बाद आप प्री ऑथराइज कर दें, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के 3 दिन के अंदर का होना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो लाभार्थियों का सही आइडेंटिफिकेशन हो सके, दूसरा एक्सेस या अंडर ट्रीटमेंट नहीं हो, तीसरा ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो जितने पैकेजेज हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अभी तक जो हमारा लेटेस्ट पैकेज है उसके अनुसार 1961 लगभग 2000 ट्रीटमेंट प्रोसीजर हैं जो कि इसके तहत एडमिसिबल हैं, और इसमें अधिकतर बीमारियां शामिल हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर, किडनी, इवन जो फीवर होते हैं जिसमें एडमिशन कराना होता है, डायलिसिस, ये सारे अधिकतर पैकेजेस शामिल हैं। कैंसर के ही काफी सारे पैकेजेस हैं जिसमें शामिल हैं, कई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के भी पैकेजेस हैं, कैटरैक्ट है, नी ट्रांसप्लांट है, इस तरह के भी पैकेजेज इसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जिस बीमारी की इलाज गरीब आदमी कभी सोच नहीं पाता था, और रीजन ये था कि उस बीमारी के इलाज के लिए कोई न कोई चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो जमीन बेचना होता था या बच्चों की पढ़ाई छोड़नी होती थी, और कई बार तो बुजुर्गों के लिए इलाज छोड़ ही देना होता था और सारी आवश्यकताओं को देखते हुए। इसके साथ ही साथ कई बार महिलाओं का इलाज पोस्टपोन होता रहता था, जो कि इस योजना के आने के बाद से और योजना के आंकड़ों से भी पता चलता है कि लगभग 50% इलाज महिलाओं के द्वारा लिया गया। तो ये शो करता है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि दबा दी जाती थी, पोस्टपोन कर दी जाती थी, उनका इलाज इस योजना के आने के बाद संभव हो सका है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, और हमारी सिस्टम भी ऐसी है जिसमें कि आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे ट्रांजेक्शन संभव हो पाते हैं।
1: सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि जब अस्पताल व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ही इमरजेंसी होती है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि हम सही अस्पताल में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आयुष्मान में कवर है ये हॉस्पिटल नहीं, तो ये वो कैसे पता कर सकता है?
2: इसके लिए हम लोगों ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए एक अच्छे पुख्ता व्यवस्था किया है, जो रोबस्ट सिस्टम है, और इसके चार मेजर चैनल है जिससे ये सारी जानकारियां मिल सकती है, न केवल अस्पताल की और बीमारी की, इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी इससे ली जा सकती है। सबसे पहला तो जो सिटीजन के लिए सबसे आसान भी है, 1455 टोल फ्री नंबर है पूरे देश के लिए, और इस नंबर पे फोन करने से हमारा कॉल सेंटर जो 24/7 काम करता है, इसके माध्यम से योजना की सारी जानकारी ले सकते हैं, कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड है, किस अपने जहां उपस्थित हैं उसके आसपास का कौन सा हॉस्पिटल है, ये भी जानकारी ले सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिटी वाली कौन सी सूचीबद्ध हॉस्पिटल है, तो ये सारी जानकारी उससे ली। सिमिलर जानकारी ये पोर्टल पे भी उपलब्ध रहती है, तो जिनको पोर्टल का एक्सेस है, खास करके नए जनरेशन के लोगों को जो देख पाते हैं, वो आसानी से उस पे भी सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने एक आयुष्मान ऐप बनाया है, जो आयुष्मान ऐप को अपग्रेड करके ऐसा सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अपना कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपने नियर बाय हॉस्पिटल की जानकारी ले सकता है, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी दे सकता है। और सेम चीज हम लोगों ने व्हाट्सएप जो है चैटबॉट के माध्यम से एक आयुष्मान सारथी भी शुरू किया है, कि अगर चैटबॉट पे जैसे ही हाई करेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा।
1: तो आइए सुनते हैं आयुष्मान भारत के 8 साल पूरे होने पर ये खास रिपोर्ट।
0: आयुष्मान भारत योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अपनी यात्रा में एक बड़ा पड़ाव पार कर रहा है। नगद रहित अस्पताल उपचार से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तक, यह योजना लाखों लोगों के इलाज तक पहुँचने के तरीके को बदल रही है। 8वें वर्ष में प्रवेश करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है, जो हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का नगद रहित अस्पताल उपचार कवर देती है। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश की लगभग 33% आबादी शामिल है, और 21 सितंबर 2026 तक 48 करोड़ 51 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 38,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए ABPMJ अब तक 13 करोड़ 25 लाख अस्पताल भर्तियों को कवर कर चुका है, जिनकी कुल लागत 2.03 लाख करोड़ रुपए है। इससे कमजोर तबके के परिवारों पर पड़ने वाला निजी स्वास्थ्य खर्च काफी कम हुआ है। योजना 27 विशेषताओं में 1961 प्रक्रियाओं को कवर करती है, और अब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्टाफ, 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य वंचित समूहों को भी शामिल करती है। लेकिन आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल कवर नहीं है, यह 4 स्तंभों पर टिका है जो मिलकर काम कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुदायों के करीब लाते हैं, जहां मुफ्त दवाएं, जांच और डेली परामर्श उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर अब तक 540 करोड़ से अधिक फुटफॉल और 50 करोड़ टेली परामर्श दर्ज किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 97 करोड़

0: 61 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाई गई है, जिनसे लगभग 120 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े हैं, ताकि अस्पतालों में कागज रहित और सुचारू इलाज संभव हो सके। वहीं पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहरी और ग्रामीण भारत में लैबों, क्रिटिकल केयर ब्लॉक और रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इन सभी पहलों के जरिए गांव के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक सतत देखभाल प्रणाली तैयार हो रही है, जो भारत को सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। 8 साल बाद आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बीच चुनाव न करना पड़े।
1: कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि योजना का दायरा तो उन्हें पता है, लेकिन अस्पताल में उनसे ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मैकेनिज्म हमने बनाया है कि उनकी शिकायतों को का निपटारा हो सके या शिकायतें सही जगह पहुंचे? कैसे
2: 4 माध्यम रखा है, जिससे कोई भी व्यक्ति न केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत के लिए भी ये 4 चैनल्स ओपन है। दूसरी बात कि ये जो शिकायत स्पेसिफिक केस है, जिसमें किसी व्यक्ति को एलिजिबल रहने के बावजूद ट्रीटमेंट डिनाई कर दिया गया या फिर पैसे मांगे गए या कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे केसेस को हम लोग SOS कैटेगरी में रखते हैं और इन केसेस को 5 घंटे के अंदर ही निपटारा करना होता है। क्योंकि अगर ये ज्यादा समय लगेगा तो वो एक तरह से जो शिकायत है वो चाहे उसका रिजल्ट आउट मतलब ऑलरेडी हो जाएगा, चाहे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा या फिर पैसे दे देगा या कुछ इस तरह का होगा। तो इसलिए इन्हें SOS कैटेगरी में रखा गया है और 5 घंटे के अंदर इसका निपटारा करना है। और ऐसे केसेस को हम लोग न केवल ये IT सिस्टम में रखते हैं, बल्कि हम डायरेक्टली नेशनल लेवल से स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को कॉल करते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल को भी कॉल करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इस तरह का कम्प्लेन आया है। और हमने देखा है कि 90% से ज्यादा केसेस में ये चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। और ये मैं नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये सुविधा उन्हें उपलब्ध है। जहां भी आयुष्मान कार्ड देने के बावजूद 1 रुपए की भी मांग की जाती है, तो वो पहले तो उनसे रसीद मांगे, ताकि ये पता चले किस चीज के लिए उन्होंने पैसे मांगे हैं। वो इलाज अगर आयुष्मान भारत में कवर्ड है तो 1 रुपए भी नहीं लगने चाहिए। और अगर वो रसीद दिए बिना पैसे की मांग कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पे शिकायत की जाए और इसका निपटारा 5 घंटे के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो पूरी टीम है कॉल सेंटर और ये लग करके करती है और हमें अधिकतर मामलों में सफलता मिल जाती है।
1: आज के दौर में तकरीबन कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं और क्या ग्रामीण और छोटे शहरों में इसे और बढ़ाने की योजना है हमारी?
2: देखिए, ये जो अब तक की स्थिति है, 38,000 से ज्यादा हॉस्पिटल जो है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध है, इम्पैनल्ड है। इसमें से 18,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, CHCs ये सारे इम्पैनल्ड हैं। ये 38,000 हॉस्पिटल पूरे देश में स्प्रेड आउट हैं। जाहिर सी बात है कि शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल हैं, परंतु इस योजना के माध्यम से जिसको सरकार फंड कर रही है, हमने इवन रूरल एरिया में बहुत ज्यादा हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ाई है। मतलब लोग जो है अब इलाज करने आ रहे हैं, जो पहले इलाज नहीं कर पा रहे थे। और जब इलाज करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जिस क्षेत्र में डिमांड है वहां हॉस्पिटल स्थापित करें। तो इस योजना के माध्यम से रिमोट एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई खुलने की भी प्रक्रिया में है। शायद ही कुछ जिले बचे हों जहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक ना पहुंचा। सरकारी अस्पताल तो निश्चित रूप से सरकार की योजना के तहत ही खुल रही हैं, परंतु ये सुविधा इस योजना के आने के बाद से बढ़ी है। इवन सरकारी अस्पताल जो इसमें सूचीबद्ध है, वो ऐसे तो निःशुल्क इलाज सभी लोगों की करते हैं, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड धारी को आयुष्मान कार्ड मांग करके इलाज करना है, ताकि इलाज तो उन्हें निःशुल्क मिलेगा लेकिन सरकारी अस्पताल को बाद में इस योजना के तहत राशि मिल जाएगी, क्लेम अमाउंट मिलेगा, और इसका उपयोग करके सरकारी अस्पताल अपने आप को ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। जो आकांक्षी जिले

0: उसमें जो हॉस्पिटल स्थापित हैं वहां अगर कोई इलाज करता है तो जो क्लेम अमाउंट होता है उस पर हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं ताकि वो वहां पे न केवल सर्वाइव करे वो बेहतर कार्य कर सके।
1: इन अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी इलाज के लिए उसकी मॉनिटरिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किस तरह से करती है?
0: देखिए, हम लोग जब भी किसी हॉस्पिटल को सूचीबद्ध करते हैं, इम्पैनल करते हैं, तो उसके विभिन्न क्राइटेरियाज रखे हैं। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, ज्यादातर स्पेशलिटी में 20 बेड है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए वो इम्पैनल कर रहे हैं। मतलब अगर एक हॉस्पिटल में 4 स्पेशलिटी है तो उन्हें चारों के लिए इम्पैनल होना पड़ेगा। एक चूज नहीं कर सकते कि जिसमें ज्यादा फायदा है, जिस बीमारी के इलाज में, उसको चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो स्पेशलिटी है सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशलिटी जैसे ही डालेंगे उन्हें बताना पड़ेगा डॉक्टर्स कौन कौन है, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, ये जो डॉक्टर्स हैं ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। और ये चीज हम लोगों ने अब इवन हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पे उन डॉक्टरों का रजिस्टर होना मैंडेटरी किया है ताकि वहां से हम सारे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि जो डॉक्टर की ये नाम बता रहे हैं वो डॉक्टर सच में वेरीफाइड है, वो डॉक्टर और कहां कहां है। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पे भी उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जिन राज्यों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, फायर की जो क्लियरेंसेस हैं, बिल्डिंग लॉज की क्लियरेंसेस हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के क्लियरेंसेस हैं, ये सब मैंडेटरीली जो रिक्वायर्ड है वो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इस वर्ष अब नए हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसे भी मैंडेटरी किया है।
1: सर, इस योजना में रोज आपने बताया कि किस तरह से 70-80 हजार का आंकड़ा रहता है जहां पर इलाज चल रहा होता है, दावे आ रहे होते हैं आप लोगों के पास में क्लेम्स में, तो ऐसे में एक आशंका यह भी रहती है कि कहीं ये दावे फर्जी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अनावश्यक इलाज तो नहीं किया जा रहा है।
0: अच्छी बात है इस आयुष्मान भारत पीएमजे में कि हर इलाज को बंडल्ड पैकेज के रूप में बनाया गया है। मतलब अगर आपने कैटरेक्ट सर्जरी कराई है तो उसमें दवा का कॉस्ट अलग और कंज्यूमेबल्स का अलग, ऑपरेशन का अलग नहीं है, वो सब मिला करके एक बंडल्ड कॉस्ट है। नी ट्रांसप्लांट का बंडल्ड कॉस्ट है, डायलिसिस का बंडल्ड कॉस्ट है। तो अगर आपने ज्यादा इलाज कराया तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल सोचता है कि इसे ज्यादा इलाज करा दें, ज्यादा दिन रख लें, तो उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके कॉस्ट फिक्स्ड है। दूसरी बात यह है कि अब जब वो क्लेम सबमिट करते हैं तो ऐसे कई शिकायतें आई और कई ऐसे पाए भी गए जिसमें हॉस्पिटल्स ने क्लेम गलत सबमिट किए, एक्स्ट्रा सबमिट किए, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इसमें तीन कैटेगरी आता है, एक तो है जिसमें एरर्स मिल जाते हैं, दूसरा है जिसमें एब्यूज हुआ है, मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए था थोड़ा सा, उसको और 2-3 पैकेज बुक करके ट्रीटमेंट कर दिया, इलाज एक चीज के लिए गए थे साथ में 2 और इलाज कर दिए, एक्स्ट्रा बुक कर दिए, इस तरह के एब्यूज हैं। थर्ड है फ्रॉड है, जिसमें पेशेंट कोई और है, ऑथराइजेशन किसी का है, फोटो किसी और का लगाया है, डॉक्यूमेंट जो लगाया है कैटरेक्ट में लेंस या नी ट्रांसप्लांट में जो इम्प्लांट लगाया है वो पता चला कि वो लगा ही नहीं है, या लगा है तो एक ही इम्प्लांट 4 जगह लगाए हैं या एक ही लेंस 4 जगह लगाए हैं, वो पकड़ना जरूरी है।
1: जी, डुप्लीकेसी हो गई।
0: डुप्लीकेसी हो गई,
1: या कह लीजिए
0: तो हम लोगों ने एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट बनाया और जिस तरह से वो दिमाग लगा रहे किस तरह से चीट कर सकते हैं, हमारी टीम ने इस पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे ऐसे केसेस को सबसे पहले क्लेम प्रोसेसिंग शुरू होने के पहले इसे नाफू ट्रिगर से गुजरना पड़ता है और ऐसे हम लोगों ने 61 ट्रिगर्स लगाए हैं और इसमें वो सारे चीजें जिसमें फोटोग्राफ्स बदले गए हैं, डॉक्यूमेंट गलत लगाए गए हैं, इम्प्लांट के बार कोड मिसमैच हो रहे हैं या बार कोड कई जगह यूज हुए हैं, ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे केसेस को पकड़े हैं और अब तक 670 करोड़ के आसपास का क्लेम हम लोगों ने प्रिवेंट किया। वो क्लेम को हम पे नहीं करके उसे रिजेक्ट किए और ऐसे मामले को हम लगातार वॉच करते हैं। जो भी हमारा ट्रिगर जो है सस्पिशियस बताता है उनसे हम स्टेट्स को भेजते हैं कि उसे वेरीफाई किया जाए। उनके यहाँ भी स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं फिर से, या जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल इंस्पेक्ट भी करते हैं, और अगर वो फ्रॉड निकलता है तो उसे न केवल क्लेम रिजेक्ट होता है, फ्रॉड के केस में वो डी इम्पैनल हो सकते हैं, 5 टाइम्स तक

0: उस पे पेनाल्टी लग जाती है क्लेम के अमाउंट पे। तो इस तरह की कार्रवाइयां भी होती है, कुछ केसेस में इवन एफआईआर भी दर्ज होते हैं। तो ये चेक्स हैं, अब इसमें हमारे ट्रिगर्स और ज्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं बिकॉज हम अब मशीन लर्निंग और एआई का यूज कर रहे हैं, जिससे कि टूल भी ये समझने लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ रही है, इस तरह के क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं और हम जो डॉक्यूमेंट हैं उसको ओसीआर टेक्नोलॉजी से पढ़ पाते हैं और इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई चीजें और शुरू की है जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो बहुत छोटे अमाउंट के हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत है वैल्यू बहुत कम है। तो अब हम लोगों ने एआई को यूज करके ऑटो एडजुडिकेशन करना शुरू किया है कि सिस्टम ही उसको एडजुडिकेट कर देती है बेस्ड ऑन जो रिपोर्ट्स देते हैं। तो ऑटो एडजुडिकेशन के बाद से लगभग 30% ऑफ द क्लेम्स इन वॉल्यूम टर्म्स अब ये ऑटो एडजुडिकेशन से क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा सिस्टम बना है, आने वाले दिनों में और भी सारे पैकेजेस जो कि हाई वैल्यू भी हों उनको भी ऑटो एडजुडिकेशन के माध्यम से ले जाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए हम लोगों ने एक हैकाथॉन किया था जिससे हमें अच्छे सॉल्यूशंस मिले और तभी हम इस चीज को लागू कर पाए हैं। आने वाले वर्षों में जब हम 9th ईयर में जा रहे हैं इस योजना के, इसका उपयोग और बढ़ाएंगे।
1: सर, कोई ऐसा भी जिला या राज्य है जहां पे लग रहा है आपको कि इस योजना को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, उन जगहों पे किस तरह से काम कर रहे हैं क्या? और
0: हमारे लिए जो एक तो अब पूरा देश इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, जो अंतिम राज्य था वो पश्चिम बंगाल था जो कि 16 अगस्त को इस योजना पे आ गया है, तो अब तो पूरे देश में इसे लागू किया गया है। जो हमारी कठिनाई आती है वो किसी राज्य विशेष में ज्यादा नहीं है, बट कुछ क्षेत्र जरूर हैं जो काफी रिमोट हैं, वो ट्राइबल एरियाज में भी हो सकते हैं, हिली रीजन्स में आते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स में आते हैं, जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स तो जब बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी न किसी व्यवस्था से नेटवर्क सुनिश्चित कर लेती है, बट हमें आयुष्मान कार्ड बनाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्ड भी ऑनलाइन ही ऑथेंटिकेशन के बाद बनता है। तो हम लोगों ने ऐसे केसेस में ऑफलाइन भी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो चैलेंज ये आ रही है कि कुछ रिमोट क्षेत्रों में अभी भी सभी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते हैं, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी लीवर, कई दूरस्थ क्षेत्रों में ये स्पेशलिटी नहीं हो पाती है और इसलिए लोगों का डिपेंडेंस फिर दूसरे बाहर जाकर के इलाज कराने पे हो जाता है। तो ये चैलेंजेज हैं, बट इसको धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये बेहतर ही होता चला जाएगा। दूसरी एक ये स्थिति है कि हम डिजिटल मिशन जो रखे हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके माध्यम से पेशेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं सो दैट कि दे हैव ऑल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन देयर मोबाइल। अब ऐसा होने से इनका लाभ ये हो रहा है कि वो कहीं भी इलाज करते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मोबाइल से शेयर कर पाते हैं। इससे ये बेहतर डायग्नोसिस में फायदा होता है और ये पीएमजे के भी बेनिफिशियरीज को बहुत लाभ हो रहा है। तो हम इसके माध्यम से लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है और भारत सरकार ने जो लॉन्च किया है आरोग्य सेतु 2.0, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है जिसके माध्यम से सारे रिकॉर्ड अपने मोबाइल में रहता है और उससे हिस्ट्री भी बनती जाती है, इलाज भी बेहतर हो पाता है, डायग्नोसिस बेहतर हो पाता है। तो ऐसे थोड़े बहुत अभी चैलेंजेज हैं, परंतु हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी बहुत है, क्षेत्र भी अलग अलग तरह का है, चैलेंजेज अलग है, कल्चरली डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली डिफरेंट है, इसलिए इस योजना में हमेशा थोड़ी बहुत तो चैलेंज रहेगी, परंतु हम उसे इतने बड़े सिस्टम में नेशनल लेवल पे काफी हद तक सॉल्व करने में सफल रह रहे हैं।
1: असर, 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को भी योजना के दायरे में लाया गया है अब, तो ये क्या मुश्किल रहा, कुछ चैलेंजेस आए यहाँ भी?
0: एक तरह से चैलेंज से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी है। हम 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को, जबकि ऐसे उम्र में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योरेंस देना बंद कर देती है,
1: बिल्कुल
0: कई घरों में परिवार वाले भी इलाज कराना नहीं चाहते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी छोड़ देता है कि अब हमारा समय आ गया, बच्चों पे ध्यान दो, इस तरह की बात करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने ये योजना वय वंदना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाई है और ये अब 2 वर्ष पूरा होने को है। अक्टूबर 2024 में चालू किया गया था।

0: 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग को इसमें लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 1.36 करोड़ कार्ड लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने, 70 वर्ष से ज्यादा के लोगों ने इलाज का लाभ भी लिया है और 5000 करोड़ तक की राशि का उनका बचत भी हो चुका है जो सरकारें खर्च कर रही है। तो ये देख के लग रहा है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य की सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और हमें सबसे ज्यादा क्वेरी ऐसे ही लोगों से आती है जो कि 70 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी आय वर्ग से हो, उनको ये लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें चैलेंजेस थोड़ी आती है क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कई बार उनका फिंगरप्रिंट नहीं काम करता, तो हम लोगों ने फेस ऑथ की व्यवस्था की है। इस तरह से हमें छोटे मोटे व्यवस्थाएं और इम्प्रूव कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे वो पहुंचते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था, उन्हें ऐसा सुविधा हो जिससे वो अनकंफर्टेबल नहीं हो हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कई बुजुर्ग है, कई बार अकेले ही आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी है कि हम आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उनमें भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी NHA कोशिश कर रहा है करने का।
1: एक आखिरी सवाल सर, जल्दी से उसका जवाब आपसे चाहूंगा कि 8 सालों में क्या सीखने को मिला हमें और अगले 4-5 सालों की अगर बात करें तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
0: पिछले 8 वर्षों की जर्नी में ये पता चला कि हमें अगर इतने बड़े स्केल पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी है तो IT सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए जिससे कि हम हर तरह के डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल कर सकें। अब जो आने वाले समय में हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पिछले 8 सालों में जैसे हम लोगों ने 13 करोड़ पेशेंट का इलाज करा है, इनके ट्रीटमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों को एनोनिमाइज करके, इससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा करके, इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा वैल्यू है रिसर्च के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, पूरे देश की डिजीज मैपिंग के लिए, किस क्षेत्र में किस तरह की बीमारियां बढ़ी है या हैं, किस एज ग्रुप में किस तरह की बीमारी है, किस जेंडर में कौन सी बीमारी बढ़ रही है, ऐसी तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है। और हम जल्द ही एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि जो सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट कहलाता है, जिसमें हम इन आंकड़ों को बिना दिए, बिना इसका एक्सेस किए, हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, यहां तक कि जो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, टर्म्स कंडीशन ऑफ कोर्स अलग से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये डेटा पे अपने एल्गोरिदम रन करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और ये फर्दर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेवरेज करने में फायदा आएगा, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से नए नए टूल्स, चाहे वो स्क्रीनिंग का हो, डायग्नोसिस का हो, डेवलप करने में भी सुविधा होगी। तो आने वाले वर्षों में हम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही डेटा ड्रिवन IT एक्सपर्टीज हासिल करेगा और इसका उपयोग इस योजना के बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी में कर पाएगा।
1: जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में समग्र स्वास्थ्य की पहल, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बर्नवाल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम खुमानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं अपने जमाने की खूबसूरत तरीन अदाकारा पद्मनी रामचंद्रन की फिल्मों से, जिनमें उन्होंने अदाकारी की और उनको अमर कर दिया। पद्मनी रामचंद्रन 13 दिसंबर 1932 को त्रिवेंद्रम, जिसे अब तिरुवनंतपुरम कहते हैं, वहां पैदा हुई और तकरीबन उन्होंने 250 फिल्मों में काम किया, जिसमें तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और एक कंट्री के गैर मुल्की फिल्म रशियन भी शामिल थी।

अगर उनकी अमली जिंदगी के बारे में बात की जाए यानी उनके करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 16 साल की उम्र में एक डांसर के तौर पर एक हिंदी फिल्म थी कल्पना, उसमें एंट्री ली जो 1948 में मंदराम पर आई थी और तकरीबन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरह से कहा जाए तो कल्पना से जो कल्पना उन्होंने की थी यानी जो ख्वाब उन्होंने देखे थे उनकी ताबीरें मिलना शुरू हुई और उन्होंने अपने जमाने के मारूफ अदाकारों के साथ काम किया जिनमें शिवाजी गणेशन, एम जी रामाचंद्रन, एन टी रामा राव, शम्मी कपूर, प्रेम नजीर, राज कपूर, राजकुमार, जैमिनी गणेशन और एस एस राजेंद्र वगैरह। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में न सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से बल्कि उनकी अदाकारी की वजह से भी मशहूर हुई। उन्हीं की फिल्मों के कुछ मुंतखब नगमे हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में। पहला नगमा है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म का। नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीकार शंकर जयकिशन।

मुन्नी रामाचंद्रन की फिल्मों का अगर तस्करा किया जाए तो इनमें आशिक, मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है, अफसाना और वासना काबिले जिक्र हैं।

पुरी जी फिल्मों का जिक्र चल रहा है तो उनकी फिल्मों में राज तिलक, चंदा और बिजली और काजल फिल्म भी शामिल है। काजल फिल्म का इनरवन जिसने उस वक्त भी नाज़रीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की थी, आज भी ये नगमा हमारे लिए उतना ही खूबसूरत है।

0: बैठो।
1: मैम, मैम, क्या बात है?
0: कुछ नहीं।
1: नहीं, कुछ तो है।
0: रजनी कल मुझे चूहेदानी कह रही थी।
1: चूहेदानी?
0: हाँ, जिसमें चूहे फंसते हैं।
1: लेकिन मैं चूहा नहीं हूँ।
0: शेर ही सही, लेकिन जब अच्छा हो तुम यहाँ आना ही छोड़ दो।
1: लेकिन मैं यहाँ आज से तो नहीं आ रहा, जब जसवीर भाई थे तब भी आता था, उसके बाद भी आता ही रहा।
0: जानती हूँ, तुम ना आते तो हम माँ बेटे कहीं के ना रहते। तुमने ही फैक्ट्री से इतना काम मुझे दिलाया।
1: तुम सोचती हो इसमें मेरा अपना कोई मकसद?
0: रजनी कहती थी आजकल उसके पास चिट्ठियां आ रही हैं।
1: कैसी चिट्ठियां?
0: वो शादी करने वाली है। तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेते?
1: किससे?
0: मुझे क्या पता।
1: मैं तुम्हें एक बात कहने आया था।
0: कहो।
1: कंपनी तुमको और काम देने को तैयार है, तुम दो चार लोगों को और साथ लेकर ठेका क्यों नहीं ले लेती?
0: मैं?
1: हाँ, आजकल औरतें बड़े से बड़े काम कर रही हैं, बड़ी से बड़ी फर्मों की मालिक हैं।
0: नहीं बलवंत, मैं जो हूँ उसी में सुखी हूँ।
1: अपनी ताकत से ज्यादा काम हाथ में लेने से कुछ और ही सुख होता है।
0: मैं समझी नहीं।
1: सब चीजें आपस में जुड़ी हैं, ज्यादा काम ज्यादा आमद, ज्यादा आमदनी होगी तो अच्छा घर बार होगा, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, अच्छी सेहत।
0: क्या होगा?
1: एक अच्छी जिंदगी।
0: अच्छी जिंदगी के लिए क्या इतना ही चाहिए?
1: भाई इंसान और क्या चाहता है?
0: क्या चाहता है?
1: तुमने कभी सोचा है?
0: तुम ही सोचकर देख लो।
1: मैंने सोचा है।
0: क्या?
1: ओफो, मैं ये तुम्हें कभी ना समझा पाऊंगा।
0: तुम मेरी मदद करने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? एक दिन तुम्हारा ये बोझ भी उतार दूंगी।
1: तुम कैसी बातें करती हो?
0: तुम मुझ पे एहसान करते।
1: एहसान ना कहो, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। जब तुम छोटी थी तो
0: तुम मुझे दूर से देखा करते थे, तुम मुझे हथियाना चाहते थे, और जब मेरी शादी हो गई तो मेरा आदमी तुम्हारी नजरों में खटकने लगा था।
1: नहीं, मैं जसवीर भाई को भी चाहता था, और उससे भी ज्यादा।
0: इसे प्यार कहूँ या दुश्मनी?
1: अगर तुम इसे दुश्मनी समझती हो तो मैं तुम्हारे पास अब कभी ना आऊंगा। गलती मेरी थी, मैं तुम्हारी शादी जसवीर से होनी थी। मैं सोचता था मन को समझा लूंगा, पर मैं तुमसे जितना दूर भागना चाहता था उतना ही नजदीक आता चला गया।
0: बलवंत, मुझे मेरे नसीब पर छोड़ दो, जैसी हूं रह लूंगी। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। मुझे कितना प्यार करते थे वो, जिस साल माधव पैदा हुआ था छुट्टी लेकर आए थे, बहुत खुश थे, ये हमारे सपने पूरे करेगा। जाते हुए बोले, बादलों के साथ जा रहा हूं अनु, फूलों के साथ लौट आऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि
1: मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं। मुझे भी जिंदगी ने कई बार धोखा दिया है, मैंने भी कई रातें रो रो कर गुजारी हैं, लेकिन लेकिन मन को समझाना होता है। तो चला गया वो, लौट कर तो आने से रहा, उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ मैं कहता हूं। तुम कब तक मकड़ी की तरह अंधेरे कोने में अपने ही बनाए जाले में पड़ी रहोगी? अरे बाहर निकल कर देखो।
0: देखा तुमने ये क्या कह रहा है? भूल जाओ तुम्हें, किसी और का हाथ पकड़कर छोड़ दूं तुम्हें।
1: पागलपन छोड़ो, तस्वीर से बातें। अरे अरे तस्वीर क्या कहेगी?
0: कहती है, कहती है। तुम चुप रहो, मुझे कहने दो। तुम
1: क्या, कभी उसने तुम्हें इतना प्यार दिया?
0: मैंने
1: जो
0: मैंने दिया है उसे, इतना प्यार दिया है मैंने।
1: उन दोनों तुम्हारे झगड़े नहीं होते थे? वो तुम्हें पीटता नहीं था? और
0: पीटता था, अपना मत ठहरा, चुप ही तो कराता था मुझे। तुम मुझे और मत बोलो। ओ, मेरा सर।
1: चीज की एक हद होती है।
0: चुप रहो तुम, तो मुझसे इस तरह क्यों बोल रहे हो? कौन होते हो तुम मेरे? मुझे अकेली समझकर लड़ने आए हो? ओ मेरा सर।
1: नीचे गिर पड़ोगी, लो मेरे कंधे का सहारा लो, बैठो यहाँ, बैठ जाओ ना।

0: अनु, ओ अनु,
1: क्या घर में कोई नहीं
2: है? क्यों नहीं?
0: एक खबर लाई हूँ तेरे लिए।
2: कौन सी खबर?
0: ये देख अखबार।
2: मैंने कभी अखबार की शक्ल तक नहीं देखी, अब क्या देखूंगी?
0: लिखा है जापान का एक सिपाही 30 साल बाद अफ्रीका के जंगल से लौट आया।
2: 30 साल बाद? लेकिन ये कैसे हो सकता है?
0: क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है उसके सर पर ऐसी चोट आई हो कि वो सब कुछ भूल गया हो, या वो किसी औरत के चक्कर में पड़ गया हो, या उसने वहीं बसने की सोच ली हो।
2: जंगल में?
0: हो सकता है 13 आदमी जंगल में भाग गया हो लड़ाई से बचने के लिए, या सजा के डर से, या फिर उसने कोई कसूर किया हो।
2: मुंह संभाल कर बोल, किसकी बात कर रही है तू? मेरा आदमी कायर नहीं है, वो कभी भागने वाला आदमी नहीं रहा। जहां रहा डटा रहा, और वो कोई कसूर भी नहीं कर सकता। तेरा दिमाग तो हमेशा बुरी बातों की तरफ चलता है।
0: किताबों में ऐसे कितने ही किस्से पढ़ने को मिलते हैं,
2: तू नहीं जानती। वो कहा करते थे सिपाही की जिंदगी का एक अलग ही मकसद होता है, वो खुद को नहीं देखता, उस पीढ़ी को देखता है जो उसके बाद आएगी।
0: मैं कब मना करती हूँ? मैं तो ये कहने आई थी कि हो सकता है वो एक दिन लौट आए।
2: लेकिन लौट भी आए तो तुझे क्या मिलने वाला है?
0: मुझे? सुन, कोई अगर तुझे चाहे और मैं उसे, तो तू क्या करेगी?
2: तू किसकी बात कर रही है? हाँ, मेरा आदमी तुझे क्यों चाहने लगा?
0: तेरा आदमी नहीं, कोई और।
2: कोई और मुझे क्यों चाहेगा? और मैं उसे क्यों चाहने लगी?
0: मान ले, जिसे हिसाब के सवाल में होता है, मान लो।
2: क्या मान लो?
0: मान लो वो किसी और को चाहता हो और मैं उसे।
2: तो तुझे मना कौन करता है?
0: तो तेरा पति लौट आए तो वो तुझे चाहना खत्म कर देगा।
2: वो कौन?
0: वो अब रहने दे, फिर बताऊंगी। कांटे से कांटा निकलेगा। अब भगवान को मना कि तेरा पति उस जापानी सिपाही की तरह लौट आए।
2: देखा तुमने, ये क्या कह रही है? हाँ, तुम क्या पता लौट ही आओ।
0: फिर तस्वीर से बातें। मैं तो चली।
2: क्यों जी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। क्या तुम सचमुच आओगे? मैं कितनी खुश होंगी उस दिन, कितना शुभ दिन होगा वो। लेकिन मैं बहुत रूठूंगी तुमसे, गुस्सा करूंगी। कौन जाने एक लफ्ज भी मेरे मुंह से ना निकले और मैं रो पड़ू, और तुम मुझे बाहों में भर लोगे, मुझे मनाने लगोगे। नहीं, खूब बोलूंगी मैं, एक के बाद एक सवाल करूंगी।
0: कहां रहे इतने बरसों तक?
2: क्या करते रहे? चिट्ठी क्यों नहीं दी राजी खुशी की? मेरा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। और ये अपनी हालत क्या बना रखी? तुम प्यार से मेरा मुंह बंद कर दोगे और मैं शर्मा जाऊंगी। तू भी, मैं तुझे नहीं बोलती। बात अब देखेगा तो क्या कहेगा? तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई अभी तक।
3: माँ?
2: क्या है बेटा?
3: हमारे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है।
2: कौन है?
3: कहता है बहुत दूर से आया है।
2: दूर से? दूर ना नजदीक, हमारा कौन है?
3: क्या कहूँ उसे?
2: कुछ नहीं।
3: तो मैं खेलने जाऊँ माँ?
2: हाँ जा, जल्दी आना।
3: अच्छा।
4: पानी, एक गिलास पानी।
2: कौन हो तुम?
4: पहचाना नहीं, मैं जसबीर हूँ।
2: जसबीर?
4: तुम्हारा पति।
2: क्या कहा?

0: मेरे पति।
1: अनु मैं वही हूँ।
0: वही?
1: हाँ।
0: तो इतने दिनों तुम कहाँ रहे?
1: एक लंबी कहानी है, बताऊंगा।
0: देखो मेरे साथ कोई धोखा तो।
1: कैसा धोखा?
0: मेरी माँ बताती थी उसके मायके में एक लड़का शादी करके भाग गया। एक दिन एक फकीर आया और बोला मैं ही वो लड़का हूँ, और 2 महीने उसकी बहू के साथ रहकर चला गया।
1: तुम्हें उस पर यकीन नहीं?
0: यकीन है मुझे, लेकिन लेकिन पूछो यकीन क्यों नहीं मुझे। मैं सोचती थी मेरा आदमी मुझे इतने सालों तक कैसे भूल सकता है। वो मुझे इतना प्यार करता था कि वो धरती के किसी कोने पर होता मेरे लिए सब कुछ छोड़ के चला आता।
1: आ तो गया हूँ सब छोड़कर,
0: लेकिन पहले क्यों नहीं आए?
1: कैसे आता? घमासान जुलाई के दिन थे, हमारी टुकड़ी जहाज से अचानक छतरियों से ना जाने कहां के जंगल में उतरी। मेरी छतरी उड़ती उड़ती एक झोपड़ी के ऊपर लगी। उस घर का बूढ़ा आखिरी सांसें ले रहा था, उसकी एक जवान लड़की थी। बूढ़े ने मरते हुए मुझसे
0: कहा, कहानी ना सुनाओ, मैं सब जानती हूँ। और तुमने उससे ब्याह कर लिया होगा, बच्चे भी होंगे।
1: मैंने तुम्हें सब कुछ लिखा था, इतनी चिट्ठी लिखी, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो शायद तुम्हें मिली ही ना हो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफें झेली होंगी। मैं तुम्हारे पास आते डर रहा था, ना जाने तुम क्या कह बैठो, कहीं तुमने शादी ही कर ली हो।
0: मेरे बदले तुमने तो कर ली।
1: नहीं,
0: वो क्या होता है, एक बार जिस औरत का हाथ पकड़ लिया वो अपनी हो जाती है। तुम उसे छोड़कर कैसे आ गए?
1: वो परदेसी है, उसके पास उसके 2 बेटे हैं। अब हम साथ रहेंगे?
0: नहीं, साथ रहने के लिए त्याग और यकीन चाहिए। और तुम झूठे दगाबाज निकले।
1: अच्छा होता मैं मर गया होता।
0: भगवान मेरे मुंह से ऐसा ना कह पाए, तुम 100 बरसती हो। लेकिन आज से समझना मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ। अब तुम जाओ।
1: कहाँ?
0: अपने उसी घर में, अपने उसी बीवी के पास।
1: तुम भी मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ।
0: पति?
1: हाँ, तुम्हारा पति, तुम्हारे बेटे का बाप। मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता।
0: तुमने कुछ नहीं खोया, मैंने एक बेटा पाया है, लेकिन मैं उसे तुमसे नहीं मिलने दूंगी। लड़के उसे चिढ़ाते हैं, तुम्हें देखेगा तो न जाने क्या कहने लगे।
1: लेकिन
0: तुमसे मिलना पसंद भी करे या नहीं।
1: शायद ठीक है, यही जग की रीत है। अच्छा मैं चलता हूं, मेरी खोज मत करना। हाँ
2: अरे तुम रो रही हो, मैंने सुना वो आया था।
0: हाँ बलवंत।
2: चला गया, तुमने जाने दिया?
0: हाँ, इतने बरसों तक मैं उसके लिए रोती रही और उसने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। शादी भी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, और जब मौका देखा तो मेरे पास चला आया।
2: मैं ना सोचता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी।
0: इसे तुम बदलना कहते हो? ये मरना है मेरे लिए, मैं अब उसे इस घर में नहीं आने दूंगी।
2: पर उस बेचारे का क्या होगा इस ढलती उम्र में?
0: और मेरा क्या होगा?
2: लेकिन तुम इस सच्चाई को कैसे झुठला सकती हो कि तुम उसकी?
0: वो मेरे कई सच झुठला सकता है, मैं एक भी नहीं झुठला सकती।
2: कहो तो मैं उसे लौटा लूं।
0: नहीं, चाहो तो मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ।
2: क्या?
0: मानो तो मैं तुमसे।
2: ये तुम क्या कह रही हो?
0: एक दिन तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए मर भी सकते हो?
2: ये तो मैं आज भी कह सकता हूँ, लेकिन
0: लेकिन अब ना कहो बलवंत। चाहते हुए उसने कहा था बादलों के साथ जा रहा हूँ, फूलों के साथ लौटूंगा। देखो देखो कैसी बसंती बहार चल रही है। कुछ भी दबाकर छिपाकर उठाकर रखने की जरूरत नहीं है। हाँ बलवंत।

0: कुछ जरा बोर कर दे।
1: माँ माँ
0: आ आ रहा है तू?
1: वो आदमी कौन था माँ?
0: कोई नहीं, चला गया।
1: चला कहाँ गया? उधर डॉक्टर की दुकान के बाहर बैठा था।
2: अच्छा तो मैं जाकर देखता हूँ।
0: बलवंत
3: अनु अनु
0: अरे रजनी तू, तुझे बताने आई हूँ मैं शादी कर रही हूँ।
3: किससे?
0: बलवंत से।
3: बलवंत से?
0: क्यों
3: तू इस तरह क्यों चौंक गई?
0: लेकिन बलवंत को तो मैं
3: तू
0: तुझे ये क्या सूझा?
3: क्यों
0: मैं क्या
3: तू? मेरा शक ठीक निकला, तू बड़ी चालाक निकली। कहना कुछ और करना कुछ, ये भी कोई बात हुई? तूने मुझे धोखा दिया।
4: दे दाता अंधे मोहताज को दो रोटी, जो गरीब को देगा उसे भगवान देगा।
5: ये ले, ये 50 पैसे है।
4: हा? भगवान तेरा भला करे।
5: अरे चला कहाँ, रात हो गई, कहाँ जाएगा?
4: अपनी कोई हवेली थोड़ी ना है, यही कहीं किसी दुकान के बरामदे में लेट रहूंगा।
5: मुझे भी लेटने देगा?
4: क्यों नहीं, दोनों सो रहेंगी। हाँ ठीक है, लो जगह आ गई है। सो रहो। क्यों सो गए?
5: नींद कहाँ, किसी करवट चैन नहीं, और तुम सो गई अन्नू?
3: नहीं, सब सो गए हैं, मेरी आंखों में नींद नहीं। कितने चेहरे मेरी आंखों में घूम रहे हैं।
5: और तुम रजनी?
3: नहीं नहीं, खाली खड़ा कितना बचता है, भलाई गंगा उसमें समाए न समाए।
5: और तुम सोए के नहीं बलवंत?
2: मैं तुम सबके बीच कहाँ हूँ? कहाँ जगह है मेरी? क्या मुझे नींद आएगी?
5: और तुमको माधव?
3: माधव को सोने दो, उसके चेहरे पे कैसी मुस्कान है, वो कोई सपना देख रहा है। पर उसका सपना वो नहीं है जो उसकी माँ देखती है, टूटते गिरते जहाज का। उसका सपना है उगते हुए सूरज जैसे लाल पीले फूलों का, जो एक दिन नई बहार, नई सुबह, नई महक लाएगा।
6: सामने में आप सुन रहे थे डॉक्टर गोविंद चाटक का तहरीर करता ड्रामा सपना खिलते फूलों का। पेशकश फिल्म वोरा की थी, माविन थी सरफराज अहमद। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, दिन के 12 बजे हैं, खबरें नशर होंगी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा दो तरफा और कसीर जहती मीटिंगें की। भारत में ओमान के साहिल के नजदीक तिजारती बहरी जहाज एमवी कैप दाऊ पर हुए हमले की मजम्मत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशू के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 60वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को

के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जय शंकर ने अकवामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा। न्यूयॉर्क में दो तरफा और कसीर जहती नौयत की कई मीटिंगें की। इन मीटिंगों में तिजारत, सरमायाकारी, आबो हवा में तब्दीली, टेक्नोलॉजी और जोग्राफियाई और सियासी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। डॉ जयशंकर ने नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब टॉम बेरिंसन के साथ मीटिंग के दौरान यूक्रेन तनाजे पर तबादले ख्याल किया और इस साल के आगाज में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान तय पाने वाले वादों के बारे में बातचीत की। उन्होंने फिनलैंड की वजीर खारजा एलिना वाल्टोनेन से भी मुलाकात की और जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी चैलेंजों नीज यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा तआवुन के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने स्लोवेनिया के वजीर खारजा टोमास कासिर के साथ मुजवजा भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तजारती मुआहदे से मुंसलिक तजारत और सरमायाकारी के मौके के अलावा तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, दिफा और कसीर जहती तआवुन पर भी बातचीत की। भारत कैरीकॉम वज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर जनाब जयशंकर ने तारीखी और तरक्कियाती ताल्लुकात पर जोर दिया और कैरिबियाई खित्ते में हिफ्ज़ान सेहत, फौरी नतीजे वाले प्रोजेक्ट, तरबियत और काबिल तजदीद तवानाई के सिलसिले में भारत के तआवुन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने भारत बहरुल काहिल जजायर फोरम FIPIC की वज़राए खारजा मीटिंग की सदारत भी की। उन्होंने बहरुल काहिल जजायर फोरम की ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के लिए 2025-2050 की हिकमत अमली के लिए तआवुन को उजागर किया और इज़ान सेहत, काबिल तजदीद तवानाई, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और सलाहियत साजी पर मुश्तमिल वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के एक्शन प्लान के तहत पेशरफ्त का जिक्र किया। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने सेंट लूसिया के अपने हम मनसब अल्वा बैप्टिस्ट के हमराह अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालिक L69 मुशावरती वजारती मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में रोनुमा होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों का सबसे ज्यादा असर आलमी खित्ते जनूब के ममालिक पर पड़ रहा है और अक़वामे मुत्तहिदा तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जारी तनाज़ात और बैन अल-अक़वामी अमनो सलामती को दरपेश खतरा से निमटने में नाकाम रही है जिससे इसकी इसलाह की फौरी जरूरत उजागर होती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि खिदमत जिंदगी का बुनियादी मकसद होना चाहिए और यह हर फर्द में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत को ही रहनुमा उसूल रहना चाहिए, चाहे कोई आला तरीन ओहदे पर पहुंच जाए। जहां मोदी ने वडनगर से वाराणसी जाने वाले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि सेवा परमोधर्म यानी खिदमत ही सबसे बड़ा फर्ज है, को रहनुमा उसूल रहना चाहिए। बातचीत के दौरान सेवा यात्रियों ने अपने तजुर्बात वजीर आजम के साथ शेयर किए। उन्होंने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई मुहिम चलाई। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के फवायद पर उनकी मुस्बत राय हासिल की। भारत ने कल ओमान के मशरकी साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज MV कैप दाओ पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 20 भारतीय मल्लाहों में से 19 को बचा लिया गया जबकि एक भारतीय शहरी की अलमनाक मौत हो गई। वजारत ने मरने वाले के कुनबे से ताजियत का इजहार किया है। उसने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीय मल्लाहों की जल्द वतन वापसी के लिए ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कर रहा है। वजारत खारजा ने कहा है कि खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों के वाकयात का जारी रहना बहुत तशवीश की बात है। भारत ने कशीदगी दूर करने और खित्ते में अमन की जल्द बहाली की खातिर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अपनी अपील दोहराई है। चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल वाशिंगटन पहुंचे जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उनका तैयारी के करीब शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया पेंग लियाओन के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। इस दौरे में व्हाइट हाउस में इस्तकबालिया तकरीब आज एक बाजाब्ता सरकारी इशाइये

0: कल प्राइवेट और नेशनल आर्काइव का दौरा शामिल है। यह दौरा तिजारत और मसनूई जहानत के ताल्लुक से अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी के दरमियान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर की तारीफ करते हुए उन्हें एक अजीम रहनुमा करार दिया और उनके ताल्लुकात को खुशगवार बताया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मायामी में मुनाकिद होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोव से मुलाकात के कुछ देर बाद इस बारे में बताया। जनाब रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह न सिर्फ उनके साथ बल्कि दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात का मौका है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सदर व्लादिमीर पुतिन इस कॉन्फ्रेंस की शिरकत की दावत कबूल करेंगे। अमरीका की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है कि जब 5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशें फिर से शुरू की गई हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन की जांग शियायू से 2-0 से हार गईं। रोशिबीना ने 2023 के हांगजाऊ एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है जबकि आजमूदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वेटुगोव को हराया जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डैनियल होवार्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। खवातीन के जुमरे में बी सविता श्री लगातार 7वीं जीत के साथ अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 7वें राउंड में भारत ने जर्मनी को 0.5 के मुकाबले 3.5 पॉइंट से हरा दिया। सविता श्री ओलंपियाड में ऐसी वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 7ों गेम्स जीते हैं। सर्वी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियन गेम्स 2026 में कांसे का तमगा जीतने पर भारतीय मर्दों की बैडमिंटन टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सर्वे जमहूरिया ने कहा कि यह काबिल तारीफ कामयाबी टीम के अजम लचक और लड़ने के जज्बे की अक्कासी करती है। मोहतरमा मुर्मू ने मजीद कहा कि हर रुकन ने इस फखरिया कामयाबी में कीमती तावन दिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा दोतरफा और कसीर जहती मीटिंगें की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तिजारती बहरी जहाज एमवी कैप दाऊ पर हुए हमले की मजम्मत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम में भी 1073 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर पेश खदमत है फिल्मी दीवानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश जिंदगी तेरे नाम फिल्म का नगमा आवाज़ें शान और सुनिधि चौहान की। नगमा निगाह जनीश शेरवानी मौसिकार साजिद वाजिद।

आप सुन रहे थे कुमार सानू राशा भोसले की आवाजों में रानी मलिक का लिखा गीत, फिल्म थी चांद तेरे नाम। और अब सुनिए तेरे नाम फिल्म का नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: बाएं हाथ की एक उंगली ही हिला पाते हैं। इतने मोहलिक मर्ज में मुबतला होने के बावजूद हॉकिंग की मेहनत और काम करने का तरीका सबक आमोज है।
1: सभी ने आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजूद था स्टीफन हॉकिंस, अजीम साइंसदान। पेश कर रहे थे एसएन नोमान। और इन्हें रेडियो को दो सर्विस से पेश है कुछ और फिल्मी दो गाने।

राजकुमारी और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे केदार शर्मा के लिखे इस गीत को, जिसे हमने लिया था फिल्म बावरी नैन से। मौसीकार थे रोशन और सुनी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू, मौसीकार एस डी वर्मन।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाय नगमी के साथ ही आज का फिल्मी दो गानों का यह प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात, जिनका वजह चाहता है वह आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा दो तरफा और कसीर जहती मीटिंगें की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तजारती बहरी जहाज एनवी केप टाउ पर हुए हमले की मजम्मत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबेना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्तीरानी में मर्दों के डबल्स स्कर्ट्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा हासिल हुआ है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खिदमत जिंदगी का बुनियादी मकसद होना चाहिए और ये हर फर्द में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत को ही रहनुमा उसूल रहना चाहिए, चाहे कोई आला तरीन ओहदे पर पहुंच जाए। जनाब मोदी ने वडनगर से वाराणसी जाने वाले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेवा परमो धर्म यानी खिदमत ही सबसे बड़ा फर्ज है, को रहनुमा उसूल रहना चाहिए। बातचीत के दौरान सेवा यात्रियों ने अपने तजुर्बात वज़ीर आज़म के साथ शेयर किए। उन्होंने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई मुहिम चलाई। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के फवायद पर की मुस्बत राय हासिल की।

0: रहा है कि खत्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले के वाकयात का जारी रहना बहुत तश्वीश की बात है। भारत ने कशीदगी दूर करने और खत्ते में अमन की जल्द बहाली की खातिर मुजाकरात और सिफारतकारी की अपनी अपील दोहराई है। अमरीका ने कहा है कि वह रूस और यूक्रेन के दरमियान तवानाई और अजनास के लिए एक महदूद जंगबंदी के इम्कान तलाश करने के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फरीकैन ने इस तरह के समझौते के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक सरकारी तौर पर कोई तजवीज या मुआहिदा तय नहीं पाया है। जनाब रूबियो ने कहा कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूसी हुक्काम के किए गए अमरीका के हालिया राबतों में इस मुद्दे पर मॉस्को और कीव से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि महदूद जंगबंदी से जंग का खात्मा नहीं होगा, अलबत्त इससे जंग की शिद्दत में कमी आएगी और इससे वसीतर तबादला ख्याल का इम्कान भी पैदा होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल वाशिंगटन पहुंचे, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट बेस एडवर्टीज पर उनका तैयारी के करीब शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने सदर शी और उनकी अहलिया के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। इस दौरे में व्हाइट हाउस में इस्तकबालिया तकरीब आज एक बाजाबता सरकारी इशाइये और कल प्राइवेट टी और नेशनल आर्काइव्स का दौरा शामिल है। यह दौरा तजारत और मसनूई जहानत के ताल्लुक से अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी के दरमियान हो रहा है। जनाब ट्रंप ने चीनी सदर की तारीफ करते हुए उन्हें एक अजीम रहनुमा करार दिया और उनके ताल्लुकात को खुशगवार बताया। सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरपर्सन सेनेटर ने शानदार इस्तकबाल पर तनकीद की और ट्रंप पर जोर दिया कि वो चीन की फौजी तैयारियों और ईरान की हिमायत समेत दीगर तश्वीशनाक उमूर को उठाएं। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आला सतही राबते का दिफा करते हुए कहा कि अमरीका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें हैं और उनकी फौजें ताकतवर तरीन फौजों में शामिल हैं। उन्होंने सहाफियों को बताया कि उन्हें आला तरीन सतह पर बातचीत करनी होगी। जाहरी शान और शौकत के पीछे रहनुमाओं से दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल की तवक्को है, अगरचे अहम पेशरफ्त की तवक्कोआत कम हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन की जांग जियाओयू से 2-0 से हार गई। रोशिबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्तीरानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता है। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी कुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमूदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। निहाल सरीन को ल्यूक मैकशेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वितियोगोव को हराया, जबकि स्याह मोहरों से खेलते हुए कुकेश ने डेनियल हावर्ड फर्नांडीज को शिकस्त दी। खवातीन के जुमरे में बी सविता श्री लगातार 7वीं जीत के साथ अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 7वें राउंड में भारत ने जर्मनी को 0.5 पॉइंट के मुकाबले 3.5 पॉइंट से हरा दिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा दो तरफा और कसी जहती मीटिंगें की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तजारती बहरी जहाज एमवी केप डाउ पर हुए हमले की मजम्मत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्तीरानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा दो तरफा और कसीर जहती मीटिंगें की। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तजारती बहरी जहाज एमवी कैपडाउट पर हुए हमले की मजम्मत की है। चीन के सदर शी जिनपिंग अमरीका के 3 दिन के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशी वीना देवी ने वुशु के मुकाबले चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्तीरानी में मर्दों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। ये थी इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामीन दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं या हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। से कुछ ही देर बाद यानी 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम पेशादर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
0: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, दूर का राही की कहानी के केंद्र में है प्रशांत, जिसका किरदार किशोर कुमार जी ने निभाया। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने निजी जीवन की सीमाओं से निकलकर समाज और इंसानियत की तलाश में आगे बढ़ता है। वह एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है, उसका जीवन जैसे एक लगातार चलने वाली यात्रा है। वह लोगों से मिलता है, उनके जीवन को देखता है, उनकी परेशानियों को समझता है और इस पूरी यात्रा में खुद भी जिंदगी के कई सवालों के जवाब तलाशता है। फिल्म का मूल भाव सिर्फ घटनाओं में नहीं बल्कि इंसान के भीतर चलने वाली भावनाओं और संघर्ष में दिखाई देता है। साथियों, यही वजह है कि दूर का राही को केवल एक सामान्य मनोरंजन फिल्म के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन को दूर से देखता है और फिर भी उसके हर दर्द को अपने बहुत करीब महसूस करता है।

श्रोताओं, किशोर कुमार के बारे में हम अक्सर कहते हैं महान गायक, लेकिन किशोर कुमार की प्रतिभा सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं थी। साथियों, वे अभिनेता भी थे, निर्माता भी, निर्देशक भी और संगीतकार भी, और अपनी फिल्मों को लेकर उनका अंदाज भी बेहद अलग था। दूर का राही इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने प्रशांत की मुख्य भूमिका निभाई और इसके साथ साथ निर्देशन, निर्माण और संगीत की जिम्मेदारी भी खुद संभाली। यानी कैमरे के सामने भी किशोर कुमार और कैमरे के पीछे भी साथियों किशोर कुमार। यह बात इस फिल्म को और भी खास बना देती है। साथियों, दूर का राही का संगीत भी किशोर कुमार की अपनी रचनात्मक दुनिया को दिखाता है। फिल्म के साउंडट्रैक में 8 गीत दर्ज हैं और इनमें किशोर कुमार के साथ हेमंत कुमार, मन्ना डे, अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजें सुनाई देती हैं।

दोस्तों फिल्म के कलाकारों की बात करें तो किशोर कुमार के साथ ही तनुजा और अशोक कुमार इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। तनुजा ने मोनिका का किरदार निभाया जबकि अशोक कुमार ने जोसेफ की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अभि भट्टाचार्य, इफ्तिखार, असित सेन, पद्मा खन्ना, कैस्ट्रो मुखर्जी और कई अन्य कलाकार भी दिखाई देते हैं। साथ ही अशोक कुमार और किशोर कुमार का रिश्ता भी हिंदी सिनेमा में बेहद खास रहा। दोनों भाई थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई थी। एक तरफ अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के महान अभिनेताओं में गिना जाता है तो दूसरी तरफ किशोर कुमार ने अभिनय, गायकी और संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग दुनिया बनाई। दूर का राही में दोनों का साथ होना अपने आप में ही फिल्म प्रेमियों के लिए एक खास बात है।

साथियों, आज जब हम रंगीन फिल्मों और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के दौर में हैं, तब 1971 की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। साथियों, दूर का राही को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के रूप में दर्ज किया गया है। उस दौर में कहानी, अभिनय, संवाद और संगीत ही फिल्म की असली ताकत हुआ करते थे। और शायद दोस्तों, इसलिए दूर का राही जैसी फिल्मों को आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के जो प्रेमी हैं वो याद करते हैं।

साथियों, इस फिल्म के गीत आज भी हमें यही याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक सफर है। कभी आसान है, कभी मुश्किल, कभी अकेला, लेकिन सफर हमेशा जारी रहता है।

दोस्तों, समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, तो इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के नाम मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और सुभाव च होनी चाहिए। भारत समेत दी चार विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के जल्द सुधार की लोड़ पर जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लिए एक मजबूत नींह है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वालों रणनीतिक तौर पर उत्तरी कमांड खेतर का दौरा से मौजूदा सुरक्षा स्थिति और फौजी तैयारियों का लिया गया जायजा। भारत की मर्दों की टीम अपने आखिरी ग्रुप ए मैच में चीन 37-21 हरा के एशियाई खेडा विच कबड्डी मुकाबले के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य होनी चाहिए और यह हर व्यक्ति के सुभाव च होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति विच भी सेवा मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहनी चाहिए भावे कोई उच्चे अहदे ते पहुंच जावे। श्री मोदी ने यह गल वाराणसी तो वाराणसी तक यात्रा ते जा रहे सेवा यात्रियों नाल एक वर्चुअल गलबात दौरान कही। प्रधानमंत्री ने सेवा परमो धर्म भाव सेवा सब तो वड्डा फर्ज है, मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि भावे पीएम किसान होवे जां पीएम

0: जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: गुफ्तगु के दौरान सेवायात्रियों ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के साथ अपने तजर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अख्वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जजायर इश्तराक FIPIC से मुतालिक फोरम के वजराए खारजा की मीटिंग की सदारत की। मजकूरा मीटिंग से FIPIC शराकतदारी और इलाकाई नीज कसी रुखी फोरमों में इश्तराक व तावुन को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अहद का इयादा किया गया। यह FIPIC फ्रेमवर्क के तहत मुनाकिद होने वाली वज़राए खारिजा की दूसरी मीटिंग थी। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिर की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक यह वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नजदीक आधी रात के आसपास पेश आया। पुलिस ने कहा है कि हलाक होने वाले 9 मुसाफिरों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात होने पर रंजोगम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान भी किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रूपये दिए जायेंगे। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इतवार के रोज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीमी निजाम में अहम तब्दीलियां लाना है। यह हुनरमंदी, तहकीक और अख्तरा को भी फरोग देती है। ओडिशा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के सिलसिले में इकदाम कर रहा है। आला तालीम को बेहतर बनाने और तलबा को नए हुनर सीखने की खातिर ज्यादा मौके फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ओडिशा में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नई पॉलिसी से हम आहंग हैं। ये तालीम में भारतीय जबानों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी अहमियत देती है। हुकूमत तालीमी इदारों और सनअतों के दरमियान राबते को बेहतर बनाने और तहकीक को मुस्तहकम करने के लिए भी काम कर रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीम को ज्यादा लचकदार, सबकी शमूलियत पर मबनी और तलबा के लिए साजगार बनाना है। दीपक कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की मजमुई अंदरून मुल्क मांग के तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज नई दिल्ली में भारत के 13वें पब्लिक अफेयर्स फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब कृष्णन ने कहा कि भारत सालाना तकरीबन 32 करोड़ से लेकर 33 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल फोन ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं और वो मुल्क में अपने मोबाइल फोन तैयार कर रही हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, अंदरूनी मुल्क वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, सप्लाई चेन निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और भारत की आलमी मुसाबिकत को वसत देने की खातिर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। भारत ने न्यूयॉर्क में अख्वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया है, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकतदारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की सेक्रेटरी

0: सलिला श्रीवास्तव ने सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने से मुतालिक कौमी मिशन के जरिए इस बीमारी के सिलसिले में भारत के जामे इकदाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2023 में इस मिशन का आगाज हुआ था। G4 के मुल्कों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर वज़ीर खारिजा डॉ एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वजारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती काउंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सहेली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आज बिहार, झारखंड, विदर्भ और सिक्किम में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मर्दों की कबड्डी में दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा, जिसकी वजह से हाफ टाइम में उसे 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय टीम ने 14-10 से जीत लिया। इस दौरान खातिन की भारतीय टीम ने भी इफ्तिताही मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ईरान को 37-23 से हराकर जीत की अपनी मुहिम बरकरार रखी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सहेली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे।

0: There's more time to work towards a potentially broader economic agreement. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the arrangement known as the Busan Agreement will now be extended until January the 10th. The original truce was due to expire on November the 10th, following a deal reached by U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping in South Korea last October. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The government has reduced the basic customs duty, BCD, on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India stormed into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी भी क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास

0: पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिन्दुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
0: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देशभर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।

0: शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। टोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के

अभिनय के सफर की शुरुआत हुई तो बीच सफर की शुरुआत के बीच अपनी खास पहचान बनाई। शुरुआत में ये फिल्मी दुनिया में एक हीरो बनना चाहते थे, लेकिन जब अभिनय के सफर की शुरुआत हुई तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक के रूप में पहचाने जाने लगेंगे। इनके जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी दिलचस्प स्टोरी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन है आज के कलाकार। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं उनके फिल्म अली बाबा और 40 चोर का ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, जादूगर जादू कर जाएगा। तो शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस खलनायक की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी समझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा, यानी प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा जी का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद प्रेम चोपड़ा की फैमिली शिमला शिफ्ट हो गई। प्रेम चोपड़ा के पिता रणवीर लाल चोपड़ा एक सरकारी कर्मचारी थे और माता रूपानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा का शिमला में ही बचपन गुजरा और स्कूलिंग भी यहीं से हुई। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में प्रेम चोपड़ा ड्रामा में हिस्सा लेते थे और यहीं से इन्हें अभिनय का शौक चढ़ गया था और ये शौक उन्हें ग्रेजुएशन के बाद मुंबई खींच लाया। लेकिन हीरो बनने का सपना उतना आसान नहीं था। स्ट्रगलिंग के दौरान उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान प्रेम चोपड़ा को एक पंजाबी फिल्म चौधरी कर्नेल सिंह में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म हिट साबित हुई। इनकी फिल्म ने पंजाबी लैंग्वेज में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने बहुत सी हिंदी फिल्मों में पॉजिटिव भूमिकाएं की लेकिन वो फिल्में हिट नहीं हुई। फिर नेगेटिव रोल ऑफर हुए और प्रेम चोपड़ा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्दे में इनके नेगेटिव कैरेक्टर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। आगे हम आपको इनकी फिल्मी करियर के से जुड़ी और भी बातें बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म बॉबी का ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं उनका नाम है प्रेम चोपड़ा, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म हम हिंदुस्तानी वो कौन थी, शहीद, सिकंदर आजम, तीसरी मंजिल, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि फिल्म शहीद में इन्होंने क्रांतिकारी सुखदेव का रोल किया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने उपकार, दो रास्ते, अनजाना, कटी पतंग, पूरब और पश्चिम, गोरा और काला, बॉबी, त्रिशूल, काला पत्थर, दोस्ताना, क्रांति जैसी बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। ऐसा कोई भी दशक नहीं था जहां प्रेम चोपड़ा को काम न मिला हो। 1960 से लेकर 1923 तक ये करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में काम किया। इनके इंटरव्यू से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल प्रेम चोपड़ा ने फिल्मों में इतने खलनायक का रोल किए हैं कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें देखकर अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। आप सोचिए, प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक हुआ करती थी कि मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी अक्सर हिट साबित हुई। ये इस उम्र में भी प्रेम चोपड़ा ने पिछले साल फिल्म एनिमल में काम किया था। 88 बरस के हो चुके प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग आज भी जारी है। आगे आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म त्रिशूल का ये सुंदर सा सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं प्रेम चोपड़ा। दोस्तों चलिए अब आपको प्रेम चोपड़ा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी हिंदी सिनेमा के दिग्गज राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से हुई थी। इनकी शादी जाने माने लेखक और फिल्म डायरेक्टर लेख टंडन ने करवाई थी। इनकी तीन बेटियां हैं रकिता, पुनीता और प्रेरणा। तीनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हुई है। उनके दामादों में बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी और विकास भल्ला जैसे नाम शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको इनकी उपलब्धियों और अवार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए इनकी फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा जी की और कार्यक्रम भी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो बात करते हैं प्रेम चोपड़ा जी की, जिन्होंने 1976 में फिल्म दो अनजाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें एटलांटिक सिटी में लीजेंड्स ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 2023 में प्रेम चोपड़ा को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इनकी बेटी रकिता नंदा ने अपने पिता की लाइफ प्रेम नाम है मेरा पर एक बुक लिखी थी। कुल मिलाकर प्रेम चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शोहरत के साथ मान सम्मान भी कमाया है। तो इसी बात पे चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं के मेल भी हमारे पास आ चुके हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्किन जी का हमारे पास मेल आया है। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा का जी का आया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। और आगे चलते हैं, ये हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से। और ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए फारूक अली खान और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। छत्तीसगढ़ भंवरपुर से राधेश्याम देवगन और चंपा, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका, ये जुड़े हुए हमारे साथ। श्रीगंगानगर राजस्थान से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, कबीर, रेडियो श्रोता संघ बलौद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथ। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार हैं हमारे साथ। और ये हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। और ये हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह, ऋषभ, अनुभव, राम, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी, ये कालरी से हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए। और ये है मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर। और मंसूर हसन है हमारे साथ, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये हैं कुम्हार हेंडा सहारनपुर से। और आगे बढ़ते हैं, वडिंगा खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे। प्रेम चोपड़ा का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा स्थान रखता है। अपने खलनायक, अपने खतरनाक अभिनय, यादगार डायलॉग और विचित्र अंदाज से इन्होंने दर्शकों के दिलों में खलनायक की छवि को स्थापित किया है, जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महान कलाकार की कहानी और उसके जीवन के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम फिर से वापिस आएंगे दोपहर के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज के साथ। लेकिन तब तक सुनिए एनिमल फिल्म का ये गीत।

सामीन अदबर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे। सपहर 3:30 अंदाजे नजर प्रोग्राम में मुबाहिसे का मौजू है मुकाबला जाति इम्तिहान और वालिदैन की जिम्मेदारी।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दोपहर के 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मा रहनुमा उसूल होना चाहिए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए और हर फर्द में ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत ही रहनुमा वसूल होना चाहिए, खा कोई भी फर्द कितने ही आला ओहदे पर पहुंच जाए। जनाब मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा करने वाले अफराद के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेवा परमो धर्मा खिदमत आला तरीन फर्ज है और यह हमेशा रहनुमा उसूल रहना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान सेवा यात्रियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर इश्तराक FIPIC से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की सदारत की। मज़कूरा मीटिंग से FIPIC शराकत दारी और इलाकाई नीज़ कसीर रुखी फोरमों में इश्तराक व तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अहद का इआदा किया गया। ये FIPIC फ्रेमवर्क के तहत मुनक़िद होने वाली वज़राए ख़ारजा की दूसरी मीटिंग थी। G4 मुल्कों के भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए ख़ारजा ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वज़ारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती कौंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल रहनी चाहिए। भारत ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकत दारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने से मुतालिक कौमी मिशन के जरिए इस बीमारी के सिलसिले में भारत के जामे इकदामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2023 में इस मिशन का आगाज हुआ था, जिसके तहत 2047 तक अवामी सेहत से मुतालिक इस मसले को खत्म करने का हदफ रखा गया है। मोहतरम श्रीवास्तव ने कहा कि आबादी के लिहाज से स्क्रीनिंग, जल्द तशखीस, इलाज, काउंसलिंग अवामी सेहत निजाम में शामिल हैं। स्वच्छता और अच्छी हुक्मरानी के दो मकासद पर तवज्जो मरकूज करते हुए समाजी इंसाफ और तफवीज़े इख्तियारात की वजारत के तहत माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक महकमा खसूसी मुहिम के छठे मरहले की तैयारी कर रहा है। इस मुहिम का मकसद साफ सुथरे काम के मकामात को फरोग देना, जेर इल्तवा मामलात के जल्द निपटारे اور حکمرانی کو بہتر بنانا ہے. یہ مہم 2 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک جاری رہے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری اس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرس فورم کے افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کے 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور

0: में अपने मोबाइल फोन तैयार कर रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, अंदरूनी मुल्क वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, सप्लाई चेन निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और भारत की आलमी मुसाबकत को वसअत देने की खातिर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूने मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलातु नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। भारत ने कल ओमान के मशरकी साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी कैपोडाव पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 20 भारतीय मल्लाहों में से 19 को बचा लिया गया जबकि एक भारतीय शहरी की अलमनाक मौत हो गई। वजारत ने मरने वालों के कुनबे से ताजियत का इजहार किया है। उसने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरतहाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीय मल्लाहों की जल्द वतन वापसी के लिए ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कर रहा है। वजारत खारजा ने कहा कि खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों के वाकयात का जारी रहना बहुत तशवीश की बात है। भारत में कशीदगी दूर करने और खित्ते में अमन की जल्द बहाली की खातिर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अपनी अपील दोहराई है। अमेरिका ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान तवानाई और अजनास के लिए एक महदूद जंगबंदी के इम्कान तलाश करने के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फरीकैन ने इस तरह के समझौते के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक सरकारी तौर पर कोई तजवीज या मुआहदा तय नहीं पाया है। जनाब रूबियो ने कहा कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और रूसी हुकाम से किए गए अमरीका के हालिया राब्तों में से इस मुद्दे पर मॉस्को और कीव से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि महदूद जंगबंदी से जंग का खात्मा मुमकिन नहीं होगा लेकिन इससे जंग की शिद्दत में कमी आएगी और इससे वसी तबादले ख्याल का इम्कान भी पैदा होगा। अमरीका ने रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन को दिसंबर में म्यामी मुनक़िद होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया है। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अलहदा रूस के वजीर खारजा सरगई लावरूफ से मुलाकात के कुछ देर बाद इस बारे में बताया। मर्दों की कबड्डी में दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ 21-37 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा जिसकी वजह से हाफ टाइम तक उसे 11-23 की बढ़तरी हासिल हो गई थी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा पर मोधर्मा रहनुमा उसूल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर ए जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 21वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेटेज पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सभी की नजर।

जैज फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और अगली पेशकश है लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ दो गाना। फिल्म है छैला बाबू, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दिल एक मंदिर फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार हंसे जयपुरी और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अंदाजे नजर इस प्रोग्राम के तहत एक मुजाकरा सुनिए। मौजू है मुकाबला जाति इम्तिहान और वालिदैन की जिम्मेदारियां।
1: सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। अंदाजे नजर प्रोग्राम लेकर एक मरतबा हम फिर हाजिर हैं। सामईन, जैसे कि आपको इल्म है कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे मौजूआत पर बात करते हैं जिन पर हमारे सामईन सुनना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आज हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिसका ताल्लुक न सिर्फ हमारे नौजवान दोस्तों से है या उन लोगों से जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी मुकाबला जाति इम्तिहान में तैयारियां करते हैं, बल्कि इस मौजू का ताल्लुक बराह रास्त उनके वालदेन से है। आमतौर पर होता यह है कि जब हम या हमारे बच्चे कभी मुकाबला जाति इम्तिहान की तैयारी करते हैं और नाकाम हो जाते हैं तो हम सारा जो ठीकरा फोड़ना कहते हैं वो टीचर या इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर के थ्रू फोड़ देते हैं कि था उनकी कहीं कमी रही थी तवज्जो में, जो बच्चा हमारा जो है कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि वालदेन की क्या जिम्मेदारी होती है जबकि बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, उस दौरान वालदेन को क्या क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इन तमाम मौजूदात पर गुफ्तगू की आज मेरे साथ है मारूफ माहिर तालीम जनाब शबी अहमद साहब और जनाब शमीमुद्दीन साहब। स्टूडियो में इस्तकबाल है आप लोगों का। शबी साहब, पहले मैं सोचता हूँ कि आपसे ही सवाल किया जाए, आपको क्या लगता है कि जब मुकाबला जाति इम्तहान होते हैं तो उसमें टीचर का कितना हिस्सा है, सोसाइटी का कितना हिस्सा है और वालिदैन का कितना हिस्सा है, और उस कैंडिडेट का, उस बच्चे का, इस नौजवान का खुद कितना हिस्सा है?
2: बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से कहानी वालिदैन से शुरू होती है। मुश्किल ये आ गई है कि जाहिर बात है कि जब हर वालिदैन, हर बाप, हर माँ अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं और उसके बाद आला से आला मुकाम पर देखना चाहते हैं। मार्क्स ने किसी जमाने में कहा था कि सब बच्चे एक से पैदा होते हैं, उनके माहौल जो है, परिस्थितियां उनको
1: अलग कर
2: देती हैं। लेकिन ये बात देखने में आई है, मुशाहदे में आई है कि एक ही सा कोचिंग इंस्टीट्यूट देने से या एक ही सा स्कूल देने से भी बच्चे अलग अलग सलाहियत के होते हैं और वो कई बार माँ बाप इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे नजर में जो डिजास्टर हो रहा है, ये
1: बच्चे समय तो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं,
2: डिप्रेशन की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं जिस तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि हमारी जो वालदेन की, जो पेरेंट्स की राइजिंग एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चों के तई, वो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत हद तक इसमें वालदेन के काउंसलिंग की जरूरत है। उसके बाद टीचर्स का अपना रोल होता है, टीचर्स तो अपनी तरफ से कोशिश ही करते हैं, खासतौर से जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं वो तो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। बाकी जो दिक्कत आ रही है वो बच्चे को आ रही है और शिकार भी बच्चे ही हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे की काउंसलिंग से ज्यादा इसमें वालदेन का ज्यादा रोल है और उसको सिर्फ दाखिला कराते वक्त ही नहीं बल्कि दाखिले के बाद जब 12वां कर लेता है बच्चा तो उसके बाद जो उनको रियल असेसमेंट करना चाहिए अपने बच्चे का कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। बच्चा जो है वो चाहता ही नहीं कि वो इंजीनियर बने और आप जो है जबरदस्ती उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं
1: तो
2: फिर बच्चा उस वक्त आपको वो डिफाई नहीं कर पाता क्योंकि आपने घर बेचकर उसका दाखिला कराया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपने जमीन बेचकर दाखिला कराया है, तो वो इतना बोझ से दब जाता है। और दूसरी तरफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आई एम वेरी सॉरी टू से विथ ऑल माई रिस्पेक्ट टू कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो एक फैक्ट्रियां बन गई हैं। मतलब उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ये बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट ले एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस। वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं लेकिन वो सबसे एक तरह का ही लेते हैं,
1: सबसे एक तरह का होता है टेस्ट।
2: मुझे याद है जब मैं 7th क्लास में था तो एक स्पेशल टीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से और उसने हम सब बच्चों का, हम क्लास 7th में थे, सोचिए क्लास 7th में रहे होंगे 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने सर्वे किया था और हर बच्चे के बारे में बताया था कि इसको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए।
1: अच्छा।
2: हाँ, मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि अगर ये बच्चा लिटरेचर या सोशल साइंसेस पढ़ेगा तो कुछ भी कर सकता है, ही विल शाइन। लेकिन मैंने उसके बरक्स साइंस ले ली नाइन्थ में, तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा बारहवें तक, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको बहुत पास होना जो है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट, लेकिन फौरन ही मुझे रियलाइज हो गया, तो मैंने बीए में टोटली आर्ट साइड में चला गया मैं, और अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छा किया।
1: अच्छा शमीमुद्दीन साहब, आप तो चूंकि मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की लोगों को कोचिंग देते रहे बच्चों को, तो क्या लगता है कि जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है उसकी मेंटल सतह क्या होती है, दिमागी सतह उस पर होती है, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोच के आता है, फिर वहां किस तरह से उसका मेंटल डेवलप किया जाता है?
3: सब बात ऐसी है कि बच्चा शायद ये समझता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है सब कुछ दे देगा और मुझे जो है सब कुछ मिल जाएगा और मैं सब चीजें रिप्रोड्यूस कर लूंगा, लेकिन बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो खुद तैयारी करने को तैयार नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने तो पढ़ा दिया, टीचर आया पढ़ा दिया, उन्होंने समझा दिया, लेकिन आप वो चीजें घर पे ये तैयार करेंगे, याद करेंगे और राइट टाइम पे उसे रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो नंबर भी मिलेगी, अपना मकसद आपका पूरा होगा। और ये चीजें जो है अब आप जो है पहले बचाए जाते हैं, माँ बाप को चाहिए कि देखिए स्कूल में या कहीं भी कोचिंग सेंटर में बच्चा दो चार घंटे से ज्यादा नहीं रहता तो वो कोशिश करके अपना रन चलाते हैं, लेकिन 18 से 20 घंटे जो है वो माँ बाप के कस्टडी में रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रहता है, तो

0: उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो मतलब प्रायोरिटीज हैं, वो कुछ अलग होती हैं।
1: डेफिनेटली।
0: तो चार घंटे का चढ़ावा रंग जो है 18 घंटे में जो है सब चला जाता है। तो उसे बताया जाता है कि याद करके आना, और दूसरे दिन पूछा जाता है पर्टिकुलर, और कोई पूछे ना पूछे, लेकिन मैं जरूर अपने बच्चों से सवाल करता हूँ, कल ये बताया था या परसों बताया था आपने, कितना याद किया आपको, तो नहीं बता पाते। उनसे रीजन पूछता हूँ उनके, भाई किसने मना किया था कि आप ये याद मत करो, उसका जवाब भी उनके पास कुछ नहीं है। माँ बाप को बुलाया जाए या उन्हें कहा जाए कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो वो आज नहीं देते। वो समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी एक बार स्कूल भेज दिया, स्कूल की हो गई, कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो गई और टीचर की हो गई, और हमें मत बुलाओ, अब आप जानो और आपका काम जाने, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। भाई वो घर पे अगर पढ़ेगा, टाइम देगा, तभी तो कुछ सीखेगा ना, और वो खुद सीखने को तैयार नहीं है, और माँ बाप उन्हें सपोर्ट नहीं करते। मैंने ये महसूस किया है कि पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कुछ के लोग जो है, वो बच्चे को समझते हैं कि ये हमारे जो है पैसा कमाने की मशीन है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, किसी कारखाने में डाल दिया, किसी जगह बिठा दिया कि भाई ये पैसा लाएगा और पेरेंट की इनकम को सप्लीमेंट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। माँ बाप जो है वो इम्पेशेंट है, उनके अंदर जो है वो सब्र नहीं है, वो चाहते हैं कि इधर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया और ये साल के महीने में पढ़ना वो कमाना शुरू कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए कंपटीशन जो है वो, जैसे ही कंपटीशन का नाम आता है तो हमारे जहन में आईएएस का ही आता है कि भाई आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आईएएस के अलावा दूसरे एग्जाम भी होते हैं। अच्छा, हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर आदमी जो है वो क्लर्क या जो है कांस्टेबल भी नहीं बन सकता।
1: हर आदमी की
0: सलाहियतें होती हैं, हर आदमी का बैकग्राउंड होता है, हर आदमी की जो है वो एक नेचर होती है। बच्चा जो है चूंकि माँ बाप की गोद में पला है, पर्टिकुलरली माँ को जो है सब पता है कि इसकी क्या आदत है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बिहेव करता है, क्या इसकी सलाहियतें हैं, तो उस पर जो है वो ये समझते हैं, वो उसको बरूबर कार नहीं ला पाते, वो समझते हैं कि ये सब चीजें जो है करने की नहीं है, जबकि एक्चुअली उन्हें मालूम है, उन्हें पहले देखना चाहिए। मैं कंपटीशन को तीन हिस्सों में बांटता हूँ, एक आती है प्री कंपटीशन स्टेज, एक होती है ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड, और एक है आफ्टर कंपटीशन। प्री कंपटीशन में जो स्टेज आती है मेरे हिसाब से वो ये है कि बच्चे को चूंकि आप आदू से वाकिफ है, तो ये अंदाजा लगाए कि ये पढ़ाकू है कि नहीं है, ये कितना टाइम बर्बाद करता है, इसके जो है पढ़ाई में दिल लगता है कि नहीं लगता, या ये जो है दिल उछाट होता है। अगर बच्चा जो है पढ़ाकू है, बुकवार्म है, या चीजों में इंटरेस्ट लेता है, तब तो उसे आईएएस की तरफ भेजिए, नहीं तो दूसरा एग्जाम है। दूसरा एग्जाम में क्या होता है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर एक्साइज का भी होता है, सीबीआई है, कस्टम है, ईडी है, बहुत सारे एग्जाम है, ये सारे होते हैं। तो जो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों को, लेकिन माँ बाप जो है वो बच्चा जो है एक फुटबॉलर का बना होता है, माँ बाप जो है समझते हैं कि चाहिए पढ़ाएगा, हम कहते हैं कि अपना रोल अदा करो, माँ बाप अपना रोल अदा करेंगे, बच्चा अपना रोल अदा करेगा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर अपना रोल अदा करेंगे, तभी रिजल्ट जो पॉजिटिव आएगा। वरना अगर एक आध चीज में भी कहीं कमी रह जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप दोष देंगे जो दूसरे लोगों को। अरे भाई आपका जो है ये प्री कंपटीशन में मैं देता हूं कि आप घर में जो है वो एक कमरा उसे दीजिए, कुर्सी मेज दीजिए, उसके बाद जो है ग्लोब रखिए, मैप टंगिए, ताकि उसे माहौल बने कि भाई हाँ यहाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड में जो है वो उसके लिए जो है वो भाई किताबें हैं, कोचिंग की फीस है, उसके बाद जो है नोट्स हैं। अब जैसे आईएएस के एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो पढ़ने का मटेरियल भी ज्यादा हो जाएगा और टफ भी हो जाएगा। अब आईएएस के बच्चों के लिए जो है वो हमेशा प्रेस्क्राइब जाते हैं कि अपनी योजना भी पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है, कुछ एक दो गवर्नमेंट जो साइट है वो भी देखनी है, तो ये सब जो है वो कोचिंग के दरमियान में है। उसी पीरियड में आपने बच्चे को जो है अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी है, बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे सपोर्ट करना है। यहाँ एक वो आएगा, वर्ड आएगा दामे दरमे दखने, आपने सपोर्ट करना है। तो माँ बाप तो अपना रोल अगर अदा नहीं करेंगे तो कमी रह जाएगी ना। तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसे शाबाशी भी दें, उसके खाने पीने का उसका ख्याल रखें। अगर कैंडिडेट कोई लड़की है और वो एग्जाम देने जाती है तो माँ बाप या कोई ना कोई उसे साथ जाए उसके, ताकि उसे जो है वो अकेला पढ़ने में तो उसे सेफ्टी एहसास हो। तो आप आमतौर से जो है माँ बाप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, या तो पेपर ही देने नहीं जाने देंगे, या देंगे तो फिर वो दूसरों के भरोसे पे छोड़ेंगे, भाई तुम ले आना तुम ले आना। भाई आप माँ बाप को अपने पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है, मजहबी जिम्मेदारी भी और सोशल जिम्मेदारी भी है कि आप उसकी परवरिश अच्छे करें, वो सोसाइटी में जो है एक असेट बने, ना कि लाइबिलिटी बने।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये चीज है। और उसके बाद ऐसा है कि भाई आप बैठे खुदा ना खासा आप जो फेल हो कोई बात नहीं, उसमें जो है डांट डपट नहीं करें, कुछ नहीं करें। यहाँ जो है अखबार का एक शेर मैं कहना चाहूंगा, वो यहाँ बिल्कुल टीवी फिट आता है मेरे ख्याल से, कि गिरते हैं शह सवारी मैदान।

0: जंग में होते हुए क्या रहे हैं जो घुटनों को बल चले हैं।
1: मैं छवि साहब की तरह होऊंगा वापस। छवि साहब आप तो एक बड़ा स्कूल चलाते हैं, बड़ा तालीम इदारा चलाते हैं। आमतौर पर जब बच्चों को वहां एडमिशन के लिए माँ बाप लेके आते हैं, क्या सोच होती है, क्या उनकी उम्मीदें होती हैं आपसे, आपके इदारे से? और उसमें जाहिर है कि वो लोग जैसे भी जिक्र हो रहा है कि वो लोग अपना पुराख नहीं अदा कर पाते, लेकिन उनके बावजूद चाहते हैं कि बच्चा कुछ बन जाए। और क्या
2: मेरा इसमें खाली एक ही इदारे से वाबस्तगी नहीं है, मेरी कई इदारों से वाबस्तगी है। और बम्बई में अंजुमन इस्लाम से भी मेरी वाबस्तगी रही 3 साल, जिसके 57 स्कूल सिर्फ बम्बई में ही है। तो मुझे बहुत करीब से पेरेंट्स को भी देखने का मौका मिला है, बच्चों को भी देखता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को। मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। जब मैंने शुरू में भी कहा कि हर वालिद या वालदा, हर पेरेंट अपने बच्चे को बिल्कुल और जिस सुरैया पे मुकीम देखना चाहता है,
1: ख्वाहिश तो सभी की होती है,
2: ख्वाहिश होनी भी चाहिए, लेकिन लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाना, वो जरूरी है। तो पेरेंट्स को हमें समझाना होगा कि जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, जो बेस्ट एग्जाम होता है JEE, उसमें जो सक्सेस रेट है वो 4% है नेशनल लेवल पर। जो नीट है उसमें सक्सेस रेट 1.5% है
1: नीट में।
2: तो बहुत अच्छी बात है और ये जरूरी है। तालीम जो है वो पावर्टी को खत्म करने के लिए, जिसे एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि कोई भी अपने, लेकिन या तो आप बच्चे को जब हमारे पास आते हैं उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि लड़के के लिए वालदैन ज्यादा पुरउम्मीद और ज्यादा पुरजोश होते हैं। मैं कुछ फीस माफी की कमेटीज में भी मैं बैठा हूं, चेयर करता हूं, तो कई पेरेंट्स मुझसे ये कहते थे कि लड़की का तो छोड़ दीजिए, आप हमारे बच्चे की फीस माफ कर दीजिए। अगर दोनों भाई बहन पढ़ रहे हैं या वो एक ही बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, बहन को किसी दूसरे स्कूल में डाल रखा है, तो उनके दिमाग में ये रहता था, मैं खासतौर से मुस्लिम पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, कि उसको तो हम कहीं ना कहीं पढ़ा लेंगे,
1: आप इसकी फीस माफ कर दीजिए,
2: आप इसकी फीस माफ कर दीजिए तो ये पढ़ लेगा। तो इसमें एक जो ये एटीट्यूड है कि हम अपने सिर्फ बेटे से उम्मीदें लगाए हो कि वो हमारा नाम चलाएगा, ये गलत है। अल्लाह का शुक्र है वैसे ये अब आगही आ रही है,
1: रुझान बदल रहा है,
2: लेकिन ये 8-10 साल पहले तक भी मैं आपको बता रहा हूं कि यही रुझान था। और अब लड़कियां लड़कों के, खास लड़कों के मुकाबले में बहुत अच्छा कर रही हैं। इफ यू गो बाय द परसेंटेज एंड एवरेज इफ यू कम आउट, अगर आप उस पर मुकाबला मतलब देखें, एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि लड़कियां हमारी जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है बनिस्बत लड़कों के। सारी सहूलियतें हम लड़कों को दे रहे हैं
1: लेकिन
2: रिजल्ट वहां से अच्छा आ रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमें खुद कुछ करके दिखाना है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग के जो हमारे सेशन, जो कोचिंग चल रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करने की जरूरत है।
1: अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि हम
2: जो, और ये जो कहा शमीम साहब ने कि वो माँ बाप दाखिला कराकर
1: भूल जाते हैं,
2: मतलब वो लापरवाह हो जाते हैं, तो वो बहुत सही कह रहे हैं। आज भी मैं सुबह से बैठा हुआ था, पेरेंट्स से इंटरेक्शन कर रहा था, तो वो ये कि सर अब हम क्या करें, हमने तो दाखिला इतने अच्छे स्कूल में करा दिया है, न्यू राइजर स्कूल में करा दिया है, तो अब वो जाते जाते यहां से 3 बज जाते हैं बच्चे को। तो फिर उसके बाद सच्ची बात यह है कि उसका जाने के बाद का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है बच्चे का। तो
1: यहां इस बात से सवाल कि घर का शेड्यूल तो माँ बाप ही बनाए,
2: यहां जरूरी है कि हमको थोड़ा सा रेस्ट्रेन भी रखना होगा वालदेन की एस्पिरेशंस पर, और स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला कराइए, लेकिन अपनी वसूलत के हिसाब से कराइए। ये मत सोचिए कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़कर ही बच्चे कामयाब होते हैं। हमारे पास जो अच्छे नमूने हैं, अच्छी मिसालें हैं, वो सब सरकारी स्कूलों में पढ़कर हुए हैं।
1: ताजा मिसाल मैं आपको दूंगा,
2: पीकेजी एसवाई कुरैशी, वो मेरे दोस्त हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब
1: जी, देखिए कितने सामने की मिसाल,
2: जाकिर हुसैन साहब
1: जी,
2: हमें नाचीज भी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का परवरदा हूं, वहां से मैंने अमरोहा से किया था।
1: ऐसा नहीं कि किसी स्कूल को
2: हम अच्छे रिजल्ट जो आए हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से, नवोदय और हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल है वो बेस्ट हैं।
1: जब सरकारी है।

0: एक होड़ हो गई है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा, उसके बाद हम बेखबर हो जाएंगे तो बच्चा राइज करेगा नहीं। इट इज ए मिथ मेरे हिसाब से।
1: क्या ऐसा नहीं लग रहा शमी साहब कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सारी खता जो है हमने वालदेन पे डाल दी, सारा कसूरवार उन्होंने ठहरा दिया?
2: नहीं, सारा उनके लिए हर आदमी का एक रोल है, बच्चे का रोल है, बच्चे का रोल है कि टाइम पे पढ़े, चीजें याद करे, वो करे।
1: हाँ, आई चीज ये अभी जैसे शमी साहब कह रहे थे कि 3 बजे जब बच्चा स्कूल से गया है उसके बाद की शेड्यूलिंग नहीं घर में कोई।
2: हाँ, शेड्यूलिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई
0: वो घूमता है, टहलता है,
2: प्रोग्राम नहीं है कुछ के, उसने करना क्या है? उसने 40% नंबर आ गए तो कोई जो है बासपोस नहीं करेंगे, 80 आ गए तो कोई जो है वाहवा नहीं करेगा। तो बच्चों को भी कई बार लगता है कि भाई
1: पढ़े जाओ,
2: उनका कोई टारगेट नहीं है जिंदगी में क्या बनना है, कुछ नहीं बना। ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे जो है,
0: एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो मेरा मुशाहिदा है कि माएं जो है वो ज्यादा कंसर्न है बच्चों की तालीम के लिए। बात को पता ही नहीं चलता
2: कौन से स्कूल में,
0: मतलब ना वो ये जानना चाहता कि मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट है, मेरे बच्चे ने कैसा कर रहा है, फर्स्ट टेस्ट में क्या किया, सेकंड टेस्ट में कैसे किया, आखिर में जब वो एनुअल होना होता है तो भाई रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस वक्त वो थोड़ा सा कंसर्न होता है। कोशिश ये करता उस दिन भी न जाना पड़े। और ये उसको जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसने और भी ज्यादा इसमें
1: आसानी दी थी। अच्छा, एक चीज और भी है, अब आप लोग क्योंकि दोनों इदारों से वाबस्ता हैं, अब पेटीएम शुरू हो गया है, जैसे वालिदैन की मुलाकात होती है टीचर्स के साथ,
0: उसमें भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वालिद अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो वालिद की हाजिरी जो है वो 30% से ज्यादा नहीं होगी, जो बहुत ही जागरूक फादर है वो आ रहा है, माँ ही आती बिचारी।
1: अभी जाहिर है कि हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारी वालदे हैं वो कम पढ़ती
0: है, वो कम होती है पढ़ी लिखी, 12वां भी है, 10वां भी है, लेकिन वो आ रही है। शी इज मोर कंसर्न अबाउट द एजुकेशन।
1: अच्छा, मैं शमीउद्दीन साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि वो बच्चा इंस्टीट्यूट में आ गया तो आप उसको किस किस तरह की हिदायत देते, किस किस तरह की उसकी तैयारी कराते हैं?
2: तैयारी कराने के लिए ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो भाई बच्चों को ये कहता हूँ कि आप डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में जो है टाइम की पाबंदी है, काम आपको कोई दिया है वो करके लाना है, आसपास जो आपके बैठे हैं उनके साथ शरारत नहीं करनी है या सिंसियर होना है, ये सारी चीजें सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप जो है बहुत केयरफुली लिसन करेंगे और कोशिश करेंगे, मतलब आपका वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, अगर आप सोचेंगे कि भाई याद करना है तो याद करेंगे और नहीं सोचेंगे तो है। तो मैं जो है वो मुझे नहीं पता और लोग करते नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं जो है वो मतलब एज ए हॉबी करता हूँ पढ़ाने लिखाने का काम, तो मेरे अपने उसूल अलग है और मैं आंखें भी निकालता हूँ, बच्चों को डांट भी देता हूँ कि क्यों नहीं करके लाइए। हमारे यहाँ जो है ये बड़ी स्टार्टलिंग फैक्ट है कि भाई अखबार नहीं आता किसी यहाँ, अब अखबार नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं हो रहा। बच्चों से मैं कह के संग गया, यहाँ तक मैं जो है शर्म दिलाने की कोशिश करता हूँ कि यार जो है अगर भाई साहब तुम लेने की पोजीशन में नहीं हो तो यार तुम अखबार ले लो, उसका बिल मैं अदा कर दूंगा। मैं इस एक्सटेंड तक जाता हूँ और कोशिश मेरी ये रहती है कि जब मेरे पास जो बच्चा है वो कुछ सीख के जाए, महीना 2 महीने के बाद जब वो जाएगा तो वो बोलता होना चाहिए, उसे कोई नॉलेज होनी चाहिए, गद्दे पे किताबें नहीं लदी होनी चाहिए।
1: सही बात।
2: तो मैं इसलिए जो है बच्चों से पूछता हूँ, तो मेरे साथ कोचिंग में क्या होता है, मैं फ्री पढ़ाता हूँ, पैसा एक नहीं लेता।
1: अच्छा।
2: मैंने इंडिया इस्लामिक सेंटर से पढ़ाया, हेरा स्कूल में पढ़ाया जो कि हमिन के पीछे है, आज हकीम अजमल खान में पढ़ाया, उसके अलावा और
1: एग्जाम्स की तैयारी कर
2: रहा हूं। मेरे मेन जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम है, एक्चुअली 78 में मैंने नौकरी जब शुरू की और 81-82 में मेरे आईएएस के जो है चांसेस चले गए, मैंने मेन पीटी क्वालिफाई कर लिया था, मेन में 2-3 नंबर से रह गया 82 में, तो फिर मुझे लगा मैंने एस एन दास में मैंने पढ़ा, डीपीसी दिल्ली पब्लिक कॉलेज में मैंने पढ़ा, उसके बाद एक जो है वो क्राट प्लेस में एक इंस्टीट्यूट था, नाम याद नहीं रहा, क्वेश्चन का था वो,
1: वहां मेरे पास नाम की जरूरत भी नहीं है।
2: तो इन सबसे पढ़ने के बाद जो मेरे पास नॉलेज है, मुझे लगे कि मेरा तो पैसा खर्च करके पढ़ा तो इस नॉलेज को मैं आगे बढ़ाऊं, तो यार दोस्तों अपने एरिया में जिसमें रहा था मैंने मशवरा किया, चलने हाँ तुम ये करो, तो मेरा स्कूल से इधर उधर मैंने जो है वो किया, मैं सारी चीजें कंपटीशन है, एक आदमी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आपके यहाँ जो सैयद अफरोज आलम साहब थे, इनकी खिदमत ही मैंने ली, ये हिस्ट्री पढ़ाते और बड़े अच्छे टीचर साबित हुए। मतलब कहने का ये है कि बच्चा अगर ये सोचे, उनमें जो है हम ये कराते थे, एक चीज और थी कोचिंग की मेरी, कि मैंने सैटरडे क्लासेस लगाता था दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, संडे सारा दिन हम लगाते थे, 2 अक्टूबर की छुट्टी सारा हिन्दुस्तान बंद है, लेकिन हमारी कोचिंग चालू थी, होती है हमारी क्लासेस। मेरे पास टीचर आते थे, इंडिया इस्लामिक सेंटर एक जगह है, वहां जो है लड़के रहते थे, तैयारी करते थे खुद एग्जामिनेशन की, और मैंने उन्हें मैसेज भेजा

0: लाया, एक ने कहा जी मैं हिस्ट्री का पोर्शन में पढ़ा दूंगा, एक रहा जी मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, एक ने कहा जी मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एक ने कहा जी मैं जो है करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से जो है सुपरविजन मिला होता था, पढ़ाता था, लेकिन उससे ये होगा अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि सख्ती रखी इसलिए रिजल्ट आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, आजकल मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे टीचरें तो बहुत सारी हैं, इनकम टैक्स में भी है, पुलिस में भी है, आईबी में है, सीआईएसएफ में एक मुहतरमा है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है लोग मुझे मिल जाएंगे। जो पढ़ा लिखा जो सबका है वो मुझे पहचानता है, इसलिए कि भाई ये टीचर है, खौफनाक टीचर है, लेकिन जो है रिजल्ट आता है। लेकिन होता यह है कि 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन जब वो बैच कंप्लीट होता है तो 20-22 ही रह जाते हैं, क्योंकि मेरी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाते।
1: तो ये बताइए, चलिए आप उनके सख्ती की बात कर रहे हैं और अपनी कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो क्या खाली क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वालदेन को क्रेडिट है?
0: नहीं, वालदेन को क्रेडिट ये है कि वो बच्चों को भेज तो रहे ना, ये भी कह सकते हैं कि संडे का दिन है कहां जा रहा हो। एक आध लड़की ने हमें शिकायत की कि हाँ हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है ये कहते हैं कि संडे का दिन है, सारी दुनिया जो है बंद है, ये कहां जा रही है, क्यों जा रही है? तो मैं क्या कि किसी का है तो आप अपने वालदेन को मेरे पास ले, जो ऑब्जेक्शन करे उसे मेरे पास ले आओ, उसे हम बता दें कि हम क्या करते हैं।
1: सुविधा एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है कि देखिए मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, उन सब में तालीम हासिल करने के बाद भी समाज में या मुआशरे में जो एक वाज तब्दीली आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। आप मेरे से ज्यादा तजर्बा महसूस करते होंगे।
2: अच्छा सवाल किया है आपने शमी भाई। मैं समझता हूं कि मैं बल्कि कहने भी वाला था कि जो तीसरा इसका पूरे प्रोसेस का जो तीसरा पिलर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो चीज देखने में आ रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो फैक्ट्रीज बन गई हैं, तो वहां भी किसी अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर्स है नहीं कि जो उनकी काउंसलिंग हम कहीं से लाएं, शुरू कराएं। एक तो वहां प्रॉब्लम हो रही है कि वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हो गए हैं। आई एम वेरी सॉरी, मतलब शमीम साहब उस तरह के आदमी नहीं है, ये तो बेचारे इंडिविजुअल अपना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है। कोटा जो है जैसे अब मशहूर हो गया, अब वो एक कोटा नहीं है हिन्दुस्तान में, बहुत कोटे हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि 22 डेथ्स हुई है पिछले 5 कोटा में पिछले 3 साल में।
1: वही मतलब है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद भी बच्चे के अंदर
2: कोचिंग को
1: वालिदगी नहीं आ रही है।
2: चलिए पेरेंट्स का हो गया, उन्होंने दाखिला करा दिया, अब यहां रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। उनको अगर सिर्फ ये लगेगा कि हमें तो दाखिला हो गया, अब बच्चा जाने बच्चे का काम जाने, तो वो इंसाफ नहीं हो रहा है, वो शिक्षा नहीं हो रही है, वो तालीम नहीं हो रही है, इसीलिए वो अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं। तो
1: इस तरह के केसेस बहुत सामने आए।
2: तो एक तो ये कि पेरेंट्स का क्या होता है, इवन अगर उनका कोचिंग में नहीं हो रहा है तो वो किसी प्राइवेट इदारे में दाखिला करा देते हैं। तो इसको तो एक तो अब कैसे गवर्नमेंट करेगी, हमने तो बहुत देखा कि गवर्नमेंट ने कोशिश की, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी।
1: चूंकि आप तो खैर तजर्बे जा रहे हैं, मैं आपके सामने क्या कहूं, लेकिन इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम प्रॉपर वे में नहीं कामयाब हो पाती, क्योंकि उसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है।
2: पार्टिसिपेशन तो वो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ, आपके दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ कि किसी प्राइवेट स्कूल डोनेशन नहीं ले सकता है, मतलब किसी भी हालत में।
1: जी जी।
2: लेकिन ये फैक्ट है कि पेरेंट्स जो है वो तैयार रहते हैं देने के लिए, वो लेने के लिए तैयार रहते हैं
1: स्कूल के नाम।
2: तो जिस वक्त डोनेशन आ गया, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशनल इदारा हो, तो फिर काउंसलिंग की कोई वो नहीं रहती है, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं रहती है। अब वो उन स्कूलों में उन इदारों में टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी इस्तेदाद क्या है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, ये कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ नाम देख रहा है।
1: तो कहा जा सकता है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ जो वालदेन तरबियत करें वो ज्यादा जरूरी है।
2: तरबियत बहुत जरूरी है, और उसके साथ निगहदाश जो है बच्चे की, और उसको पॉजिटिव लाइन पर उनकी काउंसलिंग जरूरी है। वालदेन ये समझकर न छोड़ दें कि हमने तो दाखिला करा दिया, वहां से जिम्मेदारी शुरू होती है मेरे हिसाब से, और वो आखिर तक चलनी चाहिए।
1: बहुत अहम गुफ्तगु रही, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और फिर यहां मैं सिर्फ अपनी बात एक जुमले में कहूंगा कि देखिए, जितनी जिम्मेदारी इसाज़ा की है, जितनी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे वालदेन की कि बच्चे को लुक आफ्टर करें, बच्चा क्या कर रहा है, कितनी उसकी जहनी सतह है, तमाम चीजें वालदेन को देखनी है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है कि हमारे माशरे में एक मुस्बत तब्दीली ना आए। जनाब शबी अहमद साहब और जनाब शमीमुद्दीन साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत शुक्रिया।
0: شکریہ.
1: تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انداز نظر، پیشکش مبین احمد خان کی تھی، اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت.

हमारे नशियातर सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे, आगाज महेंद्र कपूर के गाए फकीरा फिल्म के इस नगमे से।

खेल खेल में इस फिल्म का तो गाना आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। और ये सुनिए लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, नगमनिकार वर्मा मलिक, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

दुल्हन फिल्म का नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में। और इस प्रोग्राम के आखिर में सुनिए हंसते जख्म फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ नगमा, निगार कैफी आजमी।

0: सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की मजमूई अंदरूनी मुल्क मांग के तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज नई दिल्ली में भारत के 13वें पब्लिक अफेयर्स फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जहां कृष्णन ने कहा कि भारत सालाना तकरीबन 32 करोड़ से लेकर 33 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है, उन्होंने कहा कि दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल फोन ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं और वो मुल्क में अपने मोबाइल फोन तैयार कर रही हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, अंदरूनी मुल्क वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, सप्लाई चेन निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और भारत की आलमी मुसाबिकत को वसत देने की खातिर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इतात शरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने न्यूयॉर्क में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया है, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकतदारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने स्किल सेल अनीमिया को खत्म करने से मुतालिक कौमी मिशन के जरिए इस बीमारी के सिलसिले में भारत के जामे इकदाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2023 में इस मिशन का आगाज हुआ था, जिसके तहत 2047 तक अवामी सेहत से मुतालिक इस मसले को खत्म करने का हदफ रखा गया है। मोहतरमा श्रीवास्तव ने कहा कि आबादी के लिहाज से स्क्रीनिंग, जल्द तशखीस, इलाज, काउंसलिंग अवामी सेहत निजाम में शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिहायश के मकाम या समाजी इकतसादी सूरतहाल की वजह से कोई भी शख्स सिकल सेल बीमारी की बरवक्त पहचान और इलाज के बगैर नहीं रहना चाहिए। भारत ने सिकल सेल बीमारी के सिलसिले में एक मुसाविना, जामे और पायदार आलमी इकदाम के अपने अहद का इरादा किया है, ताकि जिन्हें देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है उनके बरवक्त तशखीस और मयारी देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। स्वच्छता और अच्छी हुकूमरानी के दो मकासद पर तवज्जो मरकूज करते हुए समाजी इंसाफ और तफवीज अख्तियारात की वजारत के तहत माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने से मुतालिक महकमा खुसूसी मुहिम के छठे मरहले की तैयारी कर रहा है। इस मुहिम का मकसद साफ सुथरे काम के मकामात को फरोग देना, जेर इंतवा मामलात के जल्द निपटारे और हुक्मरानी को बेहतर बनाना है। यह मुहिम 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। G4 के मुल्कों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़रा खारजा ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वजारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती कौंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल रहनी चाहिए। भारत ने कल ओमान के मशरकी साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज MV केप दाओ पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 20 भारतीय मल्लाहों में से 19 को बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय शहरी की अलमनाक मौत हो गई। वजारत ने मरने वाले के कुनबे से ताजियत का इजहार किया है। उसने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीय मल्लाहों की जल्द वतन वापसी के लिए ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कर रहा है। भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आज बिहार, झारखंड, विदर्भ और सिक्किम में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महिलाओं की कबड्डी में दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा, जिसकी वजह से हाफ टाइम तक उसे 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय टीम ने 14-10 से जीत लिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़ीर खारजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है और दिफाई चैंपियन भारत चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत।
2: वर्ल्ड सर्विस दिए पंजाबी सेवाएं शाम के 5 बजे ने हो साड़ी दूजी सभा शुरू होंदी है। सभा का आगाज कर रहे हैं सराय के प्रोग्राम के नाल। पेशे ढोक माहिती।

कलम दे धनी साईं कुंभन दास कृष्ण जैकू सांवला सांवल शाह बेपरवा किशन कान्हा पता नहीं कितने नावां दे नाल वनिया तू सड़ा वेंदा रही है उसे कृष्ण दे गुणगान करन आले भक्तां विच थे हन अठ वड्डे कवि जिन्हां को बाद विच अष्ट छाप दे कवि सड़ा गया इस अष्ट छाप दे कवियां विच सब तो पहले कवि थे साईं कुंभन दास जी इना दे बाद साईं सूरदास साईं कृष्णदास साईं परमानंद दास साईं गोविंद स्वामी साईं छीर स्वामी साईं नंद दास ते साईं चतुर्भुज दास ए सिलसिला ए रीत 1400

बहु लज्जा त्वचा सांधी गई। एक बार इवें थिया के उन्होंने राधा कृष्ण युगल लीला दे पद गए। इन्हों कुछ होके गुरु वल्लभाचार्य जी ने खुश ते निहाल थी के आका तैतू ता निकुंज लीला दे रस दा हेल्दी समझे ना। ए गाल सुन के कुंभल दास ने वलदा दिता के साई मैकू ता इसे रस की कुराली लोड़ है। ए ओ वेला है महाप्रभु वल्लभाचार्य दे पूरा थेवड़ पारुन गोसाई विठल नाथ जी की सरप्रस्ती लीला गावन करन लगे। वड़े वड़े राजे महाराजे साई कुंभन दास दे दर्शन करन इच अपना भाग समझेंदे हन। वृंदावन दे वड़े वड़े रसिक संत ते महात्मा भी इन्हां दे नाल सत्संग करन दी उम्मीद ला के बैठे रहंदे हन। वड़ी गल ए भी कि साई ने हर मुश्किल ते पैसे दी थोड़ दे बाद भी अपनी भगवत भक्ति दे नेम ते यश ते कदी भी कोई हरफ नहीं आवन दिता। आखा वेंदा एक बार साई विठल नाथ जी ने कुंभन दास जी को अपने नाल यात्रा इच द्वारका धीन वंजन दी उम्मीद रखी। उन्हां दी ए सोच आई कि उत्थो पैसे दी चंगी मदद ही कुथी वैसी। पर साई कुंभन दास जी श्री नाथ जी दा विछोड़ा हिक पल किते भी बर्दाश्त नान कर सकदे। पर उन्हां दी ए हिम्मत भी न थई जो अपने गुरु दे हुक्म को मना कर देवन। उन्हां दे नाल टुर पए। हाले ओ अफसरा कुल तोड़ी पुजे हन कि श्री नाथ जी दी मूरत दा ध्यान आंदे सार उन्हां दे अंग अंग विच सहरन थीवन लग पई। श्री नाथ जी दी मुस्कान दी जोत उन्हां दे विछोड़े दे अंधारे विच थिरकण लग पई। अपने सच्चे साई दे विछोड़े दे दुख नाल उन्हां दा हां वी बहु दुख पिया। तां उन्हां श्री नाथ जी दे विछोड़े विच इक पद गा के सुनाया। केते दिन जू गए बिन देखे तरन किशोर रसिक नद नंदन कछुक उठत मुन रेखे वह शोभा वह कांत बदन की कोटिक चंद्र विशेखे वह चितवन वह हास मनोहर वह नटबर बप वेखे श्याम सुंदर संग मिल खेलन की आवत ही है अपेखे कुंभन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेखे। मतलब कितनिया डिवारा साई को बिना डिठे मेडिया गुजर गईया हैं। बाल किशोर नंद दा पुत्र जो हूं छुअर बनदा वेंद है ओ शोभा दे पिंडे दी लिशक जेकू करोड़ा चंद्र डेधे रह वेंदे हैं ओ उंदी नजर उंदा हासा ते शाम सलूणे नाल रल के खेडण दी लालसा दिल दे विच उठदी पई है। कुंभन दास आदे हैं के गिरधारी दे बगैर ए जिंदगी भी किसे कम दी बिल्कुल नहीं लगदी। ए गावन सुन के गुसाई जी दा दिल भी पंघर गया। उन्हां सोचा जो कुंभन दास को एक पल किते भी श्रीनाथ कोलू अलग नहीं किता बन सकदा। उन्हां कुंभन दास को वापस वल वंजन दी इजाजत दे दित्ती। श्रीनाथ जी दे वला दर्शन करके कुंभन दास जी एकदम वल चने थी गए। एक भी किस्सा बहु मशहूर है। उस वेले हिन्दुस्तान दी गद्दी ते मुगल बादशाह अकबर बैठा है। अकबर दे दरबार एक गवैये ने कुंभन दास दा एक पद गा के सुनाया। जेको सुन के अकबर बादशाह ने साई कुंभन दास को अपने दरबार इच आवन कीते फतेहपुर सीकड़ी दा समझा पाठ दिता। पहले ता कुंभन दास दी मर्दी न थई कि ओ राज दरबार इच वंजन। पर जिस वेले सैनिका ते दूता जो सड्डन कीते आए हन बहु ज्यादा तरले कीते ता ओ पैदल ही उन्हां दे नाल टुर पए। उन्हां दी पालकी ते घोड़ा दी सवारी कीते उन्हां साफ हटक दिता। कुंभन दास दी पगड़ी फटी हुई है ते कपड़े भी मैले हन। श्री नाथ दे दरबारी को बादशाह अकबर दा सजा होया दरबार दू कौड़ी दा भी न लगा। ओ सोचेंदे पए हन जो उन्हां कोलों इंजा केड़ा पाप थी गया है जो उन्हां को इस दरबार विच हाजिर थीना पै गया है। बादशाह अकबर ने साई कुंभन दास दी बहु अस्तस्ते आ भगत कीती। कुंभन दास को इवें लगा जिवें ओ नरक च आ खड़े होन। इस जात तां ब्रज बहु सोहना है जित भगवान कृष्ण आप खेडदे हैं। अकबर ने उन्हां को एक पद गावण दी गुजारिश कीती। कृष्ण दे दरबारी को तां कृष्ण लीला पद ही गावना है। बादशाह ने आखा जो कोई मैडी वल्लों भेंट तां स्वीकार करो। कुंभन दास जी ने आखा अगर तुसा सच भेंट देना चाहते हो
ता आज तू बात न कूं।

तय बहुत घड़ी गाली कुंभन दास साई आदे हिंद जो कृष्ण भगवान दे अलावा सारे बेकार कह कम दे नहीं। इस बादशाह अकबर दी भी वड़ियाई देखण आली है जो उना ए सब सुन के भी आदर सत्कार नाल उना को विदा कीता। इसे तरह हिब्बिया किस्सा भी बहु मशहूर है। एक गाल 1563 ईस्वी दी है जदन महाराज मान सिंह ब्रज आए हन। वृंदावन दर्शन दे बाद ओ गोवर्धन आए श्री नाथ जी दे दर्शन कीते। उस वेले साई कुंभन दास जी मृदंग ते वीणा दे नाल कीर्तन करेंगे पए हन। राजा मान सिंह भी संगीत दे बड़े कदरदान हन। ओ ए देख के अचरज करेंगे रह गए। उन्हां को मिलन कीते ओ उचेचा जमुना वतो ग्रां गए। उस कुंभन दास दी माली हालत देख के हैरान थी गए। जिस वेले महाराज मान सिंह पुजे कुंभन दास कृष्ण दे रूप चिंतन ध्यान ला के बैठे हन। अख खुलन ते उन्हां भतरू जी कोलू आसन ते शीशा मंगा। उथो वलदा मिला जो वच्छी घा खा गई है ते पानी भी पी गई है। राजा मान सिंह समझ गए जो पानी मुंह दे दे होसिन। उन्हां सोने दा शीशा दिता ते मोहरां दी भरी थैली भी दिती। पर साई कुंभन दास ने घिनण तू साफ मना कर दिता। वंदे वेले राजा मान सिंह ने जमुना वतो ग्रां भी कुंभन दास दे ना करण दी तजवीज कीती। पर जग दे मालिक दे भगत ने आखा मेरा कम तकरी ते बेर नाल भी चल वेंदा है।

0: बाद भी साईं कुंभन दास अपने घर तो श्री नाथ जी के दर्शन किए गोवर्धन नहीं आते हैं। एक बार वो संकर्षण कुंडी ते अन्योदर दे कोल खड़े थी गए। उन्होंने नाल अष्ट शब्द कवि चतुर्भुज दास भी हन। उन्हें आखा हूं घर जुल के क्या करने, ए शरीर तो हूं छुट्टा नाल है। जिस वेले उन्हें स्वास छोड़े उस वेले साईं विठल नाथ जी भी उथाई हाजिर हन। उन्हें साईं विठल दास को पुछा, इस वेले तुहाडा दिल किस लीला च लगा होया है? साईं विठल दास जी ने जवाब दिता, लाल तेरी चितवन चितन चुरावे, मतलब साईं जी तेरी जड़ी सूरत है ओ मेरे चित दी चोरी करेली पई है। इस दे बाद उन्हें जुगल जोड़ी राधा कृष्ण दी छवि दे ध्यान इच रख के एक पद गाया, रस कन रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषभान नंदनी श्याम तमाल चढ़ी, बिहरत श्री गिरधर धरन लाल संग कोने पाठ पड़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर धन धर रत रत केल बढ़ी। मतलब रस से अठों सुख रस इच होंदे हिन, सोने दी वेल राधा श्याम जहे सदा बहार दरख्त चढ़ी हुई है, गिरधारी दे नाल विहार करेंदी है, ए देख के कुंभन दास राधा कृष्ण दी लीला नाल बहु खुश हैं। बस हूं उन्हें अपने सांस राधा कृष्ण दी मूरत को ध्यान लाके छोड़ दिते ते भगवत इच ही अंतर ध्यान थी गए ते अपना ना कृष्ण राजा दी भक्ति दे कविया दे विच पहले नंबर इच लिखा दिता। कुंभन दास दे पदा दी कुल गिनतरी जो राग रत्नाकर ते संप्रदाय दे कीर्तन कठ विच शामिल हैं 500 दे करीब हैं, पर उना दे पद इस तू भी बहु ज्यादा हैं। अज साईं कुंभन दास जी को याद करके ते उना दी गाल करके मेरे दिल को भी ठंडक मिलनी पई है।
1: अज असा हाजिर है आप सब दे नाल सराइकी सूफी संगीत दे नाल। असा दे नाल हैं अज रूपेश चोपड़ा जी, वो असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज विच सुने सन। सब तो पहले वो पेश करेंगे पिन सुल्तान शाह हुसैन साहब जी का है गावन, माही नी मैं केनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी।

कमोहिक वध के सूफी गीत हैं जो असाडे पीरा ने लिखे हैं, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, फरीद, काफिया, डोड़े, हिक कनु हिक वध गीत हैं। हूं रूपेश चोपड़ा जी को मैं दरखास्त करे सा कि ओ साकू सुनावन, रोंदे उमर निभाई यार दी खबर ना आई, फरीद साहब दा लिखा वा।

ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਹੀ ਮਰੇ ਸਨ ਖਾ ਕਰ ਫਾਹੀ ਮਰੇ ਸਨ ਖਾ

0: साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतलब ही कोई सिराय की बिरादरी विच इंजा बंदा होसी जे ना सुन रख्या होसी। बहुत वड्डे वड्डे गायका ने एक गीत गाया है पर असा को रूपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सिन दमादम मस्त कलंदर।
1: रखियो बला झूले लाल सिंदरी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी पते रखियो बला झूले लाल लाल मेरी पते रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर निदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर होला।

बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आया बला झूले लालन पंजवा में बालन आया बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे गली याल बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन।

0: सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी पत्ते रखियो बाला झूले लालड़े, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी।
1: बहुत बढ़िया सूफी संगीत तो सुना सको सुनवाए असा को इजाजत दे। हम प्रोग्राम खत्म थी दा वेला थी गए। मैं तरुपेश चोपड़ा जी आप सब सुनन वाले कनु इजाजत मांगने हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मिलसू एदे ही कोई बे प्रोग्राम दे नाल। राम राम जी।

बाबा बुले शाह दे मजार ते हर साल पानी मेला लगता है जिथे सूफी कलाम अते कवालियां गाईयां जांदियां ने। ईद यानी ईद उल फितर अते ईद उल अजहा सब तो वड्डे धार्मिक त्योहार ने। इस तो अलावा पेंडू इलाकियां विच हाड़ी दी फसल कट्टण वाले सभ्याचारक इकट्ठा हुंदे ने।

ਸੋਣ ਕੇ ਕੰਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪਵੇ ਨਾ ਕੰਜਰਾ ਨਾ ਸੋਣ

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेती बाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित।
2: 60 साल की उम्र वालों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त देके योजना में शामिल हो सकते हैं 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लिए जन सेवा केंद्र में जान
2: ते अपना नाम मुफ्त में दर्ज करा।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता की मेहनत में समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हों का मान किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित जारी।
3: नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद किसान वीरो आकाशवाणी दे उपर मैं हां तुहाडी अपनी जसप्रीत ते हाजिर हो गई हां जी तुहाडा अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेके किसान वाणी ते बिल्कुल जी किसान वाणी दे विच असीं तुहानू जानकारी दिंदे हां नवीं खेती तकनीकां दे बारे खेती खबरां सुणाउंदे हां ते नाल नाल खेती संदेश भी पढ़ के सुणाउंदे हां ते उम्मीद है कि अज दा साडा प्रोग्राम जिहड़ा ओह भी तुहाडे लई जरूर लाहेवंद होवेगा ते लो जी प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इस खूबसूरत जे गीत दे नाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक

20 अगस्त को देशभर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश

आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जयकुमार अंशा बाबू मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
4: नमस्कार।
3: और जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बार बार कहते हैं कि भाई आप खेती बाड़ी के साथ साथ और बहुत सारे काम हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़े और लागत है वो कम आए। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों हमारे भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों से पुरानी परंपरा है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है।
4: आज हम बात करेंगे खेती के साथ साथ उस काम की भी जो लाखों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है, पशुपालन और डेयरी। जरा सोचिए, सुबह का समय है, पशुपालकों ने दूध दुहा और दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर कलेक्शन सेंटर की ओर चल पड़े। लेकिन असल में शशि, दूध की असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि दूध की क्वालिटी, उसकी टेस्टिंग, समय पर चिलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर मार्केट तक उसकी पहुँच, इन सभी कड़ियों का मजबूत होना डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा कोमल आपने, और इसीलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में हम अपने किसान बहन भाइयों को बताएं तो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
4: सबसे पहले बात करते हैं हम दूध के संग्रह की, यानी

मिल्क के कलेक्शन की। तो जब आप दूध को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसकी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो उसके बाद उसकी चिलिंग जो है वो बेहद अहम कड़ी मानी जाती है।

0: सुधार करना और साथ ही संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
1: सबसे पहले बात करते हैं हम दूध के संग्रह की, यानी कि मिल्क के कलेक्शन की। तो जब आप दूध को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसकी साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो उसके बाद उसकी चिलिंग जो है वो बेहद अहम कड़ी मानी जाती है। एनपीडीडी एक ऐसी योजना है, ये सहकारी संस्थाओं, मिल्क यूनियन, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज, एफपीओ और अन्य पात्र संस्थाओं के माध्यम से डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ होता है।
0: बिल्कुल, और प्रमुख उद्देश्य की हम बात करें इस योजना के, तो वो है दुग्ध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, शीत श्रृंखला और परीक्षण सुविधाओं का निर्माण और मजबूती करना, और साथ ही देश भर में नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन और साथ ही उनका विस्तार करना है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को एक ऐसी व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है जिसमें पशुपालक का दूध केवल गांव की सीमा तक ना रहे बल्कि एक संगठित डेयरी वैल्यू चेन का हिस्सा बन सके। तो आज की बात को बस एक पंक्ति में याद रखिए साथियों, दूध की असली ताकत सिर्फ उसकी मात्रा में नहीं, उसकी क्वालिटी और उसकी पूरी डेयरी जर्नी को मजबूत बनाने में है। और जब ये कलेक्शन से लेकर मार्केट तक की कड़ियां मजबूत होंगी तो उनसे जुड़े पशुपालकों के लिए भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक्सेस और डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने के अवसर भी मजबूत होंगे।
0: तो कोमल, ये तो बात रही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की, और हमारे वो किसान बहन भाई बागात है जिनकी, और फलों की तुड़ाई हो चुकी है, और उसके बाद कुछ ऐसे समसमय कार्य होते हैं जिनको करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो अगली फसल है उनको अच्छी मिले, उसका दाम भी अच्छा मिले। तो फलों की तुड़ाई के बाद वो अपने बाग का प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चवलेश कुमार, आप वैज्ञानिक है, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब फल बाग से निकल करके बाहर चले गए हैं मार्केट की तरफ, तो उसके बाद भी आपको अपने बागों का प्रबंधन बनाए रखना है।
2: जी, जैसे यह मानवीय प्रवृत्ति है कि हम एक बार फल तोड़ते हैं तो अपने बागों को, अपने खेतों को थोड़ी देर के लिए हम अनदेखा कर देते हैं जब तक नई फसल ना आए। मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहता हूं कि जितना हमने फूल आने से लेकर फल लगने और फल लगने के बाद उसके तुड़ाई में जितना हमने देखरेख किया है, उतना ही देखरेख हमें फल की तुड़ाई के बाद भी अपने बागों की करनी है, क्योंकि यह समय होता है अपने बाग को अगली फसल के लिए तैयार करने का। और यदि हम इसमें अनदेखा करेंगे तो हम अगला जो फसल है शायद जो पिछली फसल है उसकी तुलना में हम कम ले पाए। इसलिए फल उत्पादन या फल की तुड़ाई के बाद भी हमें बागों का बहुत ही अच्छा प्रबंधन करना है। और इसमें बहुत सारी फसलें हैं हमारे, जैसे उत्तरी भारत, तो जैसे आम, आम हमारी प्रमुख फसल है जिसकी तुड़ाई हो चुकी है, हमने लगभग जुलाई तक अपने आम को तोड़े हुए हैं। अब हमारी जो बाग है या आम के पेड़ है वो अगली फसल के लिए तैयार हो रही है। तो मैं किसान भाइयों को यही बतलाना चाहता हूँ कि ये समय है कि अपने पेड़ों को, अपने फल के पेड़ों को, और या समुचित रूप में बोलूं तो ये बागों को हमें ऐसा बनाना है कि ये टिकाऊ उत्पादन करे या एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन करे, जिसमें दोनों चीजों, एक तो बोलते हैं उपज और दूसरी है गुणवत्ता। जिन किसान भाइयों ने अभी तक न्यूट्रिशन, जो हम बोलते हैं खाद नहीं डाला है अपने खेतों में, तो वो खाद की एक समुचित मात्रा जरूर उपयोग करें, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आजकल केचुए की खाद का भी उपयोग बढ़ा है, तो जैसे भी आपकी उपलब्धता हो आप 15 से 20 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें। और साथ ही साथ कुछ जैसे फर्टिलाइजर बोलते हैं कि जो इमीडिएट रूप में पौधों को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए एक निर्धारित मात्रा, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं पेड़ों के लिए 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये जो नत्रजन है, फास्फोरस है और पोटास की मात्रा है, इसमें हम एज वाइज बढ़ाते हैं और ये 10 साल में जाके एक फिक्स हो जाता है, जो बोलते हैं कि 1 किलो नत्रजन, 1 किलो पोटास और 500 ग्राम फास्फोरस के रूप में ये फिक्स होता है। तो 10 साल के बाद हम उसी को उस रेट से नहीं बढ़ाते और 10 साल के ऊपर जो पौधा है उसमें ये फिक्स मात्रा में हम डालते हैं। और इसके डालने की यह विधि की पहले पौधे की कैनोपी को अच्छे से देख लें और जितने भी हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, उसको डालते समय ये ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हमें तने पे खादों का उपयोग नहीं करना है, तनों से समुचित एक दूरी बना ले। जैसे अपने एक पैर का एक उदाहरण बताता हूँ कि वहां पे हम स्केल नहीं ले जा सकते, तो अपने पैर को रखें जहां हमारा उंगली हो और लास्ट टो हो, तो वहां से आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि तने पे हम

0: खाद या फर्टिलाइजर का उपयोग करें और हल्की खुदाई करके उस खाद को और उर्वरक को आप उपयोग करें। और ख्याल रखें कि जैसे बारिश का सीजन है तो बारिश ठीक है, लेकिन जैसे ही हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी का उपयोग जरूर करें। जैसे हमने खाद दिया और उर्वरक दिया, उसके बाद पानी जरूर डालें पौधों में।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बागों का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे किसान जो है आने वाली फसल के लिए तैयारी कर सकें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि बाग में सूखी शाखाएं पड़ी होती हैं, रोगग्रस्त प्लांट जो है उनके भी पार्ट्स कई बार बाग में ही रह जाते हैं, तो तुड़ाई के बाद जो बगीचे की साफ सफाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी है?
0: यह बहुत ही नितांत आवश्यक है। जैसे

0: कीड़ों को बुलाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को बुलाते हैं। यदि
1: जी
0: हम उसको वैसे ही छोड़ दें, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आम में, अमरूद में बहुत सारे फ्रूट फ्लाई होते हैं, यदि हम वैसे छोड़ दें तो उसमें जो कीड़ों की संख्या पनपने लगेगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, जब भी आप बिना देरी किए हुए जितने भी आपके फल सड़े हुए रहे होंगे या जो गिर गए होंगे, उनको आप तुरंत ही, जैसे कोई फल गिर गया हो जो आपके बाजार के लिए, आपके खाने के लिए उपयोगी ना हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कीड़े हैं या बीमारियां हैं, उसको आप तुरंत ही बागों से हटाए और एक दूरी पे ले जाकर या तो बड़ा गड्ढा तैयार करें और उस तैयार गड्ढे में उसको

0: बिल्कुल ले जाके आप मिट्टी में दबाना शुरू कर दें, और ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी करना है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात रखी कि टहनियां जिसमें बीमारियों का अंदेशा होता है या जिसमें कीड़े हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि ये शाखाएं अच्छे नहीं चल रही हैं, तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आपको लग रहा है कि सूखी डालियां हैं या आपको लग रहा है कि ये टहनी अच्छे से बढ़ नहीं रही है, उसके पत्ते अच्छे हरे नहीं है, तो वैसे टहनियों को आप एक नियमित लेंथ पे कट करें, जहां से वो हेल्दी ना लगे उस पूरे ब्रांच को आप कट कीजिए। काटने के बाद उसमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके फफूंद नाशक दवाई है, उस दवाई को एक पेस्ट, जैसे हम सिंपल तरीके से हम बोलते हैं कि पहले हमारे पास एक पेस्ट आता था, उसको पाउडर फॉर्म में होता, तो हम जैसे उसको पेस्ट बना के ब्रश करते थे, वैसे उसको पेस्ट बनाना है और उसको ब्रश में लगा के उस कटे हुए भाग में पूरी तरह लेप लगाना है। इससे
1: जी
0: क्या होगा, कोई भी फंगस है उसका फिर से उस पर प्रकोप नहीं आएगा। और किसान भाइयों को मैं इसी के साथ ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी टहनियां जो जमीन से लग रही हो, दूसरी है कि ऐसी शाखाएं जो छाया दे रही हो, वैसे टहनियों को आप जल्द से जल्द निकाल दें। और जब भी आप ऐसे टहनियों को निकालते हैं, काटते हैं, तो उस जगह पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नमक फफूंद नाशक का जरूर उपयोग करें, ये संक्रमण को रोकता है, वहां से कोई भी संक्रमण को आने नहीं देगा।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे बाग में से तुड़ाई किसानों ने कर ली, बागवानों ने कर ली, और उसके बाद आता है एक प्रूनिंग का समय, वो कितनी जरूरी है और कैसे वो प्रूनिंग करनी चाहिए कि कहीं बहुत ज्यादा प्रूनिंग ना हो जाए जिससे कि हमारे बागों को नुकसान पहुंचे, पेड़ों को नुकसान पहुंचे, और फल की तुड़ाई के बाद जो प्रूनिंग है वो किस वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिए और किन शाखाओं को हटाना जो है वो

0: यदि हम ट्रेन अच्छा नहीं करेंगे पौधों को, तो उनकी बढ़वार किसी भी दिशा में जा सकती है। उनका आकार, उनका फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि वह फलों के भार को सहन कर पाए।
1: जी
0: तो इसमें क्या होता है कि यदि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो आपका जो रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट का जो एक स्पेस देते हैं, वो मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, वो कोई भी दिशा में चलेगा जिसमें मशीनीकरण, आजकल ट्रैक्टर चलाना है और बहुत सारे मशीनीकरण का उपयोग करते हैं अपने बागों में, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग हम इनिशियल ईयर में करते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो सभी चारों दिशाओं में शाखाओं को बढ़ाना, 1 मीटर की दूरी पे पेड़ को कट करना ताकि सभी शाखाएं चारों दिशा में अच्छे से फैल जाए, तो ये ट्रेनिंग का आधार है। दूसरा जो हमारा विषय है प्रूनिंग, प्रूनिंग हमें पौधों की प्रजाति या फसल के आधार पे निर्धारित करता है। जैसे आम है, आम में बहुत ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं में जो फूल लगते हैं, वो पुराने शाखाओं में, हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली मैच्योर शाखाओं में आते हैं, जिसके लिए 8 से 9 महीने की मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। तो आम में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं है। प्रूनिंग उन शाखाओं को करनी है जो छाया दे रही हो। तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि उन शाखाओं को निकालें जो एक दूसरे के ऊपर आके वहां छाया उत्पन्न कर रही हो। कि ऐसे शाखाओं को निकालना है जो वो अंधकार सा बना रहा हो, उसको हटाना है ताकि वहां पूरी तरह अच्छे से जो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है। इससे हम इन चीजों से निजात पाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना। और दूसरी कि जो नीचे जमीन से लगी हुई शाखाएं, उनको भी बिल्कुल निकालना, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। उसको नहीं निकालेंगे तो आप खाद पानी और जो भी चीजें करना है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि नीचे की शाखाएं क्या होती है, जमीन से लगती है, तो क्या होगा कि उसमें फल भी आ जाएंगे।

0: तो वो अच्छे मार्केट प्राइस या खाने उपयुक्त नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि नीचे की शाखाओं को बिल्कुल निकालें। एक हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि वाटर शक्कर, तो वाटर सकर्स क्या है, कई बार क्या होता है कि मूल वृंत रूट स्टॉक जो यूज करते हैं उसके नीचे से बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती है। किसान भाई क्या सोचते हैं, अरे इसमें बहुत अच्छा बढ़वार है, इसको रखना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल उसको काट दीजिए, नहीं तो आपकी जो मुख्य शान स्टिक है, जो ऊपरी भाग है, वो आपका प्रोडक्टिव नहीं रहेगा और यही जो वाटर सकर्स है वो बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छी फसल नहीं मिलेंगी।
1: और पूरे मौसम में हम ये देखते हैं कि पेड़ ने मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व लिए होते हैं, ऐसे में हार्वेस्ट करने के बाद पोषक तत्व मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब। तो तुड़ाई के बाद सॉइल टेस्टिंग किसान को या बागवानों को किस तरह की जानकारी देती है, फर्टिलाइजर या उसमें जो बाकी के पोषक तत्व हैं वो किस तरीके की या कितनी मात्रा में डालने चाहिए, ये कैसे आधार तय हो पाता है, बेहतर रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में कुछ बताएं।
0: जी, पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं बात करूं कि अमरूद की या आम की, नींबू की, सभी फसल को एक उपयुक्त अनुपात में पोषण चाहिए। जैसे हम अपने लिए बोलते हैं कि पोषित फल खाना है, हमें वो अनाज खाना है जिसमें पोषण हो, तो उसी प्रकार हर फल के पौधे को पोषण की आवश्यकता है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो जो आज हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। किसान भाई अपने बागों में आपने अनुभव किया होगा कि कई किसान क्या होते हैं कि फसल लेते जाते लेकिन एक समय आता है जैसे 4 से 5 साल के बाद वो हमारे पास शिकायतें लेके आते हैं कि जी मेरा अमरूद था बहुत अच्छा फसल दे रहा था लेकिन आज नहीं दे रहा है, आम के बाग बहुत अच्छा फसल देता था लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त पोषण उसमें से कम उपज है, कम गुणवत्ता वाले फल है, उसका कारण ये हो सकता है। इसलिए हमें पोषण का उपयुक्त अनुपात में हर समय या हर सीजन में हमें उपयोग करना जरूरी है। जैसे आपने बोला कि हम कैसे जाएं, कैसे पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करें, तो पहला तो होता है कि जब भी हम बाग लगाते हैं तो अपने जमीन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करवाइए, उसका क्या पीएच होगा, क्या आपका पानी सही है, क्या आपका जमीन सही है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, तो इसकी प्रोफाइलिंग तो हम बाग लगाने से पहले करते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि हर साल हमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशन अपने बागों में लगाना जरूरी है, देना जरूरी है। जब भी हम फल लेते हैं तो उसमें जो हमारे बाग हैं या पेड़ हैं, इन न्यूट्रिशन को, इन पोषण को उपयोग करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हम बोलते हैं कि हम फल तोड़ रहे हैं तो उसके रूप में वो न्यूट्रिशन जाता है। तो उनकी भरपाई करने के लिए जैसे सबसे अच्छा चीज तो है कि ठीक है आपका जमीन का प्रोफाइल आपके पास होता है, आपके पास रहता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को भी हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते कि ये सस्टेनेबल वे नहीं है, तो इसलिए हम मानते हैं कि जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग है, बीच बीच में हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप जैसे फसल नहीं है तो ग्रीन मैन्यूरिंग कीजिए, जैसे ढैचा लगाइए जो बीच में जो खाली जगह है उस और उसको लगभग 30 से 35 दिन में पलटवार कीजिए, तो उसके क्या है ये हरित खाद के रूप में आएगी। पहला चीज मूंग को भी लगाते हैं लोग, मूंग को भी हरित खाद के रूप में उपयोग कीजिए, ये क्या है कि ये नत्रजन फिक्स करने वाले हैं, तो इसे जो नत्रजन की मात्रा अच्छी होगी, और फिर जब आप पलटवार करते हैं तो उसमें काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट भी आते हैं, तो आप हरित खाद है इसका उपयोग जरूर करिए। तो ये बहुत सारा जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, तो इसके तौर पे हम या हमारी जो निर्भरता है गोबर की खाद या वर्मी पे उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है अपने बागों में पोषण देने का। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इन चीजों का आप उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि जिंक या बोरान की भी कमी होती है, जिंक और बोरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फलों में, खास करके जैसे अमरूद है तो बोरान होता है कि हम बोलते हैं कि फल फट रहे हैं तो बोरान का एक समुचित मात्रा होना चाहिए जमीन में, तो बोरान और जिंक की मात्रा भी बीच बीच में उपयोग कर सकते।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो साथियों वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें भी सही पोषक तत्व जो है वो सही समय पर मिलते रहें। और सिंचाई और ड्रेनेज की बात करें तो डॉक्टर साहब बाग में हम कई बार देखते हैं कि पानी की कमी की समस्या भी होती है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी हो जाती है। तो डॉक्टर चवलेश हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुड़ाई के बाद इरीगेशन और ड्रेनेज मैनेजमेंट में जो है हमारे बागवानों को क्या ख्याल रखना चाहिए।
0: मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बारिश का सीजन होता है, जैसे अभी हमने देखा कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश हुई, तो उस समय क्या है पानी का भराव ना होने दे, उनको जितना जल्दी हो सके अपने बागों से ड्रेन करके निकालना है, बिल्कुल खड़े नहीं होने देना है सादे शब्दों में। दूसरा चीज है पानी की आवश्यकता, तो इस

0: ये क्या रोग है या क्या कीट है, तो आप अपने निकटस्थ जितने भी केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके जितने भी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह लेके एक उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक हो चाहे रोगनाशक हो उनका उपयोग करना है, ना हमें कम और ना ही ज्यादा।
1: तो हमारे जितने भी किसान मित्र या बागबान हमें सुन रहे हैं, उनसे हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि फलों की तुड़ाई के बाद अपने बागों में प्रबंधन करें, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो भी हैं, जो समसामयिक कार्य, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, बगीचे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चवलेश, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब कोमल अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास मौसम साफ रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: तो ये तो बात थी मौसम की, लेकिन इसके साथ साथ अपने किसान मित्रों को ये भी बता देते हैं शशि कि वो इस समय अपनी खेती में कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये धान की फसल की रोपाई और किस्म के अनुसार बाली निकलने और दाना बनने की अवस्था है, और ये जो चरण है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस समय में पानी की कमी होने के कारण से जो दाने हैं वो ठीक प्रकार से भर नहीं पाते, तो इसकी वजह से बालियों में दाने की संख्या और आकार दोनों घट जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों।
0: इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस समय कपास की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इनमें मीली बग, जैसेड माहू, सफेद मक्खी, रेड कॉटन बग, हरा तेला, भूरी सुंडी और बालों वाली सुंडी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों और तनों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और फल धारण क्षमता घट जाती है। रेड कॉट भाइयों, आपको इंतजार होगा आजादपुर मंडी के बाजार भाव का। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के भाव की।
1: सब्जियों की बात करें तो आलू 13 रुपए प्रति किलो, प्याज 32, टमाटर का भाव रहा 24 रुपए प्रति किलो, वहीं बैंगन 29 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 21 रुपए प्रति किलो, खीरा 24 रुपए प्रति किलो, घिया 11 रुपए प्रति किलो, भिंडी 20 रुपए प्रति किलो।
0: और अब बात करें फल के भाव की, तो सेब बिका 102 रुपए प्रति किलोग्राम, केला 19 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 70 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता 23 रुपए प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये आजादपुर मंडी का बाजार भाव। और अब कोमल समय हो चुका है अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि उनको आज का कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
1: feedback@gmail.com।
0: इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। किसान बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
2: हरिजन।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। मैं हूँ दीप्ति और गजल की महफिल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम, आपको सुनवाएंगे बेहतरीन गजलें।

वो कहते हैं ना जनाब कि वो अच्छे हैं तो बेहतर है, बुरे हैं तो भी कबूल हैं। वो अच्छे हैं तो बेहतर है, बुरे हैं तो भी कबूल हैं। मिजाज़ी इश्क में ऐब हुनर देखे नहीं जाते।

गजल अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की पुरसुकून आवाज में, और एक बार फिर इसी खूबसूरत आवाज को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं और साथ में कर रहे हैं ये इल्तिजाम।

तो बस इसी चाहत के साथ, इसी कल फिर मिलने की चाहत के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, सीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानक सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 10,870 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पालना केंद्रों से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सम्मान पहल में शामिल किया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनें बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाने, टीकाकरण में सहयोग और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर और स्थायी भवनों में विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण और उन्हें

0: बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: आने वाले 2 साल में हमारी जितनी आंगनवाड़ी है वो हमारी पक्की खुद की बिल्डिंगों में होगी। पहले चरण में हमारे जितने स्कूल थे नगर निगम के, हमने अपनी आंगनवाड़ी को वहाँ शिफ्ट करना शुरू, बाकी की आंगनवाड़ियों को भी हम इसी तरीके से बेहतर जगह पे, नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो नई कंस्ट्रक्शन करेंगे और हर सुविधा को देंगे।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरपुर में लगभग 5000 गज भूमि पर 12वीं तक के नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में निरोग धाम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के AU ब्लॉक और AO ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की

0: कहना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें नागरिकों के करीब लाया जाए ताकि उन्हें समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक सुधार से अलग नहीं हो सकती। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी, डॉ बीआर अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार तेजा सिंह समुद्री ने अपने अपने तरीके से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत के आह्वान को दोहराया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 31 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 के 1,14,073, फॉर्म 6A के 216, फॉर्म 7 के 1,960 और फॉर्म 8 के 41,897 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए बताया गया है कि सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान ने बताया कि लगभग 90% दवाएं उपलब्ध हैं और स्टॉक की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट में संस्थान में दवाओं की उपलब्धता की पूरी और वर्तमान स्थिति को सही तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार DSCI के साथ ही राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज उत्तरी क्षेत्र स्थित राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने, बिजली के लटकते तार ठीक करने और पेड़ों की छंटाई के निर्देश दिये। साथ ही अस्पताल के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर दवाइयों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा सफाई, प्रकाश और सड़क की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: ICU में हार्ट बेडेड है, इसको 18 किया जाने का प्रावधान। इसके साथ साथ जो एक रेजिडेंस ब्लॉक है वहाँ पे एक 200 से अधिक बेड का नया एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें इसकी हमारे पेशेंट को और सुविधाएं मिलेगी, आसपास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को।
1: श्री वाही ने लेबर रूम, बाल चिकित्सा, आपातकालीन ब्लॉक और अन्य वार्ड का भी निरीक्षण कर उनके उन्नयन और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि हिंदूराव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मरीजों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली गेट स्थित बाल भवन में नया रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निगम ने बताया कि केंद्र पर जरूरतमंद लोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और बर्तन एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कचरे को कम करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन और राजधानी

0: को कचरा मुक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों द्वारा कचरे को स्रोत पर ही शत प्रतिशत अलग करने, वार्ड स्तर पर प्रोसेसिंग करने और नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया गया। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत आज सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उपमहापौर डॉ मोनिका पंत ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी केवल एक अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए जन भागीदारी से जुड़ा संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 पर प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी अगले दिन सवेरे 4:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्व संचार हिंदुत्व का नाम की किताब जारी करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित विषयों पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। उन्होंने नई अर्थव्यवस्था के 3C यानी कम्प्यूट, कम्पेटेबिलिटी और कोलेबोरेशन का उल्लेख किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, इंजीनियर, विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी कंपनियां देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके वास्तविक मूल्य का खुफिया जानकारी, विश्लेषण, मिशन योजना, रसद, युद्धाभ्यास और निर्णय समर्थन में इसके उपयोग से पता चलता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी और कांस्य पदक विजेता भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सांडा 60 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रोशिबीना देवी के लगातार प्रदर्शन, साहस और जुझारूपन की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपका फेवरेट प्रोग्राम गीतमाली का लेकर हम हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
4: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
5: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
4: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
5: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
4: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
5: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: सलाम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। और आज फिर एक बार हाजिर हूँ मैं गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर। मैं यानी आपकी साथी, आपकी मित्वा, आपकी दोस्त, आपकी अपनी दीप्ति, और हाजिर हूँ लेकर के आपको सुनवाने वाले बहुत खूबसूरत गीतों की एक प्यारी सी माला पिरोकर साथ में करेंगे कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें, कुछ कहेंगे अपनी, कुछ सुनेंगे आपकी, और शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को इस खूबसूरत से गीत के संग जिसको आवाज तो दी है अलका याग्निक साहिबा ने, लेकिन पर्दे पर खूबसूरत अदाकारी की है ऐश्वर्या राय ने। तो स्वीकार कीजिए मेरा

तो लीजिए जी, हमारा सलाम भी आप तक पहुंच गया और आपका हमने प्रोग्राम में वेलकम भी कर लिया। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या इस गाने को सुनकर कुछ हुआ दिल में? भाई मुझे तो इस खूबसूरत से कॉम्बिनेशन को, जो कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का है, ये कॉम्बिनेशन पर्दे पर देख करके वाकई कुछ कुछ हुआ। खैर, जब हमने ये गीत सुना तो साथ में मेरे दिमाग में एक और बात आई कि देखिए ना, मोहब्बत पे चल पड़ने का कितना आसान सा तरीका है ना, पहले सलाम कर दो फिर आगे की देखी जाएगी। उसी ही तरीके से जब मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़ो तो पहला एहसास क्या आता है मन में? पहला एहसास जो कि आपको मोहब्बत का फील करवाता है, वो शायद यही तो होता है कि कुछ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है।

0: अगिनत मालिका कार्यक्रम में एक बार फिर समय इस छोटे से संदेश का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, आपकी अपनी दोस्त दीप्ति पाठक के संग।

बातें कर रहे हैं हम मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, और कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं उसमें। कब लगता है कि कुछ कहा जाए, कभी लगता है कुछ कह नहीं सकते, कभी लगता है मिल गए या कभी लगता है बस मिलना ही तो बाकी है। तो देखिए उसी कुछ कुछ वाली फीलिंग को हम और आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको कुमार सानू साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

आशिकी फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने सुना कुमार सानू साहब की आवाज में, और एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं हम मोहब्बत के सफर में। तो जब आगे ही चलना है, आगे बढ़ना ही है, तो चलिए सुन लेते हैं कि ये जो दिल है ये क्या कह रहा है।

और दोस्तों प्यार की खूबसूरती भी शायद इसी में होती है कि इसी किसी खास वजह की ना जरूरत ही नहीं होती। कभी किसी की एक मुस्कान दिल को अपना सा एहसास दे जाती है और कभी किसी की सिर्फ मौजूदगी ही पूरी दुनिया पूरी कायनात सी लगती है। ये भी सच है कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनका बस साथ होना करीब होना ही काफी होता है। और जब कोई दिल के इतने करीब हो जाए तो फिर उसकी याद भी साथ साथ चली पड़ती है हर पल हर घड़ी। तो बस इसी एहसास को इसी खूबसूरत एहसास को अपने दिल में अपने दिमाग में सदा जवान रखिए। इसी खूबसूरत एहसास को इस गीत में फिर से जी लीजिए।

फील होगी। उनकी एक बात, उनका एक जिक्र चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, और जिक्र होते ही जाने क्यों दुनिया बहुत खूबसूरत सी लगने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन प्यार क्या सिर्फ किसी को चाहने का नाम है? ये प्यार सिर्फ किसी को चाहने का नाम तो नहीं? और कभी कभी मन में ये सवाल भी तो उठता है कि जिसे हमने अपनी दुनिया में इतनी खास जगह दे रखी है, तो उसकी दुनिया में भी हम उतने ही खास हैं? इसी सवाल, इसी खूबसूरत कश्मकश को सोचते सोचते, उस खूबसूरत इंसान को याद करते करते, दिल में और भी बहुत से खूबसूरत जज्बात हैं जो उठते हैं। तो चलिए देते हैं उन्हीं जज्बातों को आवाज इस गीत के जरिए।

दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में कुछ ऐसे शामिल हो जाते हैं कि जिनका साथ किसी भी खास मौके, किसी खास बात की पहचान का इंतजार नहीं करता। वो दूर हो तो भी उनकी मौजूदगी आपको आसपास

काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है कि कभी कभी ना किसी के आने भर से जिंदगी का रंग रूप ही बदल जाता है। जो बातें कल तक अधूरी सी होती थीं, अधूरी सी लगती थीं, उनमें एक खास चमक नजर आने लगती है। वो कहते हैं ना, किस्मत कब किस मोड़ पर कोई खूबसूरत कहानी लिखते किसे पता। वैसे एक मुलाकात होती है और लगता है जैसे बरसों से यही तो अपना था। हाँ, मन में ये सवाल भी आता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ऊपर वाले की कोई खास मेहरबानी हो गई है। और शायद कुछ मुलाकातों का मतलब वक्त बीतने के साथ साथ समझ में आता है। जब किस्मत सचमुच मुस्कुरा दे तो उसका जिक्र भी कुछ खास हो जाता है। ऐसा लगता है कोई आसमान पर चमकता हुआ सा सितारा था जो दिखाई दिया और हमारा हो गया।

देता है। एक मुलाकात होती है और लगता है कि अच्छा जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी। चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी ज्यादा रहने लगती है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ज्यादा मिलने लगती हैं, कल की फिक्र थोड़ी कम और आने वाले कल से उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और शायद यही तो है प्यार की शरारत, जिंदगी वही रहती है, नजरिए में रंग भर जाते हैं। और जब साथ सही हो तो सफर भी खूबसूरत और मंजिल का इंतजार भी। तो इसी इंतजार को, इसी सफर को बनाए रखते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। और इसी मुस्कान, इसी उम्मीद और थोड़ी सी प्यार भरी मस्ती और शरारत के संग आज की रोलर कोस्टर राइड को गीत मालिका की हम यहीं पर रोकने की, थामने की इजाजत चाहेंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीप्ति, फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशू में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्केट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
3: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 70 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
3: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनके वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित मैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, मेहनत को राष्ट्रीय

0: श्रेष्ठ एआई कंडीशन उपेक्षित पशुपालन राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक। इस बात की अच्छी आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा चिन्हित जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने कल

0: छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसल कर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
2: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
4: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स का मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
3: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में ऋषि बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now, now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
6: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उन सभी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं. एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए. एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
5: Mr. Modi said, everyone must rigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
6: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
5: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
6: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे. शब्दों में नहीं देंगे. हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
5: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
7: Mission Karma Yogi was launched in September 2020 and envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGov platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses is on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karmayogi is to make the government officials citizen-centric.
6: मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए. इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है. हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसमें ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे. टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है.
7: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन Karmayogi was established with the vision of achieving the aspirational goals of Viksit Bharat 2047 in a timely and high quality manner.
8: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य है.
1: द एम्बिशियस गोल ऑफ विकसित भारत इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवर पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट इंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स. दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एवरी स्टेट एंड एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रॉम ग्रास रूट्स वर्कर्स टू सीनियर सेक्रेटरीज एंड पॉलिसी मेकर्स. कैपेसिटी बिल्डिंग इज नीडेड अक्रॉस द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की. विद दिस विजन मिशन कर्मयोगी वॉज established 5 years ago.
7: All central government employees and officers of the All India Services are required to complete prescribed courses on iGOT annually, which get captured in their annual performance appraisal reports. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news.
1: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: Welcome back to Evening News on Akashwani. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said that development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Secretary West C.B. George participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Mr. George emphasized India's human-centric and inclusive path of development anchored in the principles of Sarvodaya. Citing India's development partnership initiatives, Secretary West emphasized India's position that development is not merely the provision of financing, but about building domestic capabilities and strengthening resilience. Heavy to very heavy rain continues in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. A report.
9: The deep depression has affected 6 districts, Koraput, Gajapati, Malkangiri, Ganjam, Nabarangpur and Raigada, with 273 villages reporting impacts. The state government has said 8,082 people have been shifted to safer locations. Malkangiri has reported water flowing over roads and bridges. In Ganjam, a large rock fell on NH-16 at Badaghati, affecting traffic between Bhubaneswar and Barhampur. The government has activated round-the-clock control rooms, deployed Odisha Disaster Rapid Action Force, NDRF and fire services teams and arranged relief supplies. Schools and Anganwadi centers in Gajapati, Nabarangpur and Kalahandi will remain closed tomorrow as a precaution. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
5: The India Meteorological Department or IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbha tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahi and Telangana tomorrow. On to sports. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4 into 400 meter relay race at Nagoya today. The quartet of Povamma Raju, Vishal Tenarasu, Vitya Ramiraj and Manu T.S. timed the run at 3 minutes 14.46 seconds to defend India's silver medal won in the last edition of the Games in Hangzhou. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000 meter race after finishing a third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000 meter event

और अब ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार, जिसके तहत आज आप सुनेंगे बेगम अख्तर की आवाज में मिर्जा रफीज सौदा, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और सुदर्शन फाकिर की लिखी हुई गजलें। रात 9:45 पर खबरें नशर होंगी और 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत कमर के दर्द और कमर की हड्डी से मुतालिक कुछ जरूरी बातें डॉक्टर रविन्द्र से। रात 10:00 नशर होगा प्रोग्राम मार्केट मंत्रा और 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तामील इरशाद। इसी प्रोग्राम के दौरान रात 11:00 खबरें बर सगीर से नशर होंगी। रात 11:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बज़्म मौसीकी के तहत गुलाम तकी खान की आवाज में राग में एक वल्हार में ख्याल। रात 12:00 आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत विदुषी शरण रानी का सरोद पर बजा हुआ राग तीन तोड़ी। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1:00 आज की उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

अभी आपने सुनी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा और मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की लिखी हुई गज़लें, आइए सुनते हैं नवाब मुस्तफ़ा शेफ़ता और सुदर्शन फ़ाख़िर की लिखी हुई गज़लें।

कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम शौर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मोहरिक है और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफे आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ये खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं। हुकूमत ने खुरदनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी बड़े खुरदनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी बीसीडी में कटौती की है। इस कदम से खुरदनी तेल की बैन अलाक्वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सारिफिन की उमूर खुराक और आवाम निजाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूर्यमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 0, जबकि सोयाबीन के खाम तेल और खाम पाम तेल पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वजारत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिफाइंड खुरदनी तेल पर आयद होने वाली बीसीडी में कटौती की है, साथ ही साथ खाम तेल और रिफाइंड खुरदनी तेलों के दरमियान इम्पोर्ट ड्यूटी के फर्क को 19.25% बरकरार रखा है। वजारत ने मजीद बताया कि खुरदनी तेलों की बीसीडी पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुरदनी तेल की अंजुमनों और सनअती शराकत दारों को एडवाइजरी जारी की है ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदों के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। शमाली साहली आंध्र प्रदेश और मुत्तसला जनूबी ओडिशा में बने हवा के गहरे दबाव की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से सड़कों पर आमद और रफ्त मुतासिर रही। इस दौरान रियासती हुकूमत ने राहत और इनखला से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं कल और हफ्ते के रोज भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालयी मकरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने कल दिल्ली में मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इशारे में 1.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा प्वाइंट्स की गिरावट आई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेडिकल साइंस इम्तिहानात के कौमी बोर्ड NBEMS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 2026-27 तालीमी सेशन के लिए बराह रास्त 6 साल कोर्सेज MD, MS, DNB, DRNB और PG मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए ये इम्तिहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनाकिद कराए गए थे। NBEMS ने कहा है कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इन्फरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली UNGA के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बारबुदा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउनी के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम में ताउन जारी रहे।
उन्होंने दौलत मुश्तक

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिस्ट्रीज स्लंप. Sensex stumbles over 1200 points, Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में गिरावट. सेंसेक्स 1,200 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,063 के स्तर पर बंद हुआ. सरकार ने बताया कि देश में मोबाइल फोन की घरेलू मांग का 99% से अधिक का उत्पादन भारत में हो रहा है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 384 अंक लुढ़ककर 23,063 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी दबाव देखने को मिला. मिड कैप 100 सूचकांक 2.3% फिसला जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. सत्र की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बैंकिंग तथा बीमा शेयरों में बिकवाली के दबाव ने बाजार को प्रभावित किया. सेंसेक्स और निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र के दौरान दबाव में रहे और कारोबार के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस स्लम्प्ड ओवर 1.6% टुडे. सेंसेक्स टैंक्ड 1028 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,581. निफ्टी प्लंज 384 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,063. इन द ब्रॉडर मार्केट एट द एनएससी द मिड कैप 100 इंडेक्स शेड 2.3% व्हाइल द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लॉस्ट ओवर 1.5%. दिस मॉर्निंग मार्केट्स ओपन विद अ गैप डाउन एज स्पाइक इन बॉन्ड यील्ड्स, elevated crude oil prices and a sell-off in banking and insurance stocks weighed on the indices. Sensex and Nifty remained under pressure throughout the session, with a sell-off intensifying during the second half of the trade.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 29 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई लेकिन एनटीपीसी अपरिवर्तित रहा. प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस करीब 5.5%, एक्सिस बैंक 4.7% और बजाज फिनसर्व 4.1% नीचे बंद हुआ.
0: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, all 28 sectors edged downward. Among the top losers, mid-small private banks declined 2.8%, housing finance lost 2.6% and financial services shed more than 2.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,884 companies declined, 1,473 companies advanced and 216 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. उदयन, हम जिस तरीके से मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि पिछले लगभग कुछ महीनों से अगर मैं कहूं, तो हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड को लेकर के अभी कुछ दिनों से एक सतर्कता है मौजूद. कच्चे तेल के दाम कितने वॉलेटाइल हैं वो हम देख ही पा रहे हैं. लेकिन आज बीमा के शेयरों में जो एक उहापोह और उथल पुथल देखने को नजर आया, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके से इसने मार्केट की गिरावट में जो 1.5% आज मार्केट गिरा उसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है?
2: जो बीमा क्षेत्र ने काफी कॉन्ट्रीब्यूट योगदान रहा और उसका कारण यह है कि ये सिर्फ बीमा क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये बैंकों से भी जुड़ा हुआ है.
1: जी.
2: तो
1: दबाव उन स्टॉक्स पे भी हमने
2: बिल्कुल हुआ है, जो आपने कुछ बैंकों के नाम लिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए, वो सीधा जुड़ा हुआ है। तो घटनाक्रम ऐसी रही कि IRDA जो आपकी बीमा क्षेत्र में रेगुलेटर है, जो मैनेज करते हैं, रेगुलेशन रेगुलेट करते हैं, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला जो कि बीमा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो वितरण होता है, उससे जुड़े वहां पे कमीशन मिलता है, वहां पे फीस होती हैं, तो उससे जुड़ी हुई कई बातें जो हैं उसमें अभी तो वो नियम बने नहीं है, पर उसमें उनकी मंशा, उनकी सोच सामने आ रही है। और ये एकदम से नहीं आया, इसके बारे में काफी संकेत मिल रहे थे और ये डिस्कशन पेपर आ गया, क्योंकि ये सरकार और रेगुलेटर की मंशा है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इस तरफ ये जा रहा है। और ये अभी जिस तरीके से बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस को किया जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुनाफा जनरेट किया जाता था, उसके उसमें एक भारी बदलाव के संकेत है। उसके वजह से आपके जो जितने भी कंपनीज, जो बीमा क्षेत्र की कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, स्वास्थ्य इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, और वो बैंक जो वहां देखिए, बीमा का जो वितरण होता है वो दो तरीके से, एक तो एजेंटों के थ्रू से होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया होते हैं, उनके थ्रू से होते हैं, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट ब्रोकिंग, और तीसरा होता है बैंक के थ्रू से जाता है। तो ये तीन पाइप्स हैं जिनके थ्रू से आम जनता या जो भी उपभोक्ता है उसके पास पहुंचती है। ये तीनों में असर है, ये जो डिस्कशन पेपर है वहां पर तीनों में असर है। और आप अगर बेचते हैं उसमें, उसके एवज में आपको जो कमीशन मिला करता है, तो उसमें कमी के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आप कमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां उसको बेचती थी, जो इनको मैन्युफैक्चर कर, जो बीमा कंपनी इनको तैयार करके छोड़ते थे, क्योंकि अगर आपके बिचौलिया या ब्रोकर्स या एजेंट बेचेंगे तभी आप कमाएंगे
1: जी।
2: तो नंबर वन इनको फर्क पड़ा, बीमा कंपनी के जो कंपनी है वो उनको फर्क पड़ा, जो बीच में है उनको फर्क पड़ा, और जो बैंक है उनको फर्क पड़ा। तो अगर आप बीमा कंपनी और बैंक अगर लेते, बैंक खुद ही जो फाइनेंशियल सेक्टर में आप इंडेक्स में देख लीजिए, जबरदस्त उनका वेटेज है। तो ये दोनों मिला के ही, ये अगर ये तेल के दाम वाला जो सुर्खी जो है वो ना होता, ये खुद में ही काफी था। और उसके ऊपर तेल वाला हेडलाइन आ गया, जो उसकी खबर आएगी, जिसमें लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, और चारों तरफ विश्वभर में बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड में जो आपको मिलता है उसमें भी आ गया। तो उस वजह से आपने इतना जबरदस्त मार्केट में रिएक्शन देखा। तो ये बताता चलूं एक एक एक सेंटेंस और, कि बैंकों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बैंकों के लिए इंश्योरेंस जब वो बेचते हैं वो फी इनकम है। तो बैंकों के दो तरह की आय होते हैं, एक तो वो आप और हम जैसे लोगों से पैसे लेके, वो डिपॉजिट लेके फिर दूसरों को लोन देते हैं, तो वो फंड इनकम होता है, तो उसमें जो बीच में जो मार्जिन होता है उससे वो कमाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फी इनकम, वो इंश्योरेंस को बेचते हैं, उसके एवज में उनको एक परसेंटेज मिलता है, ब्रॉडली हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऐड करता था। अब अगर कोई आके कहता है कि आपका 15% या जो भी कमीशन था वो आपको नहीं मिलेगा, या आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा जो आपने जो इन्वेस्टमेंट में जो गणित आप बनाते हैं निवेश करने से पहले, एक बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी ब्रोकिंग कंपनी में, ऑनलाइन जो एग्रीगेटर्स हैं जो वो बेचते हैं, जो ऑनलाइन बेचते हैं, सब में ये फर्क पड़ जाता है। तो इसके वजह से आप देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो इस वजह से।
0: So basically, IRDA has recommended a cap on life insurance policy sales to the tune of 25%. Agencies making that commission fee, and the distributors being banks with the income has been hit. We have more on that story from my co-anchor.
1: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत बीमा वितरण के लिए तीन स्तरीय सरल व्यवस्था, खर्च की सीमाओं में कमी, कमीशन ढांचे में बदलाव और बीमा की गलत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। बीमा विनियामक ने बीमा वितरण की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव से संबंधित एक सार्वजनिक परामर्श पत्र जारी किया है। इसमें बीमा वितरण व्यवस्था, खर्च, कमीशन, बाजार आचरण, पारदर्शिता और डिजिटल बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के अंतर्गत बीमा कंपनियों और बड़े वितरण संस्थानों को अपनी कमीशन नीतियों और ढांचे की जानकारी सरल और आसान भाषा में देनी होगी। कुछ निर्धारित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसी

0: But I think this is more manageable, I would say.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 0.8% की गिरावट के साथ 1,50,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग 2% के नुकसान से 2,28,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई। उदयन, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices slump. Sensex stumbles over 1,200 points. Nifty settles at 23,063. The government says India is manufacturing over 99% of the country's total domestic demand for mobile phones. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामीर इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। हाजिर है इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद आप सबकी नजर लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। जब तक आप अपनी फरमाइश हमें लिख कर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस ESD@gmail.com के जरिए। लीजिए सुनिए पहली फरमाइश।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये नगमा फिल्म परवरिश से। इसके मौसीकार थे दत्ताराम वाटकर और नगमानिगार थे हसरत जयपुरी। सुना चाह था बिजेंद्र कुमार जयजान, कांति रानी, गुंजन और साहिल ने करनाल हरियाणा से। मोहम्मद यासी अंजन, साइमन नवाज, हसन नवाज गिरडी झारखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने गिरडी झारखंड से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे सिंध से रुकैया, सलमा बेगम, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद सज्जाद। और सुनना चाहा था तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा ने। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बुल्लू निषाद छत्तीसगढ़ रायगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। निकुल कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद और महेश कुमार निषाद छत्तीसगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार राय ने नारायणपुर से। और दुबिहा से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाहते थे अम्बगढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस रिहान। गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश भावसार सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था प्रणीता, सिद्धांत गोहानकर, टुकटुक गोहानकर बदलापुर मुंबई से। मस्तानपुर से अनंत भगत, रोना भगत, चेतना भगत सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुनना चाहा था गंगाधर सावणकर, विजय लक्ष्मी सावणकर कुंडलवाड़ी से। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़ और शुभम गौड़ ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद है सुरेश आशीष गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और पवन गौड़ कासगंज से। और सुनने के ख्वाहिशमंद है आशा देवी, वर्षा सुमन, रविन्द्र मोहन दास किशनगंज बिहार से। और खंडवा सुनना चाहते हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया बक्सर बिहार से, शरबुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई और अतुल कुमार वर्मा रतलाम मध्य प्रदेश से। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं डॉक्टर प्रियंका थांदी, गगनदीप थांदी और तृप्ति कुमारी थांदी नवशहर पंजाब से। और सुनने का ख्वाहिशमंद है राहुल मनवर, सल्ला मनवर, प्रियंशी यवतमाल से। सुनना चाहते हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमी गमनाज, बेबी फातिमा शेख, रेलवे रोड गंजंडवारा से। और सुनने के ख्वाहिशमंद है जगमोहन सिंह, प्रजापत, अर्जुना भारती और भुवनेश्वरी देवी बागपत से।

Ya sono eti, musikar Sonic Omi ka ye tartib hua nagma Mohammad Rafi ki aawaz mein dil ne phir yaad kiya se, jiske nagmanigar थे GS रावल। सुनने के ख्वाहिशमंद थे गाजीपुर से सूरज जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल। हालांकि इस प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में, जिसको सुना चाह है दिलीप रामेकर और अक्षय रामेकर। सुनना चाहते हैं अमरावती कैंप महाराष्ट्र से, और पंजाब रामटेके, रामटेके श्रव्य, रामटेके यवतमाल सुनना चाहते हैं, और राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, दिव्यांशी विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। लाल बाबू दीवाना, उमराज और दिव्या भारती सुनना चाहते हैं दिल्ली से, और संजय पंचोलिया, पिंक पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया खंडवा से सुनना चाहते हैं। नैना द्वारा से डॉक्टर अबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बाबू डब्बू हांसी से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

सामीन, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा सुजाता फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के। और सुनना चाह था रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायाब ने। सुनने के ख्वाहिशमंद थे मल्लानपुर दाका से राजेश जैन, बिट्टू जैन और चरण जैन। बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी अलीगढ़ अवली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं समर्थ देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल और लक्ष्मी देठे पाटिल। जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल ने सुनना चाह था महाराष्ट्र से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे मंगीसा पुर बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरनीसा और शविस्ता ने। और मुकेश शर्मा, गरिमा शर्मा, गौरव शर्मा छत्तीसगढ़ भिलाई से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनना चाह था मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन ने तेलंगाना भोंगीर से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, जिसको सुना चाह है कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने। मजनू कटीला ने दिल्ली से। और सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर राजस्थान से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। गुरबीर सिंह तंगोरी, जसप्रीत जसबीर कौर और महिकप्रीत कौर चंडीगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सुगरा और हसीना दिलशाद, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक डांडा से सुनना चाहते हैं। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र सिंह बिजारनिया और राजपाल सिंह बिजारनिया सिरसा हरियाणा से, यशमीत, यशु, निरंजन सिंह और सौम्य सिंह उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

हमें अभी आप सुन रहे थे बेटी बेटे फिल्म सैयद अहमद, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे हसरत जयपुरी के। सुनना चाहा था मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी ने ऊपरकोट मोहल्ला चुकनट्टी बुलंदशहर से। हरवेज इस प्रोग्राम की अगली पेशकश जगजीत कौर की आवाज में, जिसको सुनना चाहे अली का डबवली से बसंत सिंह जैन, राजकुमार गांधी और कुलदीप गांधी ने, मदानपुर दाका से राजेश जैन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं जफर मुअज्जम शेख, फलक तबस्सुम शेख और बेबी अली अकबर शेख, रघुवी नगर नई दिल्ली से। और सुनना चाहते हैं अलीम रजा सिद्दीकी, मानवर हुसैन अंसारी, नईम राजा सिद्दीकी, गंजनवारा से। अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह और राकेश कुमार जमशेदपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। और सुनना चाहते हैं परवीन खान, कमरान खान और हुरैन अजीम मोहल्ला कुरावली से। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुरेश खुराना, करण खुराना और आरव खुराना, एमएलवी रोड ग्वालियर से। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मध्य प्रदेश से उद्धव उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे और नवीन ठाकरे।

मैंने अभी आप सुन रहे थे शगुन फिल्म से ये नगमा, साहिल विहानवी का लिखा हुआ ये नगमा जगजीत कौर की आवाज में। इसको मौसीकी से सजाया था खयाम ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में, जिसको सुना चाह है मलोट से नरेश कुमार, रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया ने, और सुनना चाहते हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, बोनपट्टी मधुबनी बिहार से। राशिद हुसैन अंसारी, आस्था अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी कुरावली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम नाज, नवाज शेख डोंगरवाला उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं। सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और पिंकी चौरसिया उत्तर प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। शराब शंजाद, अनिलीब खानम, सारे फातिमा शेख, रेलवे रोड गुंडवारा, कादरगंज से सुनना चाहते हैं। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत कौर मनु, भगवान पाटिल और मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से, और धनु तेलीवाला से, अनिल कोले, छाया कोले, प्रियांश कोले महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र गौर, गुरप्रीत सिंह, लफरीत कौर जिंद हरियाणा से। और सुनना चाहते हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन ठाकुर, किरण ठाकुर और संदीप गुगलानी, किशन सबका, लाय सबका, विशाल सबका, शास्त्री नगर वीर शहर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी मुरादाबाद से, संगम विहार से धीरज गुप्ता, गुड़िया गुप्ता और रानी मुकेश गुप्ता, कुशेश्वर कांति गुप्ता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं खुदवाई नगर सिट पुल डाउन से जुबैर अली खान, सभी जुबैर अंजुमन खान, और नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिश शहीद, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

हैं। अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में नगमा, जिसकी तर्ज बनाई थी एस मोहिंदर ने, शीरी फरहाद फिल्म से। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जी एम दुरानी और शमशाद बेगम की आवाज में, जिसको सुनना चाह है मजर अली अंसारी, रेजे बेगम अंसारी, मोहम्मद सारिक अंसारी ने अस्तुपुरा जिला मऊ से, आनंद जोशी, तनुज जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा उत्तर प्रदेश से सुनना चाहते हैं, और नागपुर से प्रकाश रामबाड़े, भारती रामबाड़े, जानवी रामबाड़े सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं निसार सुलमानी, नुशा सुलमानी, बीबी आलिया, धनौरी तेलीवाला से, और अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबात हुजरे, जतशहर से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बेगम सोनम शेख आयत शेख मोहम्मद अरीफ शेख मुंबई से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी निमित गगनेजा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं मोहम्मद यूनिस खत्री, सादिक खत्री और यूसुफ खत्री, छिपा कलोनी खंडवा से।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तामिल इरशाद के तहत फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं गुलाम तकी खान की आवाज में राग मेघ मल्हार में ख्याल।

0: बरकरार रखा है। वैद्य ने मजीद बताया कि खुर्दनी तेलों की बीसीडी पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुर्दनी तेल के अंजुमनों और सनअती शराकतदारों को एडवाइजरी जारी की है कि ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदे के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली यूएनजीए के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बारबुडा के वजीर आजम गस्टिन ब्राउन के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और आबोहवा की तब्दीली के रोकथाम में ताउन जारी है। उन्होंने दौलत मुश्तरका के सरबराहों की मीटिंग सीएचओजीएम की कामयाबी के लिए भारत के मजबूत अजम का इजहार किया। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सैरी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अकवामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर G7 चेयर फ्रांस की जानिब से मुनक्किद G7 तरक्याती वज़रा के दूसरे इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में जनाब जॉर्ज ने इंसानियत पर मरकूज और जाम तरक्की की राह अपनाने पर जोर दिया, जो सर्वोदय के उसूलों पर मबनी है। भारत की तरक्याती शराकतदारी का हवाला देते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने भारत के इस मौके को उजागर किया कि तरक्की महज माली इमदाद फराहम करने का नाम नहीं, बल्कि इसका मकसद मुकामी सलाहियतों को फोक देना और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाना भी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मेडिकल साइंस इम्तहानात के कौमी बोर्ड NBEMS ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर NEET PG 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया। 2026-27 तालीम सेशन के लिए बराह रास्त 6 साल कोर्सेज MBMS, DNB, DRNB और PG मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनक्किद कराए गए थे। NBEMS ने कहा कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इंफरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। खुराक की हिफाजत और मयारात से मुताल्लिक भारतीय अथॉरिटी FSSAI ने एनालॉग प्रोडक्ट को पनीर के तौर पर फोख्त करने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। एक नोटिफिकेशन में FSSAI ने कहा कि डेयरी के सियाक व सबाक में एनालॉग प्रोडक्ट जुमले के तहत पहले से लाइसेंस याफ्ता या रजिस्टर्ड मसनूआत को नाम, लेबलिंग या मार्केटिंग में पनीर लफ्ज का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। यह इकदाम एनालॉग प्रोडक्ट की तवारी फोख्त को महदूद करने के लिए किया गया है ताकि सार्फिन को प्रोडक्ट्स की असल नियत और अज़ा के बारे में गुमराह न किया जा सके। एनालॉग प्रोडक्ट से मुराद ऐसी मसनूआत हैं जो असल मसनूआत से मिलती जुलती हों या उसके मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी साख्त और अज़ा असल मसनूआत जैसे हों। जरिए तहकीक के भारतीय काउंसिल ICAR के जर इंतजाम सेंट्रल मरीन फिशेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ICARCMFRI ने सार्फिन को मशवरा दिया है कि वो किसी मखसूस जोग्राफियाई इलाके से मुतालिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर टूना मछली या दीगर तजारती तौर पर दस्तयाब मछलियों से मुकम्मल तौर पर परहेज न करें। यह एडवाइजरी उन खबरों के बाद जारी की गई है जिनमें इसकी जैक टूना में पैरासाइट की मौजूदगी का जिक्र किया गया था। यह मुताला ब्राजील के साइन के करीब बहरी ओकियानूस से हासिल की गई मछलियों पर किया गया था। जापान में जारी एशियन गेम्स में कल निशानेबाजी में अनंत सिंह नारूका और परिणाल ढलेवाल की जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता। मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में एशियाई खेलों की तारीख में भारत का पहला तमगा है। भारतीय जोड़ी ने 48 में से सिर्फ 4 निशाने गंवाए और जनूबी कोरिया के साथ बराबरी पर रही, लेकिन टाई ब्रेक में उसे हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी सरफरिश चीनी जोड़ी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रही और इस तरह भारत ने निशानेबाजी में एक और तमगा हासिल किया। चीन ने जनूबी कोरिया को 51 के मुकाबले 52 पॉइंट से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इस दौरान विश्व में भारतीय खिलाड़ी ऋषि बीना देवी मोरियन को खवातीन के 60 किलोग्राम जुमरे में चीन की जैन जियू से 2-0 से शिकस्त के बाद चांदी के तमगे का इक्तफा करना पड़ा। इस दौरान मर्दों के डबल्स स्कल्स में सलमान खान और सतनाम सिंह ने आज कांस्य का एक तमगा जीतकर एची नगुआ एशियन गेम 2026 में अपनी रोइंग मुहिम का अख्ताम किया। भारतीय जोड़ी इंटरनेशनल रेगेटन कोर्स में 6 मिनट 13 सेकंड और 25 मिली सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर रही। चीन के यी रुदी और मी यदि 6 मिनट 9 सेकंड और 77 मिली सेकंड के साथ पहले नंबर पर रहे और उन्होंने सोने का तमगा जीता। सीमा कुमारी ने खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ में मुल्क के लिए कांस्य तमगा हासिल किया। उन्होंने पिछले 16 साल में एशियाई खेलों में खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में भारत का यह पहला तमगा है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार और। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। उन्होंने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर लाने के लिए हुकूमत की इख्तिराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। वज़ीर ख़ज़ाना डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बारबुडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ब्रून के साथ मीटिंग की। सेंसेक्स कल 1248 पॉइंट की गिरावट के साथ 73,581 पर बंद हुआ और जापान एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स रिले दौड़ और विश्व में चांदी के तमगे हासिल किए। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा हासिल किया जबकि डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्की शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है इंस्ट्रूमेंटल मौसिकी का प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं विदुषी शरण रानी का सरोद पर बजाया हुआ राग तीन तोड़ी।

पाए भी आप सुन रहे थे विदुषी शरणरानी का सरोद पर बजाया हुआ राग तीन तोड़ी। इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम आखिर शब। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसे, इतना तो बता जाना।
1: मुझे सख तो जाना, मुझे सख तो जाना, अपने ही हाथ।

आपने अभी आप सुन रहे थे दर्द फिल्म से नखबा उमा देवी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

गाने भी आप सुन रहे थे तीसरी गली फिल्म से नगमा हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी चित्र गुप्त ने। आज इस प्रोग्राम की अगली पेशकश रैया और श्याम सुंदर की आवाज में दिल्लगी फिल्म से।

0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار اور. وزیراعظم مودی نے کہا کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. انہوں نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یو این جی اے کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اینڈ بربودا کے وزیر اعظم جسٹن براؤن کے ساتھ میٹنگ کی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا 1 بجے چاہتا ہے اردو سروس کی 30ویں مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر پھر ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.
2: ابھی تو مرنے ہو.
3: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है. उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है. श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही. श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं. श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है. और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली.
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है. नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है. नई दिल्ली में 13वीं पीएएफआई वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है. विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया. इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे. तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था. रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल तांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
6: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
5: मिस्टर मोदी सेड एवरीवन मस्ट विगरसली एडवांस द पिवोटल रोल ऑफ द यूथ इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। द पीएम सेड वी आर पीपल डेडिकेटेड टू नेशन बिल्डिंग एंड सेट आउट विद द रिजॉल्व टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया। Government sources has emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above 2000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jaishankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth heads of government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West Sibi George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution in New York on the margins of UNGA. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has said that India's relationship with rivers dates back thousands of years, with rivers deeply linked to its cities, culture and traditions. Addressing the inaugural ceremony of the 7th Nadi Utsav in New Delhi, Mr. Sandhu said,

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं कुछ पुरानी यादों में और उन दशक पे जहां ये गीत आज भी आपके दिल में बसे हुए हैं, और इन गीतों के माध्यम से उन यादों को हम ताजा करते हैं। तो चलिए सुनवाते हैं ये पहला गीत।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आशीर्वाद से, मन्ना डे की आवाज है और संगीत वसंत देसाई ने दिया था।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत फिल्म आवारा से मुकेश की आवाज में। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर व अन्य साथियों की आवाजों में फिल्म मुगले आजम से आपने सुना था ये गीत। अब आइए आनंद लेते हैं किशोर कुमार की आवाज का, फिल्म अजनबी से आनंद बख्शी के लिखे बोल और संगीत आर डी बर्मन का।

अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपके लिए आ रहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत आर डी बर्मन ने दिया था। आइए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना।

अब कार्यक्रम अंत की ओर। जी हाँ, तो अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का और वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है वो कौन थी, राजा मेहदी अली खान के लिखे बोल, संगीत मदन मोहन ने दिया था। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं लग जा गले।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत में इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4वां उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। यह फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश और उस

0: Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and Telangana today. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2:10 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो चलिए चलते निकलते हैं इन गीतों के सफर पर। मैं और आप रेडियो के माध्यम से साथ जुड़े हुए हैं। मैं कीर्ति आपके साथ हूँ।

जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: इसी के साथ गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ यार लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीददारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीददार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 79 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का ईआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम गजल गीत में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में एक बहुत ही खूबसूरत गजल।

एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत, और अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा। गीत रचना है यानी कि गजल रचना मिर्जा गालिब की, और संगीत बद्ध किया है निहारिका सिन्हा ने।

0: गीत गजल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और ही बहुत खूबसूरत गजल। गुलकार हैं गुलजार साहब और कलाकार हैं भूपेन हजारिका।
1: मैंने भूपेंद्रा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी, इसलिए क्या अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढने तलाश करें और सुनें।

0: और इसी के साथ ही आज का गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:18।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बे विजय श्री का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के

0: उसी के साथ आज का अर्चना कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी आकाशवाणी दिल्ली का ईआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अनाघा एम नाम्बीसन का गायन।

आपके संगत कलाकार हैं वायलिन पर जी उमा, मृदंग पर हैं मनोहर बलत चंदीरानी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अनाघा एम नाम बीसन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति की थी वी उमा ने। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं आइए सुनते हैं अब प्रमुख प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा अर्ध मत्स्यन्द्रासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे सौरभ बनाउधा का बांसुरी वादन, राग होगा नट भैरव। सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम का विषय रहेगा सफलता का दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10 जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्वाति मिश्रा का के भजन।

गीतोहरी गुड मॉर्निंग हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर, 8:45 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन, राग होगा मियां की तोड़ी। सुबह 9:15 पर आज आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें वार्ता का विषय रहेगा स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर कृष्णा मणि पाठक। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10:10 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

जग में तैहर परम पद पाए ओ कर्म कर कर्म तो पर सरबल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तैहर परम पद पाए ओ जय सत गुर सिमरंत नैन के तिमर मिटाखे न जे सत गुर सिमरंत रिदा हर नाम दिनो दिन जे सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सत गुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावे सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो जे सत गुर लग प्रभ पाईया सो सत गुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुखा

0: सतगुरु गोबिंद जियो हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखाई माया मोह परम पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई
1: सुख टल गोर सेवी एहन सहज स्वभाव दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी मोर अरसों कुरसों चटीय उद दिठे सचे पातशाह।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

मन मुख के मोह माया नित फन साधु चरण न से कब हो तेन सब जन न अकथ जन साधु चरण साध पग से तेन सफल जन न सनाथ की जय दास दास दासन को

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हीर रतन नाम हर वसिया गुर हाथ धरो मेरा माथा जन्म जन्म के तेल विख दुख उतरे

depan.